0: अंदर फैल 68 फीट जे नाम त्रिनाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते पले संसार तिने लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुभी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बात सच्चे ना दरबार टोकर खर्च मंगा जब देता खा है दीवाने को कलमे का हमा तुमा में डाल लिखा पीड़ छुटे नान का जो तेल पौड़ी अपे ही करना की करे अपे ही है तारी अपे के पिता अपना कर कच्ची पक्की सारी है तू है कलसी सब कोई आई आई है जिसे भी प्राण है जो सारे मनो सारी है अपना की अपना अपे ही का सारी है का सारी है का
1: अपे ही करना की गल अपे ही धारी है जिथे किता अपना धर कच्ची पक्की सारी है जो है सो चल सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहे मन सारी है अपना की अपना आपे ही का सवारी है आपे ही

ਸਤਿਗੁਰ।

जित से भी है सुख पाइए वो सारे विश्वास मर की पाइए अपना सतार दूरी क्यों पाली है मदम की तेरी लंबी नगर निहाली है जो सर नगर हारी है तेरे हाथ

Oh,

0: एक नहीं दात आपस में जो पाई है नानक सकरमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
1: एक नहीं जगरी जिने पाप समा जाए नानक सेव कंडी है जिसे तिकसम समाए पड़े नानक अंतना जापने।

0: औड़ी नानक अंतरा जापनी हरता की बार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिशियार आप कराए करे अब हो कैसे करी पुकार नानक नानक दिया करते सही करनी सार
1: हर जुग जुग भगत पाया

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ ते खास आवाज़ तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन ईयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते बुझी सकंदा प्रोग्राम शुरू थी चुका है तफसील कुछ न तरह थोड़ी देर में तमा हमेशा भगत कनम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम बुधना ते खा पोए तफसरो पेश कंदो ए पोए कुछ फिल्मी गीत न्यूज़ हेडलाइंस प्रोग्राम जे आखिर में ब्रॉडकास्ट कई वेंदियूं यहां तक असाजे प्रोग्राम की डिटेल्स तुम आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुध रहा हिंसर छो भगत करम साहब जन के सदाबार आवास में कलाम बुधो

स्वागत करो सावजन जी मिठड़ी आवाज में कलाम दे रही आकाशवाणी जी सिंधी सरसा है हिंसर पेश आए तफसरो जुलाई 2026 ते भारत ए जापान पैंजी अठी बचाव पॉलिसी डायलॉग टोक्यो में कई भारतीय मेड की सरप्राई बचाव सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह कई ए जापानीज मेड की सरप्राई कई आर्मी मामलन जे बचाव वजीर नायब बचाव वजीर श्री कानोको जी बेतरफे बचाव सहकार में थियल वाधारे जो जायजो वरतो इन खां अलावा गुजर बचाव पॉलिसी डायलॉग जो पिण जायजो वरतो इन खां अलावा भारत जापान खास हिकमत अमले ए आलमी भाईवारी के वधीक पुख्तो करण ते पंहिंजे वचनबद्धता खे दोहरायो मौजूद इलाके ए आलमी सुरक्षा माहौल ते वसीह ॻाल्हियूं कयूं इन खां अलावा बाहिमी फ़ाइदनि ते पंहिंजा वीचार पिण वंडिया डायलॉग में बेतरफ़े बचाव मशगूली ते जे स्पेक्ट्रम ते जाइज़ो वरितो वियो तंहिं में अची थो वञे फ़ौज जी फ़ौज सां मटसटा जॉइंट हेडक्वार्टर्स मंझि सहकार समूरी सहकार बचाव मशकूं सग खे अॾणु बचाव औज़ार ऐं टेक्नोलॉजी तावन तंहिं में अची थो वञे समूरी टेक्नोलॉजी ऐं वधायल इदाराई मशगूली बचाव सहकार खे वधाइण ते खे वधाइण जी आज्ञा कई इन खां अलावा बाक़ाइदा उच समझ जे मटसटाउनि ऐं डायलॉग मेकनिज़म जी पिण अहमियत ते ज़ोर ॾिनो हुननि ईंदड़ वज़रात यात्राउनि जे नतीजनि ते पिण बहस वासो कयो तंहिंमें अची थी वञे हिन साल 2+2 मीटिंग यानी

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: Fail with my

रंग रंग वाह वाहड़े रंगी तुझा रंग रंग वाह वाहड़े रंगी तुझा रंग तो खल क्या के मत जा मूढ़ा तो खल क्या के मत जा मूढ़ा आई के मस्त मलंग वाह वाहड़े रंगी तुझा रंग वाह वाहड़े रंगी तुझा रंग रंग वाह वाहड़े रंगी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: यह समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत

0: का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारेनवाल्ड से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयारज़ाबल ने 22वीं मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वीं मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants India's exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing with the New Delhi Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
2: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewellery, smartphones, critical polymers, etc.
1: We have more from a correspondent.
3: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 7:10 और पूरे 15 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे नीलम पांडे द्वारा गाए भजनों का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का, जिसमें आपने सुना नीलम पांडे द्वारा गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां रंग बोलते हैं, जहां कैनवास पर इतिहास जिंदा होता है और जहां देवी देवताओं को उनका इंसानी रूप मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय चित्रकला के शहंशाह राजा रवि वर्मा की। क्या आप जानते हैं इन्हें? नहीं जानते तो थोड़ी देर में आप मुझसे सुनेंगे और इन्हें जान जाएंगे और फिर कभी भूल भी नहीं पाएंगे।

क्या सोचे आज हमारे घरों में, पूजा घरों में जो देवी लक्ष्मी सरस्वती या भगवान कृष्ण की जो भी तस्वीरें हैं उन्हें वो रूप

दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की और किस तरीके से उन्होंने हम तक भगवानों की उन मूर्तियों को हटाकर कैनवास की चित्रकारी वाली जो प्रतिमाएं हैं वो हम तक पहुंचाई और किस तरीके से पेंटिंग्स उनकी हम तक पहुंचाई और कैसे हमसे जुड़े वो, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि रवि वर्मा सिर्फ एक महान पेंटर नहीं थे, वो एक विजनरी क्रांतिकारी सोच वाले थे। उस दौर में पेंटिंग सिर्फ राजा रवि वर्मा जो थे ना, उस दौर की बात अगर करें तो राजा महाराजाओं के महलों की शोभा ही होती थी। आम इंसान के लिए तो कला को देख पाना भी मुमकिन ही नहीं था क्योंकि भाई बहुत महंगी होती थी और जाहिर सी बात है आम इंसान के लिए इतना खर्चा उठा पाना उस दौर में तो और भी मुश्किल था। लेकिन जो राजा रवि वर्मा थे उनका मानना था कि कला पर तो सबका हक है, वो तो सबके लिए है। उन्होंने जर्मनी से मशीनें मंगवाई, मुंबई के पास लोनावला में एक ओलोग्राफिक प्रेस, लिथोग्राफी प्रेस खोली और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इस प्रेस ने उनकी बनाई पेंटिंग्स की हजारों प्रतियां छपने के लिए भेज दी। नतीजा पता क्या हुआ, जो कला कल तक महलों में बंद थी वो अब एक आम सब्जी बेचने वाले मजदूर के घर की दीवार पर भी सजने लगी। यानी कि भगवानों को सिर्फ मन में नहीं बल्कि आंखों से भी देख पाने का सुख उन्होंने दिया था लोगों को।

आज हम बात कर रहे हैं राजा रवि वर्मा की, उनकी पेंटिंग्स की और कैसे उन्होंने हम तक पहुंचाए हमारे भगवान, इस बारे में आज बात कर रहे हैं। तो आज आपको ये बताते हैं कि उनकी जो पेंटिंग्स थी उसकी पता है खास बात क्या थी, उनकी टेक्निक। उन्होंने यूरोपियन ऑयल पेंटिंग की टेक्निक को भारतीय पौराणिक कथाओं जैसे कि रामायण, महाभारत, इन सब के साथ मिलाया।

उनके इस पेंटिंग को देखेंगे दमयंती और हंस या शकुंतला को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ ये बातें करने लगेगी, बोल पड़ेगी। और उनकी साड़ियों की जो चमक है, गहनों की जो नक्काशी है, चेहरे के जो भाव है, सचमुच वो कैनवास पर जादू करना जानते थे और शायद इसीलिए वो इतने महान चित्रकार थे। लेकिन अगर बात की जाए तो जब भी कोई अच्छा काम करने निकलता है तो सहारा देने वालों से ज्यादा धक्का देने वाले पहले आगे आते हैं। इनके साथ भी यही हुआ, इनकी तारीफ कम, आलोचना ज्यादा हुई। कुछ लोगों को तो भगवान का इस तरह से इंसानी रूप में दिखना रास नहीं आया, तो कुछ ने उनकी कला को बहुत ज्यादा यूरोपियन कहा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इतिहास गवाह है, जो बदलाव लेकर आए उसे कोई रोक नहीं।

वैसे दोस्तों, राजा रवि वर्मा ने सिर्फ तारीफ और आलोचना ही नहीं पाई, बल्कि उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी पाए। जैसे कि 1873 में वियना में ऑस्ट्रिया में लगी एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उनकी पेंटिंग को पता है स्वर्ण पदक मिला, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके अलावा बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने कला के

क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें कैसरे हिंद इस तमगे से, इस स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया, इस उपाधि से भी सम्मानित किया। और बात करें तो उनके सम्मान में उनके नाम के आगे, पता है उनका नाम तो सिर्फ रवि वर्मा था, लेकिन उनके नाम के आगे राजा शब्द जुड़ा, जिसकी वजह से आज मैं उन्हें राजा रवि वर्मा कह पा रही हूँ। और ये उपाधि उनको दी थी त्रावणकोर के महाराजा ने। इसके अलावा बात करें उनकी कलाकृतियों की, तो शकुंतला का पत्र लेखन हो, हंस दमयंती का जो जो बातें हो, माँ और बच्चे की पेंटिंग हो, अर्जुन और सुभद्रा की बात हो, रावण या जटायु वध हो, मतलब बहुत सारी ऐसी जो हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत सारी कथाएं हैं जिन्हें हम सिर्फ सुना करते थे, लेकिन उन्होंने कैनवस पर उतार कर हमें उन्हें दिखा भी दिया। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो फिर उन्हें

है कि जाने के बाद भी बरसों तलक उसे याद रखा जाए, ये होती है इंसान की असली पहचान। 2 अक्टूबर 1906 को कला का जो ये सूरज है यानी कि राजा रवि वर्मा।

भगवान को देखते हैं तो अनजाने में ही सही हम राजा रवि वर्मा की सोच को नमन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने घर में देवी देवताओं की कोई पुरानी तस्वीर देखें तो राजा रवि वर्मा और उनकी उस जादुई जो ब्रश है उसे जरूर याद कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि हम आज उनकी पूजा कर पा रहे हैं तो उसके पीछे उनकी अथक

तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। आपको यह हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा ipradiodelhi@gmail.com पर मेल करके। जैसे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जिंदगी के खूबसूरत रंग, और अपनी जिंदगी में भी रंग भरना बिल्कुल मत भूलिए। कोई अपनी ऐसी पहचान बनाइए कि आपके बारे में भी कोई इसी तरीके से बात करे। फिलहाल अपने दोस्त आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: लेट द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
4: SME, इनोवेशन, लेबर, एनवायरनमेंट एंड जेंडर।

0: हमारे संवाददाता ने बताया कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
1: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नयनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संजय बंदाश गुप्ता, आकाशवाणी, कोलकाता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली के शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2

0: लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जो परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: हॉर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकास और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर में 4 पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में दो तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स की 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में यह करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रूपये का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं, केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से, होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की, फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اس کے تحت بھارتی برآمدات کی تقریباً 99% اشیاء محصول سے آزاد رہیں گی. مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے. حکومت آج اہم اور دفاعی نوعیت کی معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کے 8 مرحلے کا آغاز کرے گی. امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر نامبندی کر دی. اسپین فیفا عالمی کپ کے فائنل میں داخل ہو گیا ہے. اس نے فرانس پر 2-0 سے جیت حاصل کی. دوسرے سیمی فائنل میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اور ویسٹرن میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے او ڈی آئی میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. تفصیل سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ آج سے عمل میں آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گزر بسر سے متعلق سمجھوتا دوہرے تعاون کا کنونشن ڈی سی سی بھی نافذ ہو گیا ہے، جس کے تحت برطانیہ میں بھارتی پیشہ ور افراد کی آمد و رفت اور مسابقت کو استحکام حاصل ہوگا. اس عام سمجھوتے کے تحت بھارت کے برآمدکاروں کو برطانیہ کی مارکیٹ میں 99% اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اس سے بھارت اور برطانیہ کی دفاعی شراکت داری کو گہرا کرنے اور دونوں ملکوں کے عوام میں مزید خوشحالی لانے کے مشترکہ عزم کا اظہار ہوتا ہے. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے کو بھارت کے تجارت کے سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے سے دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل کے لیے تابناک اقتصادی شراکت داری کو استحکام حاصل ہوا ہے. دوہرے تعاون کے کنونشن ڈی سی سی کا ذکر کرتے ہوئے جناب اگروال نے کہا کہ اس بندوبست سے برطانیہ میں بھارت کے پیشہ ور افراد اور ان کے آجروں کو فائدہ حاصل ہوگا. زراعت اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل کولکاتہ میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوریندو ادھیکاری، ریاستی کابینہ کے ارکان اور مرکزی و ریاستی سرکار کے سینئر افسران نے بھی شرکت کی. جناب چوہان نے اعلان کیا کہ مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے سے زیادہ روپے کی منظوری دی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: میٹنگ میں سڑکوں، ریلویز، میٹرو، پیٹرولیم، قدرتی گیس، کوئلے اور محنت کے شعبوں میں 82,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق 19 بڑے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا. زمین کو قبضے میں لینے، بازیابت کاری، جنگلات سے متعلق منظوریوں اور بین محکمہ جاتی تالمیل سے متعلق معاملات کو حل کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ پروجیکٹوں کو بر وقت مکمل کیا جا سکے. مرکزی وزیر نے عمل درآمد میں تیزی لانے کے لیے پروجیکٹوں پر نظر رکھنے کے ریاستی سطح کے گروپ قائم کرنے کی بھی تجویز رکھی. وزیر موصوف نے فصلوں میں تنوع لا کر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کو توسیع دے کر کسان کریڈٹ کارڈ کی تعداد میں اضافہ کر کے قدرتی زراعت، ڈیجیٹل، ایگری ٹیک اور غذائیت میں منافعے کے پروگراموں کو فروغ دے کر زراعت کو مستحکم بنانے کے اقدامات کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کی ترقی کو رفتار دینے کے لیے مرکزی اور ریاستی مل کر کام کرے گی. کولکاتہ سے سندیپ داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
0: کوئلے اور کانوں کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی آج نئی دلی میں اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کریں گے. کانوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ نیلامی 9 ریاستوں میں واقع 20 اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کے لیے ہوگی، جن میں 13 نئے نشان زد بلاکس اور دوسری مرتبہ پیش کیے جانے والے 7 بلاکس شامل ہیں. یہ معدنیات صاف ستھری توانائی، جدید مینوفیکچرنگ، کھاد، دفاع اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. وزارت نے نیلامی کے 7 مرحلوں کی تکمیل سمیت 88 اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس میں سے 56 کی نیلامی کامیابی سے مکمل کر لی ہے. اس طرح 63% سے زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے. भारत आज से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स मुद्रा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस दो रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के मुद्रा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत जिसका उन्वान है लचक जिद्दत तराजी इश्तराक और पायदारी की तामीर के लिए के तहत ये इज्तम होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वजरा समाजी तहफ्फुज़ को फरोग देने मेहनत की मंडियों को बाज़ाब्ता शक्ल देने ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफ़रादी क़ुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत चार तरजीही मौजूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट ऐलानियों को गौर खोज के बाद अपनाया जाएगा। इस ऐलानिया का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों मेहनतकशों की बहबूद हुनरमंदी के फरोग और शमूलियत रोजगार पर तआवुन को तकवीत देना है। पवित्र शहर पुरी कल से शुरू होने वाली आलमी शहरत याफ्ता भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयार है। गुज़श्ते रोज पवित्र नाबा जोगन दर्शन के बाद सालाना रथ यात्रा के लिए वसी तर इंतजामी और सिक्योरिटी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। यह सालाना मुख्तसर पड़ाव देवी देवता बहन भाइयों की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक पवित्र सफर की अलामत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीमुशान रियासती सतह के प्रोग्राम में नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस तकरीब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ इकदामात का आगाज करेंगे जिनका मकसद रियासत में हुनरमंदी रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को मुस्तहकम करना है। वजीर आला हुनरमंदी की तरक्की से मुतालिक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे जहां इख्तिराई टेक्नोलॉजी हुनरमंदी पर मबनी मसनूआत और सनअती तरबियती इदारों आईटीआईज तरबियती इदारों और जेर तरबियत अफराद के जरिए तैयार करदा प्रोजेक्ट का मुजाहरा किया जाएगा। 19 रैली शोबों के लिए मुल्क का खिदमात की पैदावार का पहला आजमाइशी इंडेक्स ISP जारी किया है जिसमें पहली बार ऐसा है कि बाकायदा खिदमात के शोबे में मुख्तसर मुद्दत की सरगर्मी का वाहाना पैमाना फराहम किया गया है। इस पहले इंडेक्स में 2024-25 को बुनियादी साल मानते हुए अप्रैल 2026 को भी शुमार किया गया है और भारत के खिदमात के शोबे के तकरीबन 60% हिस्से को शामिल किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने अबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर लोग अबनाए हुरमुस से गुजरना चाहते हैं तो वो खुली है, अलबत्ता ये ईरान के लिए नहीं खुली है। जनरल ट्रंप ने ईरान को यह कहते हुए खबरदार किया कि अमरीका आज रात ईरान पर सख्त हमला करेगा और इन हमलों की शिद्दत हर रात के बाद बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के सभी बिजली प्लांट्स और पुलों को तबाह करता रहेगा जब तक कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार न हो जाए। जनरल ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि हर बार ईरान की तरफ से जंगबंदी का सिलसिला तोड़ा जाता है। उन्होंने ईरानी क़यादत को पैगाम दिया है कि बेहतर है कि वो एक मुआहदा कर ले वरना वहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब ने बहरीन में बड़े पैमाने पर हथियारों और कई पुर्जों के जखीरे पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि उसने रैम पर जहां कुवैत में अली सलीम ठिकाने पर MQ-9 ड्रोन तैनात थे हमला करके बहुत से ड्रोन्स को तबाह किया है और नुकसान पहुंचाया है। भारत ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान ताजा कशीदगी और तजारती बहरी जहाजों पर हमलों के बाद वह मगरबी एशिया के हालात और वाकयात पर करीबी निगाह रखे हुए है। नई दिल्ली में नागरिकों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने महफूज और बिला रूकावट जहाजरानी और आबनाए हुरमुस से तजारत जारी रखने की भारत की अपील को दोहराया।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते जो परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: अपने हुरमुज में दो मर्चेंट जहाजों पर हमलों और मगरबी एशिया में बहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती तशवीश के दौरान बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने तनाजे से मुतासिर खित्ते में काम करने वाले भारतीय जहाजरानों की हिफाजत के लिए जामे सी फेयर फर्स्ट पहल का आगाज किया है। वजीर मौसूफ ने भारतीय जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल रद्दअमल की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में आला सतही बैंड वजारती जायजा मीटिंग सदारत करते हुए जनाब सोनोवाल ने हर एक बहरी जहाज की हकीकी वक्त में निगरानी करने और खत्ते में मुतासर हर भारतीय जहाजरान के लिए मखसूस लाइजन अफसरान मुकर्र करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आगे गुजरगाहों की वजारत और वजारत खारजा, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, कीमिया और खाद की वजारत, भारतीय बहरिया, जहाजरानी के डायरेक्टरेट जनरल और ईरान और ओमान में वाक भारतीय मिशनों के दरमियान 24 घंटे तालमेल कायम करने की भी हिदायत दी। नई दिल्ली से सकलन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बावर्ती होकर अपने असातिज़ा और वालिदैन का साथ दिया। इन लोगों ने रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा होकर इस मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी फौज की जालिमाना फौजी कार्रवाईयों की मजम्मत की। स्कूल जाने वाले तलबा पीर को बड़े पैमाने पर जमा हुए। ये लोग अंग की निशानी के तौर पर सफेद झंडे लहरा रहे थे और इनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, बैन अलाकवामी मीडिया हमें भी शामिल करो। ये लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। पाकिस्तान के जेर कब्जा पूरे इलाके में ये मुजाहरे खत्ते में पाकिस्तान के देरीना कब्जे के लिए एक बराह रास्त चैलेंज बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों ने वहशियाना कार्रवाई शुरू कर दी है जिनमें बसियों शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ खत्ते में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू नाफिज है। नीज मवासलात का सिलसिला पूरी तरह मुनकता हो गया है। अखिलती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी के वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्तानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। स्पेन की जानिब से माइकल ओयारज़बल ने 22वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद पेद्रो पोलो ने दूसरा गोल करते हुए स्पेन की जीत यकीनी बना दी। अब इतवार की रात न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने 16 साल पहले अपना पहला फुटबॉल कप जीता था। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बर्मिंघम के एडबिस्टन में खेले गए 3 एक रोजा बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजारत खारजा के बयान को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, हुरमुज में भारतीय शहरी की हलाकत पर भारत खफा। वजारत खारजा ने ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और दीगर सिफारतकारों को तलब किया। समुद्र में जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने की सलाह दी। रोजनामा इंकलाब ने अपने सफे अव्वल पर एक अहम खबर शाये करते हुए सुर्खी लगाई, भारत ने सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रोकन की उम्मीदवारी पेश की। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने अकवामे मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में भारत की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश किया। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने के लिए 8 नई इस्लाहात का ऐलान किया। इसी अखबार ने मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है, एनईएसएसी खलाई टेक्नोलॉजी को आवाम की जिंदगी से जोड़ने का अहम जरिया बन चुका है। अखबारात की कुछ अहम बैन अलाकवामी खबरें इस तरह हैं, अब नए हुरमुज जंग या अमरीकी दबाव से नहीं खुलेगी, ईरान का बयान। अब नए हुरमुज से आमदोरफ्त पर कोई फीस या टोल कबूल नहीं, यूरोपीय यूनियन का बयान।
0: और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तजारती मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रूपये के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडमिस्टन ने 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटिंग व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, जयराम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर गंगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभय रुस्तम सपूरी का संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी।

0: फिर सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सरगंगा। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना अभय रुस्तम सपूरी का संतूर पर बजाया राग वसंत बुखारी। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम साइंस मैगजीन। विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ साथ स्किल्स यानी कौशल का होना बेहद जरूरी है। आज के समय में नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार नई स्किल्स सीखना, स्किल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में कौशल विश्वविद्यालयों का विचार सर्वप्रथम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में प्रस्तावित किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: प्रवेश दुदानी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिग्री और रोजगार के बीच में अंतर दिख रहा है, और जब सीखने की प्रवृत्ति में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उससे एक भय भी है कि ये शायद रोजगार को छीन लेगा या कम कर देगा भारत जैसे वो जनसंख्या वाले देश में। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्किल्स की जरूरत है और स्किल्स यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो किस तरह का होना चाहिए?
2: मैं लास्ट 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और रोजगार अलग अलग नहीं चलना चाहिए। आज हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, लेकिन अगर डिग्री विदाउट इंडस्ट्री या डिग्री विदाउट स्किल्स अगर है तो वो आज हमारे युवाओं को एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, ना कि उनको एम्पावर करता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स को जोड़ते हैं तो ही वो हमारे युवाओं को एक सही रास्ता, सही दिशा दिखा सकता है कि उनका जीवन, उनका करियर किस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है। जैसे AI की जो आपने बात करी, लास्ट 2 सालों में AI ने पूरा का पूरा जॉब का जो सिनेरियो है, मार्केट है, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। लोग ये भी बात करते हैं कि शायद जॉब्स कम हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब का जो रूपरेखा है वो बदलेगा। एक ह्यूमन टच रिक्वायर्ड होती है हर एक चीजों में, वो चीज कभी भी AI उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको पूरा खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन जो आज ऐसी चीजें जो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट कि आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आसपास में लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं, ऐसी क्या सिस्टम बना रहे हैं जिससे लोगों की प्रगति हो, इन चीजों को सोचना और डिजाइन करना में ज्यादा लोग अपना समय लगाएंगे, ना कि एक नॉर्मल डे टू डे बार बार रिपीट करने वाले टास्क होते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोडिंग बहुत लोग सीखते थे जिसमें काफी टाइम लगता था, इसीलिए पूरे देश में कंप्यूटर साइंस एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। लेकिन आज के दिन में जो काम कोडर्स 1 महीने में करते थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको 1 घंटे में कर दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे इंजीनियर्स जो कंप्यूटर साइंस को AI की नजर से सीखते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम आउटडेटेड हो गया है। वो जिस तेजी से इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसके साथ नहीं चल पा रहा है करिकुलम।
1: तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, क्या उसमें आपका कहना है कि उसमें और सुधार की जरूरत है?
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक पूरी गेम चेंजिंग, एक बहुत बड़े बदलाव लाने का शक्ति के साथ उसको लाया गया 2020 में, और जिसमें एक सबसे बड़ा पहलू था कि स्किल्स यानी कि जो इंडस्ट्री को जो स्किल सेट और वोकेशंस चाहिए वो हायर एजुकेशन के साथ चलना चाहिए। इसके पहले तक स्किल और वोकेशन यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो या आपकी ITI एजुकेशन हो, उसको उच्च शिक्षा से हमेशा अलग रखा गया। लेकिन नई शिक्षा नीति में इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि उसको साथ कैसे लेके चले, एक ओवरऑल वेल राउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, और इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री को दोबारा ट्रेनिंग ना करना पड़े उनकी। आप ये भी देखें कि आज पूरे हमारे इंडिया में आज अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रेशियो यानी कि जो जितने बच्चे स्कूल से निकलते हैं उसमें से कितने बच्चे उच्च शिक्षा में जा पाते हैं, उसमें से हर चार में से सिर्फ एक बच्चा ही उच्च शिक्षा में एनरोल करता है।
1: निश्चित रूप से खास करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का ये कहना है कि अनुसंधान में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और वो बीच में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक बात आती है, आपने IIT खड़गपुर से एक इंजीनियरिंग डिग्री ली और उसके बाद आप किस तरह से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना में और एक एकेडमिक लीडरशिप में आए, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि समावेश करके एक यूनिवर्सिटी को बनाए?
2: जी, इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है। मैं IIT खड़गपुर से 2008 में ग्रेजुएट हुआ, 5 साल मैंने वहाँ BTEC और MTEC इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया था और मुझे अपने उस 5 सालों में सिर्फ 4 महीने के आसपास मौका मिला इंटर्नशिप करने का, जो कि कॉलेज के द्वारा दिलवाया गया था। तो उन 5 सालों में मेरी एजुकेशन ज्यादा थ्योरेटिकल थी, नॉलेज बेस्ड थी और कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे हमेशा दिमाग में रहता था कि इस नॉलेज का मैं इंडस्ट्री के अंदर कैसे अप्लाई करूंगा ताकि वही मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं, कोई मैं उनके लिए जाते ही कोई चीज बना पाऊं। फिर निकलने के बाद जब हम लोग इंडस्ट्री में गए तो हमें हर चीज शुरुआत से सिखाई गई जो उनको जरूरत था, और जो हमने पढ़ाई पढ़ी थी वहां पर रेलेवेंस कम था क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा था वो थोड़ा पीछे चल रहा था और इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो मुझे ये समझ में आया, और आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा कि पूरे इंडिया में युवा क्या करते हैं कि क्योंकि ये डिग्री प्रधान देश में इसको बोलूंगा कि भाई तब तक बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं बोलते जब तक वो डिग्री
1: ना ले ले। बिल्कुल,
2: और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिग्री ले और एक सिक्योर जॉब यानी कि ऐसी नौकरी ले जो कभी उनके सिक्योर हो जाए, सरकारी जॉब हो या कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो। आज का युवा को ये चाहिए कि आज की पढ़ाई में जो वो समय और पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या उसको उसमें वापस मिलेगी, कितने तेजी से वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं, ये सवाल आज के युवा में रहते हैं। लेकिन इतने सालों में क्या हुआ, क्योंकि डिग्री भी करनी है तो बच्चे BCom BSc कॉलेजेस में जा रहे हैं और उनको प्रोफेशनल कोर्स करना है क्योंकि नौकरी चाहिए, तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि लोग डिग्री भी करते हैं साथ में कोई ना कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जाते हैं, यानी कि कोई अकाउंटिंग टैली सीख रहा है, कोई डिजाइनिंग सीख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग, या तो कोई कोचिंग कर रहा है कि भाई मैं कोई एंट्रेंस टेस्ट दूं, क्योंकि उसको डिग्री भी चाहिए,
1: बड़ा इंडस्ट्री करके
2: कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, या उसको कोई वोकेशनल यानी कि कोई ऐसा स्किल सीखता है जिससे उसकी इमीडिएट नौकरी लग सके। आज अगर कोई स्किल सीख रहा है, कोई प्रोफेशनल काम सीख रहा है, वो हमारे हायर एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। यही नई शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य है कि कैसे लोगों को एम्पावर करें एक अच्छे स्किल डेवलपमेंट से, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौशल और उसके अंदर वो कैरेक्टर और एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को कैसे जोड़ा जाए। एक स्किल यूनिवर्सिटी होने के नाते जो कि एक बहुत इंडस्ट्री फोकस्ड होती है, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम ऐसे ही प्रोग्राम्स लाएं जिसमें हम इंडस्ट्री के स्किल सर्टिफिकेशंस को साथ में जोड़ के पढ़ा सकें। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ पे सिक्किम में एलाइड हेल्थ केयर यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं पूरे हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल सेगमेंट में, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं एग्जाम क्लियर कर पाते वो एलाइड हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपिस्ट या डायलिसिस टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन पढ़ाई पढ़ते हैं एज अ स्किल यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस

0: कॉन्फिडेंस दिलाता है और उसको ये मोटिवेट करता है, उसको भी वो सारे चैलेंजेस सिखाता है। जैसे हमारे कोई भी स्किल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में इंडस्ट्री में जाके एम्प्लॉयर के यहाँ पर इंटर्नशिप करना, काम को सीखना इंटर्नशिप के थ्रू, अप्रेंटिसशिप के थ्रू, ऑन द जॉब लर्निंग के थ्रू, ये कंपल्सरी और 30-50% तक आपके पूरे प्रोग्राम में, यानी कि 3 साल में आपको 1 से 1.5 साल आपको इंडस्ट्री के अंदर रहना है। और ये हमने इसका फायदा देखा। मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमारे बच्चे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स में हमने टाई अप करके वहां पर उनको पहले साल में ही डाला कि आपने थ्योरी पढ़ी 1 साल, अब आप सुने 3रे साल आप होटल के अंदर रह के काम करिए, वहां पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आप उससे अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं। हमारी फैकल्टी वहां जाके उनकी सुबह सुबह क्लास भी लेती है, बाकी 5-6 घंटे वो काम भी करते हैं। तो जब वो निकले तो हर होटल वाले ने ये बोला कि इन बच्चों की क्वालिटी बाकी के जो हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर से जो बच्चे आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने काम करते करते चीजों को सीखा है। और दूसरा, जब बच्चों को ग्रेजुएशन में जल्दी काम करने का एक्सपोजर दिया जाता है तो उससे वो डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उनको जो जिम्मेदारी निभानी है उसका बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस आता है। और वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी वो अपने आप को जिम्मेदार समझेगा और आगे मेहनत करेगा कि वो आगे बढ़ सके काम में।
1: आपका मूल मंत्र क्या है लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने का, रोजगार परक बनने का, यूनिवर्सिटी का एक, या आपका अपनी तरफ से ऐसा कुछ मूल मंत्र आप लोगों को बताते हो या उस पर काम करते हो?
0: मुझे लगता है कि शिक्षा का जो स्रोत है, यानी कि यूनिवर्सिटी को पूरे इंडिया में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप चीजों को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो एज अ स्किल यूनिवर्सिटी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम करिकुलम्स को उसी हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं जैसा इंडस्ट्री को जरूरत है, और उसमें 4 चीजों पे फोकस करते हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा जो इंडस्ट्री को चाहिए उसको हम काम कराते कराते पढ़ाते हैं। दूसरा है कैरेक्टर, कि हम कैरेक्टर को कैसे डेवलप करें, उनको क्लब्स में करना, उनको एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, बाहर के जगहों पे इंडस्ट्री में इमर्जन कराना, उनको ऐसे टफ सिचुएशन में डालना, लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट में लगाना, तो इन सभी से उनका चरित्र डेवलप होता है जो कि आज बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: क्योंकि वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा रहे।
0: और नवाचार इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये न सोचेंगे कि आपके आसपास की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर हर प्रोग्राम का जो बैच होता है वो एक गांव से आसपास के जुड़ा हुआ है, जहां पर उनको प्रोग्राम के तहत उस गांव में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि आज AI है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। पहले लाइब्रेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन आज पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपके फोन में है, मल्टीपल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो नॉलेज को यूज करते हुए अगर आप आसपास की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी प्रमोट करता है, इनोवेशन सिखाता है और रोजगार पे सारा फोकस कि भाई आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने से आप अपने काम को कैसे बेहतर कर पाएंगे रोजगार में, इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना शिक्षा देते हुए, ये एक यूनिवर्सिटी का बहुत जरूरी फर्ज बनता है।
1: तो क्या ग्लोबल स्किल कैपिटल के रूप में भारत उभरने वाला है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बिंदु आप लेके आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना और विजन है कि इंडिया को एक ग्लोबल स्किल्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत हमारा सबसे यंग देश है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर सबसे ज्यादा युवा है और 30 साल से कम उम्र के करीब करीब 50% से ज्यादा लोग हमारे यंग पॉपुलेशन है। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हमारा इंटरनेशनल पाथवे का प्रोग्राम चलता है जिसमें आज जर्मनी, जापान जैसी कंट्री जहां पर लोग बूढ़े हो रहे हैं, जहां पर एवरेज एज बहुत बढ़ गया है क्योंकि वहां पर यंग लोग कम आ रहे हैं, तो पुराने लोगों को, बूढ़े लोगों को हेल्प करना, वहां पर चीजें बनाना, यानी कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, नर्स, जेरियाट्रिक केयर, यानी कि बूढ़े लोगों को जो सपोर्ट नर्सेज होती हैं, इन तरह के लोग कम पड़ गए। तो आज भारत और जर्मनी जैसे देश का ऐसे MOUs हैं जहां पर यहां से लोग वहां जा रहे हैं, उसमें हमने भी अपना रोल कर रहे हैं कि हम जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग कराते हैं और उनको बाहर भेजते हैं। इसी में मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एक बच्चा हमारा केरला से जो कि एक ऑटोमोटिव टेक्नीशियन की महीने की 20,000 रूपये की नौकरी करता था, उसको हमने साल भर में जर्मन लैंग्वेज सिखा के उसका एग्जाम पास करवा के उसको जर्मनी भेजा, मर्सिडीज बेंज में उसकी नौकरी लगी और वो 3 लाख रूपये मैंने इंडियन रूपी के हिसाब से कमा रहा है वहां पे। तो मुझे लगता है कि न कि सिर्फ उसकी जिंदगी बट उसके पूरे परिवार की और आने वाले जनरेशन, पूरे पीढ़ी का एक अप्रोच बदल जाएगा, एक रूपरेखा बदल जाएगी जो मुझे लगता है। और इंडिया में बहुत ज्यादा इस चीज का स्कोप है कि यहाँ के युवा बाहर के देशों में जाके अच्छा काम करे, क्योंकि वहां पर

0: आज से काम करने वालों की कमी होते जा रही है और हमारे यहाँ पे युवाओं की कमी नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं।
1: परेश दुदानी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातों पे चर्चा की और अनुभव साझा किए, खास करके जो किताबी ज्ञान से आगे एक नौकरी दिलाने वाली शिक्षा या प्राप्त करने वाली शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह की निपुणता की जरूरत है, स्किल इंडिया मिशन के तहत किस तरह से आप अपने विश्वविद्यालय में सारी चीजों का समावेश कर रहे हैं ताकि विकसित भारत के स्वप्न में अपना रोल अदा कर सके, इसके साथ ही अपने AI के दौर में युवाओं के लिए किस तरह की चैलेंज को स्वीकार करना और अपनी निपुणता को डेवलप करने की जरूरत है, इन सब बातों पर चर्चा की, जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यही सम्पन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस आप सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही। आज के प्रोग्राम में समाप्त फरमाइए संता सिंह का गया हुआ यह शब्द।

सुंदर सिंह की आवाज में अभी अपने शब्द सुना। मैं वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे। श्रोताओं, इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं सुनाता बल्कि ये भी बताता है हमें कि इंसान की सोच, साहस और संकल्प किस तरह समय की दिशा बदल सकते हैं। आइए नजर डालते हैं 15 जुलाई के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि आज जिस मुंबई की पहचान उसकी रफ्तार से होती है, उस रफ्तार की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। साल 1926 में आज ही के दिन मुंबई में पहली मोटर बस सेवा शुरू की गई थी। समय के साथ ये सेवा शहर की जीवन रेखा बन गई और आज भी लाखों लोग रोजाना बसों के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वर्ष 1955 में आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी। और श्रोताओं, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर तैनात सैनिक, चारों ओर संकट और फिर एक ऐसा अभियान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वर्ष 2000 में आज ही के दिन सियेरा लियोन में भारतीय शांति सैनिकों को साहसिक ऑपरेशन खुकरी के अंतर्गत सुरक्षित मुक्त कराया गया था। भारतीय सेना के इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र के सबसे सफल बचाव अभियानों में से एक माना जाता है। और अब बात उस उपलब्धि की जिसने अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया। 15 जुलाई 2011 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C17 के माध्यम से संचार उपग्रह GSAT-12 का सफल प्रक्षेपण किया था। इस सफलता ने भारत की अंतरिक्ष तकनीक और संचार क्षमता को नई मजबूती प्रदान की थी। श्रोताओं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी आवाज और अभिनय समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। मराठी रंगमंच के ऐसे ही अमर सितारे थे बाल गंधर्व। बाल गंधर्व का वास्तविक नाम नारायण श्रीपाद राजहंस था। उस समय रंगमंच पर महिलाओं का अभिनय करना सामान्य बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने अनेक महिला पात्र निभाए। उनके मधुर गायकी, भावपूर्ण अभिनय और आकर्षक मंच प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके प्रतिभा से प्रभावित होकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें बाल गंधर्व की उपाधि दी, जिसका अर्थ है स्वर्ग जैसा मधुर स्वर वाला कलाकार। अब बात एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के स्वास्थ्य और मातृ शिशु कल्याण को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया। ये थी डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी। डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी देश के जानी मानी चिकित्सक और समाज सेवी थी। उन्होंने पुणे के KEM अस्पताल में वर्षों तक सेवा देते हुए जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई और विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के क्षेत्र में उनके प्रयासों को देश विदेश में सराहा गया। समाज और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें रामिन मैक्सेसे पुरस्कार और पद्मभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, कुछ लेखक केवल कहानियां नहीं लिखते बल्कि अपने शब्दों से पूरी पीढ़ी की सोच को आकार देते हैं। ऐसे ही महान साहित्यकार थे M.T. वासुदेवन नायर। मलयालम साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित रचनाकारों में गिने जाने वाले M.T. वासुदेवन नायर ने उपन्यास, कहानी, पटकथा और फिल्मों के माध्यम से समाज की संवेदना को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था।

देश की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों की सूची में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 1947-48 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने नौशेरा की रक्षा करते हुए अद्भुत साहस का परिचय दिया था। उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। वे युद्ध के दौरान वीर गति प्राप्त करने वाले भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में थे। उनकी अद्वितीय पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, भारतीय सेना का इतिहास ऐसे अनेक वीर सपूतों की गाथाओं में भरा है जिन्होंने देश की रक्षा

के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बाद अब बात एक और ऐसे ही जाबाज सैनिक की, जिन्होंने अदम्य साहस को भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, कैप्टन नीके झागो। भारतीय सेना के साहस और समर्पण की मिसाल है कैप्टन नीके झागो। नागालैंड के रहने वाले कैप्टन नीके झागो ने आतंकवाद विरोधी अभियान में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके असाधारण साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे युवाओं के लिए देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा है।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तिजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में दी तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रूपये के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौयत की मादनियात की ब्लॉक्स की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने अपने हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में पहुंच गया है। स्पेन ने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एड बेस्टन ने 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत और बरतानिया के दरमियान जाम इकतसादी व तजारती माहिदा आज से नाफिजुलअमल हो गया है। इसके साथ साथ गुजर बसर से मुतालिक समझौता दोहरे ताउन का कन्वेंशन DCC भी नाफिज हो गया है। इसके तहत बरतानिया में भारतीय पेशेवर अफराद की आमदरफ्त और मसाबकत को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस अहम समझौते के तहत भारत के बरामदकारों को बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे भारत और बरतानिया की दिफाई शराकत दारी को गहरा करने और दोनों मुल्कों के अवाम में मजीद खुशहाली लाने के मुश्तरक अज़्म का इजहार होता है। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इकतसादी व तिजारती माहदे को भारत के तिजारत के सफर में एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल के लिए तापनाक इकतसादी शराकतदारी को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। दोहरे ताउन के कन्वेंशन DCC का जिक्र करते हुए जनाब अग्रवाल ने कहा कि इस बंदोबस्त से बरतानिया में भारत के पेशेवर अफराद और उनके आजीरों को फायदा पहुंचेगा। ज़राअत और नई तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, रियासती काबीना के अरकान और मरकजी व रियासती सरकार के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनाब चौहान ने ऐलान किया कि मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रूपये से ज्यादा रकम को मंजूरी दी है। कोयले और कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेंगे। कानों की वजारत ने कहा कि ये नीलामी 9 रियासतों में वाकई 20 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स के लिए होगी, जिनमें 13 नए शनाख्त करदा ब्लॉक्स और दूसरी मरतबा पेश किए जा रहे 7 ब्लॉक्स शामिल हैं। ये मादनियात साफ सुथरी तवानाई, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, खाद, दिफा और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों के लिए अहमियत के हामिल हैं। वजारत ने नीलामी के 7 मरहलों की तकमील समेत 88 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स में से 56 की नीलामी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। इस तरह 63% से ज्यादा कामयाबी हासिल की है। भारत आज से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस दो रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स अदालत जिसका उमान है लचक, जिदत, तराजी, इश्तराक और पायदारियत की तामीर के तहत ये इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान गुजरा समाजी तहफ्फुज़ को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाब्ता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफराजी कुवत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूद पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलामी को गौर खोज के बाद अपनाया जाएगा। इस एलामी का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनत कशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियती रोजगार पर ताउन को तकवीत देना है। इसके अलावा एलामी का मकसद काम की बदलती दुनिया में लचक और पायदार तरक्की को फरोग देना भी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पवित्र शहर पुरी कल से शुरू हो रही आलमी शोहरत याफ्ता भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज पवित्र नभा जौबना दर्शन के बाद सालाना रथ यात्रा के लिए वसी तर इंतजामी और सिक्योरिटी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सालाना मुख्तसर पड़ाव देवी देवता बहन भाइयों के श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक पवित्र सफर की अलामत है। मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद पवित्र रथ यात्रा में शिरकत करने के लिए पुणे पहुंचे हैं।
अमरीका ने आमनाए हुरमुज से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर लोग आमनाए हुरमुज से गुजरना चाहते हैं तो वो खुली है, अलबत्ता ये ईरान के लिए खुली नहीं है। जनाब ट्रंप ने ईरान को यह कहते हुए खबरदार किया कि अमरीका आज रात ईरान पर सख्त हमला करेगा और इन हमलों की शिद्दत हर रात के बाद बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के सभी बिजली प्लांट्स और पुलों को तबाह करता रहेगा जब तक कि ईरान मुजाकिरात के लिए तैयार ना हो जाए। जनाब ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि हर बार ईरान की जानिब से जंग बंदी तोड़ी जाती है। उन्होंने ईरानी क्यादत को पैगाम दिया कि बेहतर है कि वो एक माहदा कर लें वरना ईरान में कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब ने बहरीन में बड़े पैमाने पर हथियारों और कलपुर्जों के जखीरे पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उसने रैम पर जहां कुवैत में अली सलीम ठिकाने पर MQ-9 ड्रोन्स तैनात थे हमला करके बहुत से ड्रोन्स को तबाह कर दिया है और नुकसान पहुंचाया है। भारत ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान ताजा कशीदगी और तिजारती बहरी जहाजों पर हमलों के बाद वो मगरबी एशिया के हालात और वाकयात पर करीबी निगाह रखे हुए है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने महफूज और बिना रुकावट जहाजरानी और आमनाए हुरमुज से तिजारत जारी रखने की भारत की अपील को दोहराया। आमनाए हुरमुज में दो मर्चेंट जहाजों पर हमलों और मगरबी एशिया में बहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती तशवीश के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने तनाजे से मुतासर खिते में काम करने वाले भारतीय जहाजरानों की हिफाजत के लिए जामे सी फेरर फर्स्ट पहल का आगाज किया। वजीर मौसूफ ने भारतीय जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल रद्दअमल की हिदायत दी है। पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली तलबा ने वर्दी पहनकर अपने असातिज़ा और वालिदैन का साथ दिया। इन लोगों ने रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा होकर इस मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी फौज की जालिमाना फौजी कार्रवाईयों की मजम्मत की। स्कूल जाने वाले तलबा पीर को बड़े पैमाने पर जमा हुए। ये लोग अमन की निशानी के तौर पर सफेद झंडे लहरा रहे थे और उनके हाथों में बैनर्स थे जिन पर लिखा था बैनुल अक्वामी मीडिया हमें भी शामिल करो। ये लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन की खारजी उमूर और सलामती पॉलिसी के आला नुमाइंदा काया कलास से ब्रसल्स में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने मगरबी एशिया के बारे में कारामद तबादला ख्याल किया है और अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने महफूज और बिला रुकावट बहरी तिजारत की अहमियत पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। एक दीगर पोस्ट में मोहतरमा कलास ने कहा कि ये भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के लिए तारीखी साल है जहां दोनों फरीकों के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी, सलामती और दिफा के शोबों में ताउन में इजाफा हो रहा है। अकलियत उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कतर में वाकई भारतीय सफारतखाने ने कहा कि वजीर मौसूफ ने कतर के अमीर तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जज्बात पहुंचाए हैं।

इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। लीजिए अब सुनिए ड्रामा

0: क्या अभी 11:15 नहीं बचे? रेडियो क्यों चल रहा है?
1: अरे बाबू साहब, इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, और फिर इस डाक बंगले में ना तो रेडियो है न चूड़ी का बाजा।
0: तो फिर मैं गाना कैसे सुन रहा था?
1: सपने में सुन रहे होंगे बाबू साहब। नए शहर के लोग सपने में फिल्मी गाने सुनते रहते हैं। सो जाओ बाबू, रात बहुत भीग चुकी।

0: मैं चाहता हूं कि मजदूरों की तादाद आधी से कम रह जाए और प्रोडक्शन डबल से ज्यादा,
1: यानी और ऑटोमेशन
0: और प्रोडक्शन, कम से कम खर्च, कम से कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और तेजी, रफ्तार स्पीड।
1: लेकिन क्यों ये हवस, ये पागल दौड़, ये रफ्तार, ये स्पीड?
0: पल्स पर बगारो सलीम, भूलो मत तुम हमारे तकनीकी मुशीर।
1: कैसे भूल सकता हूँ कि मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है, बंगला और कार और नौकर चाकर मिले, सिर्फ इसलिए कि मैं लेबर घटाकर प्रोडक्शन बढ़ाऊं। रफ्तार स्पीड।
2: क्या बड़बड़ा रहे हो बाबू साहब? नींद में बड़बड़ाने का रोग भी नए शहर में बढ़ता जा रहा है।
1: बाबा
2: हाँ बाबू साहब,
1: क्या बड़बड़ा रहा था मैं?
2: रफ्तार स्पीड। तुम्हारे दिमाग में कोई चक्कर है बाबू साहब?
1: हाँ बाबा, ऐसा चक्कर जिसे चलाकर कोई रोकना भूल गया है।
2: बाहर निकलकर तनिक देखो तो बाबू साहब, सुखवा कैसा चमक रहा है।
1: सुखवा?
2: हाँ हाँ हाँ, जैसे हीरा।
1: सुखवा क्या चीज है बाबा?
2: अरे सुक्कर तारा। देखा बाबू साहब, वो उस खजूर की फुंगी पर है ना बाबू, कैसा उजला और कितना बड़ा है।
1: और वो इससे थोड़ी ही दूर पर पीला पीला कौन सा सितारा है बाबा?
2: बृहस्पत है बाबू साहब, पुखराज की तरह दमक रहा है। इन दिनों ये दोनों रात के तीसरे पहर में उगते हैं।
1: तो तीन पहर रात बीत चुकी है। देखो बाबा, मेरी घड़ी के डायल पर।
2: अरे वाह बाबू, इस पर भी सितारे चमक रहे हैं।
1: ये गिनती है बाबा, घंटों और मिनटों की। हम लोग जब तक इसे न देखें हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि वक्त कितना गुजर चुका। खैर, तुम्हें नींद नहीं आती?
2: ये खूब कही बाबू साहब, मैं ठहरा चौकीदार और फिर बूढ़ा आदमी हूँ। तुम तो अपनी कहो बाबू, सपनों ने तुम्हें परेशान कर रखा है। नींद में तुम न जाने क्या क्या बड़बड़ा उठते हो। घड़ी दो घड़ी और सो लो।
1: कोशिश करता हूँ बाबा।
2: नींद क्या सिगरेट के लालच से आया करती है बाबू साहब?
1: बड़े जिंदा दिल हो बाबा।
2: क्या कहें बाबू साहब, मुर्दा दिली से वक्त गुजारना ज्यादा मुश्किल है। सो जाओ बाबू।
1: बाबा ये सामने काली काली लकीरें कैसी खिंची हुई हैं?
2: सुनते हैं बाबू जी, इनमें से हवा गुजरती है तो मालूम होता है कई बांसुरियां एक साथ बज उठी हैं। सुबह देख लेना बाबू, अब सो जाओ।
1: नई जगह नींद भी तो नहीं आती बाबा।
2: बाबू साहब ये क्या कह रहे हो, ये नई जगह है? अरे तुम यहीं पैदा हुए, यहीं शरारतें करते फिरते थे, बेर अमरूद और इमली के पेड़ों पर टूटते थे, यहीं पढ़े लिखे और यहीं शायरी करते फिरते, अब यही जगह नहीं हो गई?
1: तुम पहले आदमी हो बाबा जिसने शहर में मुझे पहचाना, लेकिन शायद मैं ही बदल गया हूँ। तुम्हारा शहर नहीं बदला है,
2: यहाँ लोग अब तक नहीं बदले हैं, यही कहना चाहते हो ना?
1: हाँ बाबा।
2: सो जाओ बाबू, सो जाओ।

0: कौन?
1: कौन?
0: भूल गए?
1: हाँ, चेहरा तो जाना पहचाना सा है।
0: मैं तुम्हारी आरजू हूँ।
1: मेरी आरजू? क्या आरजू जिस्म की लगती है?
0: हाँ।
1: क्या मैं फिर ख्वाब देख रहा हूँ?
0: है ख्वाब में हुनूस, जो जागे है ख्वाब में।
1: क्या तुम कोई शायरा हो?
0: नहीं, मेरा नाम ही आरजू है और मेरी ही वजह से तुम शायर बने थे।
1: हाँ, याद आया, जब मैं इंटर में पढ़ता था तब शायरी किया करता था।
0: मेरे कानों में तुम्हारी ये गजल तो आज भी गूंजती रहती है।

0: क्या अब भी तुम वो गजल मुझे सुना सकती हो?
1: नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं कि तरन्नुम में पढ़ता था या तहतुल लफ्ज।
0: तो तुम्हें ये भी याद नहीं कि मैं आंसू हूँ, कि मैं तुम्हें शेर कहने के लिए इंस्पायर करती थी, कि तुम कभी बड़े दिलकश अंदाज में गजल पढ़ती थी?
1: सच कहती हो तुम, मुझे ये कुछ भी याद नहीं।
0: क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि ये तुम्हारा अपना शहर है, तुम्हारा वतन, जिसे तुम दिल का नगर कहते थे?
1: याद है, लेकिन भूल जाना चाहता हूँ।
0: क्या तुम्हें याद है तुम इस शहर से क्यों चले गए थे?
1: नहीं,
0: मेरी वजह से।
1: तुम्हारी वजह से? डोंट फील गिल्टी प्लीज।
0: मैं अब तक तुम्हारे इंतजार में आंखें बिछाए बैठी हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे वो अल्फाज अब तक गूंज रहे हैं जो तुमने जाते जाते कहे थे।
1: मेरी आरज़ू, मेरी जान, मैं जा रहा हूँ नए शहर में, वो जगह तलाश करने जहाँ मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ। बस बरस तो बरस की बात है, एक खूबसूरत सा घर होगा बागीचे वाला, बागीचे में खुश रंग और खुशबू वाले फूल होंगे, और इस घर में हम दोनों रहेंगे, मैं और तुम और मैं और तुम और मैं और
2: तुम। ये क्या फुटू हमें लगा रखी है बाबू साहब?
1: बाबा सवेरा हो गया, मेरी घड़ी तो बंद पड़ी है।
2: सामने टीले पर देखो बाबू साहब, गुलनार हो रही है उसकी गोट, और वो देखो गुलाबी गोले सा सूरज उभर रहा है।
1: शायद 10 बरस के बाद सूरज को उगते देख रहा हूँ बाबा। 10 बरस के बाद आज मुर्ख की बांग सुने हैं।
2: क्या सपने भी 10 बरस के बाद देखे हैं आज बाबू साहब?
1: शायद एक सपना जो अभी अभी देखा है 10 बरस के बाद ही देखा है बाबा।
2: जाओ बाबू साहब, सामने पहाड़ी पर घूम आओ।
1: वाह, कितना खूबसूरत बांस बन है बाबा, दूर तक बांसों के झुरमट फैलते चले गए हैं। यहाँ तो कागज का अच्छा खासा कारखाना चल सकता है।
2: बाबू साहब, 10-12 बरस पहले तो तुमने इन्हीं बांसों पर शायरी कर डाली थी, इन्हीं आसमान के शामियाने के सहारे जमीन और आसमान को मिलाने वाली रेखाएं, और जाने क्या क्या कहा था तुमने।
1: तुम लोग अपनी याददाश्त से इतना मुंह क्यों रखते हो, इसीलिए पिछड़े हुए हो।
2: कौन जाने बाबू साहब, कौन आगे बढ़ गया है और कौन पीछे पड़ा रह गया है।
1: अच्छा बाबा, जरा सैर कराऊं।

0: सुनिए, क्या आपका नाम सलीम है?
1: तो
0: तुम सलीम ही हो। शुक्र है खुदा का कि तुम भी पहचान गए।
1: कमाल है, पौन घंटा पहले तो
0: मैं बिस्तर में थी।
1: वही तो परेशानी है।
0: इसमें परेशानी की क्या बात है?
1: परेशानी की बात ये है कि तुम पौन घंटा पहले मेरे साथ थी।
0: आपके साथ? आप कहाँ थे?
1: मैं अपने बिस्तर में था और तुम मेरे ख्वाबों में।
0: देखो, मेरा मुझसे बेहतर है कि इस महफिल में।
1: लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपको अभी तक पूरी तरह पहचान नहीं पाया। कुछ कुछ याद आ रहा है। आप शायद मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे।
0: ये शुतर को लगी क्यों? कभी आप कभी तुम।
1: मगर हैरानी इस बात पर है कि मैंने अभी अभी ख्वाब में तुम्हें देखा था।
0: क्या ख्वाब में कोई ऐसा शख्स भी नजर आ सकता है जिससे कभी आपका सबका ही न पड़ा हो?
1: शायद नहीं।
0: क्या ख्वाब में मैंने अपना नाम बताया था?
1: हाँ, आरसू।
0: ताज्जुब है।
1: क्यों?
0: यही तो मेरा नाम है।
1: क्या
0: तो सलीम, तुम मुझे पूरी तरह नहीं भूल सकी। मैं अब तुम्हारे दिल की नगर में गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हूँ।
1: आरसू, कुछ कुछ याद आ रहा है। बहुत धुंधला सा, जैसे दिन और रात के मिलन के वक्त नजर आता है या ख्वाब में
0: है। ख्वाब में हुनूस, जो जागे हैं ख्वाब में।
1: यही मिसरा तो ख्वाब में भी तुमने दोहराया था।
0: हकीकत कभी कभी अफसाने से ज्यादा दिलचस्प होती है सलीम।
1: दस बरस पहले
0: इसी टीले पर उगते हुए सूरज के सामने कुछ कौलो करार हुए थे।
1: तो किसने कहा था करारा पहनकर भागने को? चोट तो नहीं लगी? देखो
0: तुम्हें,
1: अगर तुम्हारे पांव जख्मी हुए तो मेरे दिल से लहू टपकने लगेगा।
0: बड़े आए दिल वाले, एक तो गिरा दिया, अब चले हैं दिल से लहू टपकाने।
1: लो ये रुमाल, जख्म पर बांध लो।
0: शुक्रिया।
1: सुनो,
0: ना, इस लहजे में मत बोलो, मेरा तो जी उतरता है।
1: अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं।
0: यही कहोगे ना? बोलो, आरजू को कहाँ रहना चाहिए? मेरे दिल में। लेकिन तुम तो मेरे साए से भी दूर भागती हो।
1: तुम जज्बात का मजाक उड़ाती हो।

0: सुना आंसू, एक नई गजल सुनो।
1: जहाँ खिलवत मिली और तुमने मुझे बोर करना शुरू कर दिया। ए सुनो ना, अरे क्या लड़कियों की तरह बिगड़ जाती हो। अच्छा सुना ना, तुम्हें मेरी कसम गजल सुना ना अच्छे से। लीन
0: पहले तो मूड खराब कर देती हो और फिर मनाती हो।
1: अच्छा बाबा कान पकड़े, अब नहीं करूंगी। तुम गजल तो सुनाओ।
0: दरमिया से गुजर सके ना हवा,
1: क्यों नहीं
0: फिर
1: तरन्नुम से पढ़ो।

0: सलीम। क्या अब भी नाराज हो?
1: ये कहो कि गजल कैसी है।
0: तुम कहो कि ये गजल तुमसे किसने कहलवाई?
1: तुमने
0: झूठ बोलना कुछ तुमसे सीखी।
1: दरमियां से गुजर सके न हवा, इतने नजदीक आ सके तो आ।
0: बस इतनी ही आरजू है?
1: सच आरजू, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम दोनों अजल से अबद तक साथ रहें।
0: लेकिन मैं तुम्हें अभी से किसी बंधन में बांधना नहीं चाहती। अभी तो तुमने इंटरमीडिएट ही पास किया है और मैंने मैट्रिक।
1: मैं मुलाजमत की नहीं, शादी की बात कर रहा हूँ।
0: बहुत जल्दी कर रहे हैं।
1: बस तुम वादा कर लो।
0: वादा करने से क्या होगा? आज तुम जज्बात की राह में बहती चले जा रही हो, कल न जाने क्या हो, कल न जाने क्या हो, कल न जाने क्या
1: हो। हाँ आरसू, अब मुझे सब याद आ रहा है, साफ साफ याद आ रहा है।
0: मैंने कहा नहीं था कल न जाने क्या हो?
1: लेकिन अब भी तो कुछ नहीं बिगड़ा।
0: नहीं, क्या तुम मुझे भूल नहीं गए? क्या तुम नए शहर में जाकर पुराने शहर के लिए अजनबी नहीं बन गए? क्या तुम शायरी छोड़कर इंजीनियर नहीं बन गए? क्या तुम धड़कनों और तारों का शुमार करने के बजाय सिक्के और नोट नहीं गिनने लगे?
1: तो क्या हुआ?
0: तुम पूछते हो क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने कौलों कसम अब भी उतने ही प्यारे लगते हैं सलीम? क्या आज भी तुम्हें मेरी हंसी में रंग बिरंगे पंछियों की चहकार और चांदी की घंटियों की झनकार सुनाई देती?
1: शहर की जिंदगी के शोर गुल में ख्याली आवाजें सुनने की फुर्सत ही किसे है? ओह
0: सलीम,
1: तुम यहाँ?
0: और तुम? और ये
1: आरजू है, मेरे बचपन की दोस्त। और आरजू, ये है मेरे बॉस की सेक्रेटरी ग्लोरी। मेरे साथ ही इन्हें तरक्की का जीना भी कहते हैं।

0: सलीम, यह कोई अच्छा होटल नहीं है?
1: होटल तो नहीं है, लेकिन एक पुराना डाक बंगला है, काफी कंफर्टेबल है।
0: ओह आई सी, तुम वहीं ठहरे हो?
1: हाँ।
0: तो मैं भी वहीं ठहर जाती हूँ। अच्छा, तो डाक बंगले में मुलाकात होगी।
2: ठहरिए ना, साथ ही चलते हैं।
0: ओह नो थैंक्स, मैं कबाब में हड्डी बनना पसंद नहीं करती।
2: काफी गहरी दोस्ती मालूम होती।
1: अब नहीं तो बस ये समझ लो कि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। तुम जानती हो बॉस की सेक्रेटरी के कुछ माने होते हैं।
2: तुम्हारी दोस्ती पर बॉस को एतराज नहीं है?
1: बड़े शहरों में ऐसी दोस्तियों पर एतराज करने की फुर्सत ही किसे मिलती है।
2: लड़की अच्छी है।
1: शी इज अ वेरी गुड कंपनी।
2: सलीम, सलीम तुम कहाँ हो? कहाँ चले गए हो तुम?
1: यही तो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब।
2: लेकिन सलीम, हमारे दरमियान से हवा तो हवा है, लड़की मैं अपनी कार से गुजरती।
1: तुम नौजवानी की शोखियों और जज्बातियत को अब तक भूली नहीं। क्या हिमाकत थी वो, दरमियान से गुजर सके ना हवा।
2: तो जज्बा हिमाकत है, मोहब्बत हिमाकत है, महबूबा से कुर्बत की चाहत हिमाकत है।
1: छोड़ो, आओ आओ जरा कार पर सैर कराएं।

0: दी।
1: देखो
0: डरने की बात नहीं, लेकिन ऐसे जल्दी से क्या है, घूमने निकले हैं ना कि हवा के घोड़े पर सवार होकर कहीं पहुंचना है।
1: तेज रफ्तार का अपना ही एक मजा है, हवा से बात करने में लुत्फ आता है आंसू।
0: लेकिन इतनी तेज हवा, इतनी रफ्तार में हम बात नहीं कर सकते।
1: अभी तो सुई सिर्फ 50 को छू रहे
0: हैं। मेरे खुदा, 75, 80, 85, सलीम, बस खुदा के लिए रफ्तार घटाओ।
1: मजा आ रहा है आंसू, उड़े चले जा रहे हैं, तुम्हें लुत्फ नहीं आ रहा।
0: हाँ लुत्फ आएगा, अरे न ये देख सकती है कि बाग गुजरा, खेत गुजरा या सब्जा जात, और न यही कि क्या गुजर गया और क्या आ रहा है।
1: जब रफ्तार तेज हो तो तवज्जो का मरकज होता है हाल का लम्हा, सिर्फ वो लम्हा जिसमें जी रहे।
0: लेकिन मकसद?
1: मकसद मकसद तो मैं भी नहीं जानता, मैं समझता हूँ रफ्तार बराए रफ्तार का नाम ही तरक्की।
0: जब रफ्तार पागलपन की हद तक तेज हो जाती है तो आदमी को मंजिल याद रहती है न मकसद, रास्ता ही मंजिल बन जाता है। तुम्हारी नजर में तो ऐसी बातें करना ही हिमाकत है।
2: ओ, तो ये तुम हो?
1: आई एम सॉरी सर, जरा स्पीड।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वीकेंड मना रहे हो? यू आर इन गुड कंपनी बॉय।
1: थैंक यू सर, लेकिन आप कहाँ?
2: मुझे भी 7-8 घंटे फ्री मिल गए, सोचा थोड़ा सह कर ली जाए। सुना है ग्लोरी यहाँ आई हुई है?
1: जी हाँ, डाक बंगले में है।
2: तुम्हारे साथ नहीं ठहरे?
1: मैं भी डाक बंगले में ही ठहरा हुआ हूँ सर।
2: डाक बंगला? किस तरफ होगा ये डाक बंगला?
0: चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ।
2: ओह, हाउ गुड ऑफ यू। ओके सलीम, एंजॉय वर्ल्ड बॉय।

अजीब लड़की है। एक अंजाम और अजनबी के साथ यूं चली गई जैसे जन्म जन्म से उसे जानती हो, और तुम जो उसे जान से ज्यादा चाहते थे, अब उससे मिले तो ऐसे जैसे वो किसी शो केस में रखी हुई गुड़िया थी जिसे तुमने पहली बार देखा। ओह, मैं सिली सेंटीमेंट्स के पीछे वक्त, दौलत, अक्ल और जिंदगी जाया करना नहीं चाहता। वो मासूम लड़की तुम्हारी आस लगाए घड़ियां गिनती रही, वो अपने जज्बों की आंच में 10 बरस से पिघल रही है। जज्बे में पिघलना नादानी है और जज्बे को अपने अंदर पिघलाना मर्दानगी है। लेकिन तुम उसे भूले नहीं हो, तुम्हारी यादों की दुनिया में वो अब भी आबाद है, तुम्हारे जहन के तहखाने में वो आज भी बंद है, लेकिन बाहर तो वो अब भी आजाद है। मेरे बॉस के साथ चली गई, एक अजनबी के साथ। ये कौन

0: उसका या तुम्हारा?
1: अचानक तेरा मुख खराब हो रहा है।
0: ओ, यानी तुम अंदर से अब भी इमोशनल हो। ये रियलिज्म और प्रैक्टिकल बनना महज ऊपर से लादा हुआ लबादा है।
1: तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो।

अभी आप सुन रहे थे ड्रामा, उनवान था दिल का नगर, तहरीर थी जनाब अमीर हनफी की और पेशकश अनवर खान के थे। हिस्सा लेने वाले फनकार थे राजेश्वर नाथ, मंजू मैनी, जलालुद्दीन, शर्मिला मलकानी, सुरेंद्र सेठी और बाबा सहगल। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 171 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। पेशा खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा था उपहार फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश लोफर फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ।

देश की आवाज में ये नगमा भी अब सुन रहे थे हिमालय की गोद में फिल्म से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से नशर किया जा रहा है। अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है इंतकाम।

मेरी पसंद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है अभिनेत्री।

लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा था अभिनेत्री फिल्म से। इसके साथ ही आज का मेरे पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए जनाब अजीज इंदौरी का तहरीर करदा ड्रामा हम भी मुशायरा पढ़ने गए।

0: अरे भाई कौन है? जरा ठहरो भी, अभी आया था 2 मिनट।
1: अच्छा भाई मंजर, कहो कैसे तकलीफ की
2: आज? बस यार चला आया। बात यह है कि बहुत दिन हो गए थे तुम तो मिलते ही नहीं, सोचा चलो आज वो असल में एक काम था तुमसे।
0: खूब, बहुत खूब। उल्टे वो शिकवे भी करते हैं और अदा के साथ हैं, यानी मैं नहीं मिलता या हुजूर गायब रहते हैं। बस जब कोई काम होता है उसी वक्त ये गुलाम याद आता है।
2: अरे भाई तुम तो ताने मारने लगे, इस तरह तो घर आए मेहमान को शर्मिंदा न करे यार।
0: भाई तुम तो बुरा मान गए। अच्छा बताओ क्या खिदमत लेकर आए हो?
2: खिदमत तो क्या, बस जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, सफर करना।
0: सफर यानी?
2: अरे हाँ यार सफर, मेरा मतलब है मुशायरे में चलना है, कोई खास लंबा सफर नहीं है।
0: मुशायरा? यानी फिर कोई ठेके का मुशायरा ले आए?
2: देखो भाई फिर वही दंगलिया बातें। हाँ पर
0: बुरा ना मानो। अच्छा ये बताओ मुशायरा है कहाँ?
2: वो बात ये है कि मेरे एक रिश्ते के भाई हैं।
0: फिर तो बड़े साहिब जौक होंगे।
2: ओहो बात तो पूरी सुनते नहीं और बस लोक में देने लगा।
0: अच्छा तो फिर एक ही सांस में सारी बात सुना दो।
2: हाँ वो दीपालपुर से आए हैं, वहाँ मुशायरा करना चाहते हैं।
0: दीपालपुर?
2: लेकिन वो तो
0: बस एक
2: सारी मुहज्जब लोगों की बस्ती है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के।
0: तो क्या वहाँ मुशायरा होगा या शायरों को पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा?
2: फिर मजाक पर उतर आए
0: तुम। तुम तो बड़ा मान जाते हो। अच्छा आगे कहो।
2: मेरा मतलब था दीपालपुर में हमारे कितने ही पुराने दोस्त हैं, उन सबसे मिले हुए मुद्दत हो गई, इसीलिए तो मैंने तुम जैसे मुखलस दोस्तों की वजह से वादा कर लिया है। अभी 4 बजे की बस से चला है मुशायरा, आज रात ही होगा, तो तुम्हारा पहला

0: मददगार मैं ही हूँ।
1: कोई बात, मैं मजीद हैरती, बेगम कमर आंसू, शाहिद मुरवती, राम प्रकाश रहबर, मिर्जा जवान और खान शब्बीर से मिलकर सड़क चलने के लिए तैयार हैं। अब तक वो सब बस स्टैंड पर पहुंच गए होंगे। भाई तुम भी जल्दी करो, फॉर्म तैयार हो जाओ, कल सुबह तो वापस ही आ जाएंगे, इसलिए कोई खास एहतमाम की जरूरत नहीं है।
0: देखो मंजर, मुशायरा मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता, बस तुम्हारी बात रखने के लिए चल रहा हूँ। देखना यार, कल ऐसा न हो कि ये मुशायरा भी पहले मुशायरों की तरह ठेकेदारी की नजर हो जाए।
1: आखिर तुम यार इतने शक्की मिजाज क्यों हो गए?
0: यार ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तजुर्बे
1: छोड़ो, पुरानी बातें, मुझे शर्मिंदा न करो।
0: वो तो ठीक है, मगर ऐसा न हो कि इस बार भी हमें वापसी पर अपने ही पैसों के टिकट खरीदना पड़े।
1: समझ गया समझ गया समझ गया, तुम इत्मीनान के लिए ये पेशगी 20 रुपए रख लो।
0: तुम तो बस हद कर देते हो, मेरा मतलब ये नहीं था यार, फिर भी तुम नहीं मानते तो लाओ। अच्छा हाँ, ये तो बताओ कि और कितनी रकम?
1: मैं समझ गया, इस पेशगी रकम के अलावा 30 रुपए और मिलेंगे, और आने जाने का किराया अलग।
0: ओहो, वो तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया था तुमसे, वरना यकीन करो
1: मुशायरा मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता,
0: मुझे तो तुम्हारी बात रखनी है।
1: अच्छा तुम 5 मिनट यहाँ बैठो, मैं अभी तैयार होगा। लेकिन जल्दी, वक्त बहुत कम है, 3 बज चुके हैं।
0: बस ये यार,

0: आइए आइए, जरा पहले एक ही प्याली चाय की हो जाए, भला की सर्दी है, जान निकले जा रही है।
1: हाँ, जरूर जरूर,
0: कम्बख्त सर्दी को आप भगा कर ही दम लेंगे।
2: अरे जरा जल्दी से एक आठ दस चाय के प्याले तो ले आ।
3: जी हुजूर, बहुत अच्छा, क्या प्यालियों में चाय भी लाऊं या?
2: जी बेवकूफ है, अरे क्या खाली प्यालियों से हम अपने मेहमानों को?
0: ऐसा लगता है इस जगह काफी समझदार लोग बसते हैं।
1: जी हाँ, मंजर साहब भला ऐसी वैसी जगह थोड़े ही ले आते हैं हम लोगों को, ये तो समझदारी का पहला सीन था।
0: वाह मजा आ गया, क्या चाय है। मेरा ख्याल है कि चाय पेट में पहुंचकर ओवर हॉलिंग तो जरूर कर देगी।
4: आप लोग भी कमाल करते हैं भाई, ऐसा जल्दी से चाय पी लीजिए, आपका ये तबसरा बहुत देर हो रही है।
0: बहुत अच्छा हुजूर, अब तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जी भाई साहब, ये तो बता दीजिए, यहाँ तो मुशायरे जैसी चीज के तो कोई आसानी नजर नहीं आ रही।
1: अरे जी, वो बात असल में ये है कि मुशायरा यहाँ नहीं बल्कि मंडीपुर में है।
0: ये कहाँ हुआ साहब?
1: बस यहाँ से कोई दो कोस के फासले पर।
0: अल्लाह अल्लाह, तो चलिए कोई सवारी तो होगी ही।
1: क्या बताऊँ, सवारी वाले से कह तो दिया था, कमबख्त आया ही नहीं।
0: मेरा ख्याल है मौसम बड़ा सुहाना है, पैदल ही चलना होगा।
1: हाँ चलिए पैदल, वो
5: दो कोस, मेरा तो दम ही निकल जाएगा जब से फालिज का असर हुआ है।

0: एक काम करो।
1: क्या करूँ बताओ?
0: तुम जरा माइक पर जाकर सामईन को मुशायरे की अहमियत समझा दो।
1: अच्छा,
0: इन्होंने बता दो कि मुशायरा क्या होता है और मुशायरे और कव्वाली में क्या फर्क है, ताकि कुछ माहौल बन सके।
1: बहुत अच्छा, कोशिश करता हूँ। तो हजरत, हमें आप जैसे बुलंद ज़ौक रखने वालों के दरमियान आकर जिस कदर खुशी हुई है उसका इजहार करना हमारे बस की बात नहीं। हम बहुत सी जगहों पर जाते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ आकर अदब और अकीदत से हमारा सर झुक गया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम कव्वाल नहीं, शायर हैं।
2: अजी भाई साहब, ये सारा क्या हो रहा है?
1: जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। शायर वो होता है जो शेर लिखता है। हम लोग शेर कहते हैं और हमारे शेर कव्वाल पढ़ते हैं। आप चूंकि पहली बार मुशायरा सुनेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ताज्जुब तो जरूर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको इस प्रोग्राम में बड़ा मजा आएगा। तो लीजिए, सबसे पहले मैं अपने मोहल्ले के एक मशहूर शायर मंदर साहब को आपके सामने बुला रहा हूँ। मंदर साहब का तरन्नुम इस कदर प्यारा है कि आपको इसमें कव्वाली का लुत्फ भी आ जाएगा और आपका सर अदब से झुक जाएगा। आइए मंदर साहब, और अपना कलाम सुनाइए।
0: हजरत, गजल का मतलब मुलाहजा कीजिए। जी वो मतलब
2: क्या हो जी?
0: वो देखिए, वो होता है, आप सुनिए तो सही।
2: नहीं नहीं, पहले बताइए।
1: देखिए, मतलब गजल के पहले शेर को कहते हैं।

0: और ये गजल क्या होती है?
1: भाई गजल?
0: गजल? हाँ गजल में बहुत से शेर होते हैं।
2: ये क्या हो रहा है?
1: ये शेर।
2: ओ, समझ गया, शेर यानी जहाँ शेर रहना है। जंगल क्यों ना कहते, गजल गजल कह रहे हो।
0: तो क्या आप हमें शेर बकरी की कहानी सुनाएंगे?
1: ओ जी नहीं, आप जरा खामोश होकर सुनिए तो सही।
2: अच्छा अच्छा कुछ तो सुनाओ।
1: देखिए मंदर साहब, आपको अपने तरन्नुम से।
2: ओहो अच्छा कुछ सुनाओगे जी।
3: बेहतर है, मुलाजा कीजिए।

0: देखो यहाँ ना हुआ ये लोग क्या चाहते हैं, इन मित्रों का क्या होगा, इसने अपना कलाम सुनाई और देखिए ये आजाद नाशन खुदा के लिए मेरी बर्बादी की तकनीक इस तरह सुना कीजिए कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। देखिए आप मेरी सहायतों की तहिन कर रहे हैं, एक फनकार कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी इस तरह तोहिन की जाए। इसलिए कि मैं आप लोगों के सामने अपना कलाम हर गिर नहीं सुनाऊंगा।
1: भाई शायद नहीं
0: आप इस्तेमाल करते हैं मंदिर साहब, अगर आपके साथ इस किस्म का बर्ताव किया जाए तो
1: वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सी बात पर बुरा नहीं माना करते, फिर जरा माहौल भी तो देखिए।
0: अजी आपके नजदीक होगी जरा सी बात, आप देखा कीजिए मसलत पसंदी के अंदर से माहौल को, मुझे तो इसमें अपनी तोहिन लगती है, एक फनकार की तोहिन। ना जाने आप सबकी जमीनों को क्या हो गया कि आप 50 रुपयों के लिए अपनी फन की तोहिन तलाश कर रहे हैं। मैं यहाँ एक पल नहीं ठहर सकता, एक पल नहीं ठहर सकता।
2: फोन की बात क्या हुआ, हमने से शायद किसी ने आज तक नाशरी कभी नहीं कही, सिर्फ शाहिद एक ऐसा शायर है जो हम लोगों को इस मुसीबत से निजात दिला सकता है।
0: बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं रहबर मियां, मगर शाहिद ने भी तो जिद पकड़ी है, वो बड़ा जिद्दी है, हजार कोशिश के बाद भी वो माइक पर नहीं आएगा। देखिए मेरा दिल, ऐसा कीजिए बेगम कमर हंसू को बुलाइए, क्योंकि दूसरी ने सुना नहीं लिया, शायद इस तरह बात बन जाए। जी बहुत अच्छा, कोशिश करता हूँ। दोस्तों बात असल में ये है कि शाहिद साहब वाला मामला जरा संगीन हो गया, कोई खास बात नहीं है, स्टेज पर इस किस्म के हंगामे होते ही रहते हैं। मुझे यकीन है कि आप हजरात की पेशकश इन्हें दोबारा माइक पर ले आएगी। इनका मूड जरा ठीक हो उस वक्त तक के लिए एक नौजवान शायरा बेगम कमर आंसू आपके सामने आ रही हैं, जिनकी फितरत इनकी नज्मों की तरह रवा दवा है। आप देखेंगे कि वो किस तरह अपनी नज्मों की रवानी में सारे मजमे को बाहर ले जाती है। एक बात और अर्ज करूं, बेगम कमर आंसू जदीद दौर की शायरा हैं और जदीद अदबी तकाजों पर इनकी निगाह भी है। इन तकाजों को पूरा करने के लिए शेर व अदब की पुरानी रवायतों की तकलीफ करने की आप कायल नहीं है, यहाँ तक कि गजल और नाद के मिसों में भी पैर और औजान की तकैद इनके लिए जरूरी नहीं होती। इसलिए अगर कोई मिसाल वजन से खारिज पढ़ दें तो आप हजरात कोई ख्याल न फरमाइएगा। तो आइए बेगम कमर आंसू साहिबा।
3: हजरात नजर साहब ने जो कुछ फरमाया वो इनकी बारीक नजरी की दलील तो हो सकती है, लेकिन मैं मॉडर्न फजा में सांसें ले रही हूँ, इसलिए किसी भी बालिक नजरी को कबूल नहीं कर सकती और इसे अपना जैसा बागी शोरा के लिए एक लानत समझती हूँ।
0: बेगम कमर आंसू साहिबा उर्दू शायरी में बगावत का सुतून बनकर आपके सामने खड़ी हैं। इन्हें कोई अपनी जगह से नहीं हटा सकता।
2: देखिए आप लोग सीधी तरह इस प्रोग्राम को चलाइए और हमारी कमेटी को खुश कीजिए, खुदा के लिए इस दूर बहस को बंद कर दीजिए।
3: जी मैंने तो ये बहस शुरू नहीं की थी, मैं अपनी बगावत के जज्बे को किस तरह रोक सकती हूँ। अब जब बात शुरू हो गई है तो चलने दीजिए। और एक कथा सुनिए।
4: क्या सुन रहे हैं?
3: कथा।
4: एक कथा क्या हो?
3: होता है आप पिक्चर। खामोश रहकर सुनिए ना।
4: नहीं पहले बताओ, एक तो हमने
3: नहीं, मैं हरगिज़ नहीं बताऊंगी।
0: बात ये है कि बेगम कमर आंसू बागी शायरा है, जब जब बगावत पर उतर आती है तो कुछ नहीं बताती, इसलिए मेहरबानी करके इन्हें खामोशी से सुन लीजिए।
4: अच्छा अच्छा सुनाओ।
3: अर्ज किया है, एक लफ्ज़ से बगावत में सारा मेरा अफसाना है, बागी हूँ मैं बागी हूँ मेरा ही जमाना है। एक आग लगा दूंगी लफ्जों से जमाने में, क्या गैर ने समझा है अपनों ने क्या जाना है।
0: क्या पता पढ़ा है अपनों ने क्या जाना है। बाबा
2: खुदा का क्यों मेरी इज्जत को हाथ में मिला रहे, मुझे क्या मालूम था कि अब मुशायरों में ये सब कुछ होता है। अरे मंदर साहब ये क्या तमाशा हो रहा है, आपको तो मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा।
1: क्या हुआ भाई साहब क्या हुआ? अच्छा घबराइए नहीं, मैं संभालता हूँ इन लोगों को। देखिए मुगल साहब और आंसू साहबा, आपको जदीद और कदीम की बहस करनी है तो इसके लिए कोई जैसा अलग से कर लीजिएगा, ये उसका मुशायरा है, यहाँ की पाकीज़गी और आजमत का तो ख्याल रखिए और खुदा के लिए इस इख्तलाफी मसले को यहीं खत्म कर दीजिए।
4: अरे ओ गफूरा, अरे क्या है शकूरा भाई।

0: यार घर चल रहा है, कहां से पकड़ ला इनको, अपना तो सारा टाइम बर्बाद हो लिया। क्या मजेदार नींद आ रही थी, क्या खबर थी, अब आज रहा और उसके नाम पे मेरे घर चंदन अन्ने के लिए। जो
1: देखिए आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया था कि हम लोग शायर हैं, कव्वाल नहीं, इसलिए हमारी मजबूरियों को समझने की कोशिश कीजिए।
2: क्या खास समझने की कोशिश करें, अब तो कमेटी वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर कव्वाली नहीं पढ़ी तो एक पाई भी अदा न की जाएगी और यहाँ से जाने भी नहीं दिया जाएगा।
1: अरे ये क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे मुमकिन है?
2: तो फिर कमेटी वाले और दूसरे हाजिर भी मजबूर हैं।
1: मगर हमारे सामने और भी तो बहुत सी मजबूरियां हैं,
2: वो क्या?
1: अरे भाई यही कि न हमारे पास साज है और न हम साज बजाना जानते हैं।
2: तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं इसका बंदोबस्त अभी किए देता हूँ। इस गांव में ढोलक और हारमोनियम बजाने वालों का इंतजाम हो सकता है, जरा आप कहिए।
1: अरे ओ कल्लू, ओ कल्लू, जरा लपक के जा और नथुआ को पकड़ ला। अच्छा जी, कहना कि अपना हारमोनियम भी अपने साथ ले आए।
3: अच्छा जी,
1: जरा सुन।
3: हाँ जी।
1: देख वापसी पर जुमराती को भी अपने साथ लेते आना।
3: अच्छा जी,
1: ढोलक के साथ।
3: अच्छा जी,
1: कह देना दोनों की उजर उन्हें मिल जाएगी।
3: मतलब
1: सुनिए ना, अभी हम लोग तो कुछ नहीं जानते, कैसे गाएंगे?
2: देखिए जिंदा कीजिए, आपकी और मेरी दोनों की इज्जत का सवाल है। अगर कमेटी वालों ने रकम न दी तो आप घर कैसे जाएंगे?
4: हाँ भाई, नजर ये हजरत ठीक ही तो कह रहे हैं, नहीं क्या फायदा बहाना बनाने से।
1: तो गया हम शायद कव्वाल बन जाएं,
4: तो इसमें हज भी क्या है, कौन आ रहा है हमें यहाँ देखने के लिए? उल्टी सीधी दो चार ताले लगा देंगे, वरना सोचिए अंजाम क्या होगा, इन लोगों से किस तरह निपटा जाएगा।
1: मगर तुम लोग भी अजीब हो, कितनी बदनामी होगी हम लोगों की, हर तरफ से थू थू होगी, सब यही कहेंगे ये शायर नहीं कव्वाल है।
5: नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ये बात यहीं तक रहेगी, हम में से कौन अपनी पोल खोलेगा? जिन्ना करो नजर और खामोशी से जो कुछ हो रहा है उसे कबूल करो।
1: ये सब कुछ तुम्हारी ठेकेदारी की वजह से हो रहा है, जरा सी रकम के लालच में सबकी इज्जत आबरू खाद में मिलाने पर उतर आए हो, ये आग तुम्हारी ही लगाई हुई है, अब तुम ही से बुझाओ।
5: यानी
1: यही कि तुम ही इस कार्य नेक की इब्तिदा करो
5: और तुम,
1: हम लोग भी शामिल बाजे की तरह तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इस प्रोग्राम के हीरो तुम ही रहोगे।
5: अच्छा
1: लीजिए, ये हारमोनियम और ढोलक वाले आ गए।
6: ऐसा है जमा तेरे दामन में हम आते हैं, कदमों पे तेरे शाह सर अपना झुकाते हैं, इतनी सी गुजारिश है मजबूरों की आका से, हाले दिले मजू हम रो रो के सुन।

सुन रहे थे जनाब अजीज इंदौरी का तहरीर करदा ड्रामा हम भी मुशायरा पढ़ने गए। पेशकश अनवर खान की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे बी आर नागर, टी आर मेहता, बी आर एल मेहता, मोहम्मद इलियास, रईस मिर्जा, एम आई रोशन, वॉल्टर डेविड और लीला। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब

मन्नाडे और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था बहारों के सपने फिल्म से। अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म है देवता।

0: जी इसका मतलब समझ गई और उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपना काम शुरू करूं, मैं अपने बच्चों में वो हिस्सा पैदा करूंगी कि वो इन सब नेमतों के हुस्न को महसूस कर सकेंगे और महसूस करने के बाद मचल उठेंगे। ये कहते हुए संगीत की उस देवी ने मौसीकी अता की जिसे पुरानी किताबों में म्यूज के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने इस उम्मीद के साथ मौसीकी अता की कि वैधानिक तौर पर दुनिया की नेमतों को महसूस करके उनका लुत्फ उठाया जा सके। इसमें कितनी सदाकत है इस ताल्लुक से कोई राय नहीं दी जा सकती। अलबत्ता फनून लतीफा के ताल्लुक से जो दास्तानें मशहूर हैं उनमें ये रिवायत ज्यादा मकबूल है। इस एतबार से कहा जा सकता है कि मौसीकी की ईजाद दरअसल दुनिया में मौजूद नेमतों को समझने और उससे लुत्फ अंदोज होने का एक अहम जरिया है। संत हरिदास जैसे मौसीकार अब कहां मिलेंगे जिनमें अकीदत मोहब्बत के अलावा कोई रियाकारी नहीं थी, शोहरत मकबूलियत की तमन्ना नहीं की कभी उन्होंने, किसी के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया, वो दुनिया की तरफ नहीं भागे बल्कि दुनिया ने उनके फन की कदर खुद की, उनके आश्रम तक का सफर हर खास व आम ने किया। बरखिलाफ इसके कि आज के गुरुकार गाते हैं तो उनमें से बेशतर में ऐसा लगता है कि फितरी मुनासबत न होते हुए भी अदाकारी कर रहे हैं, क्योंकि संत हरिदास जब राग छेड़ते थे तो उनके अलावा जो लोग सुन रहे होते थे उसमें इस तरह से डूब जाते थे कि उन्हें मालूम भी नहीं होता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। संत हरिदास तसव्वुफाना शायरी के अलावा क्लासिकी मौसीकार की हैसियत से भी जाने और पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने इस ख्याल को आम करने के लिए एक आश्रम हरिदास स्कूल भी कायम किया था। उन्हें मौसीकी में बैक वक्त कई रागों पर महारत हासिल थी, लेकिन बतौर खास ध्रुपद जो क्लासिकी गायकी की कदीम तरीन से समझी जाती है उनके गाने काम करने और क्लासिक मौसीकी और भक्ति ने भी उन्हें बहुत मुतासिर किया। उन्हें मौसीकी की महारत अपने वालिद से मिली। इससे अंदाजा होता है कि उनके खानदान में मौसीकी का चलन था। उनके अवसरों में हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास, रूपा गोस्वामी, संताना गोस्वामी और महाप्रभु वल्लभाचार्य विट्ठल जैसे लोग मौजूद थे जिन्हें गोसाई जी कहा जाता था। भक्ति तहरीक की इब्तदा 12वीं सदी में जुनूबी हिंद में हुई थी। उसके बानी स्वामी रामानुज, माधव, आनंद तीरथ, विष्णु स्वामी और बासु थे। भक्ति तहरीक के बानियों ने खुदा और इंसान से मोहब्बत के प्रचार बरखरूस से किया था। कबीर, रायदास, साईं, दादा और दूसरे भगत समाज इस्लाह के सच्चे दिल से ख्वाह थे। उनका ख्याल था कि जात पात का फर्क, छूत छात, पूजा पाठ और तबकाती ऊंच नीच गलत है। लोग अगर मोहब्बत के प्रस्तार हो जाएं और दिखावे की रस्मों को तर्क कर दें तो खुदा और इंसान के दरमियान से फासला खत्म हो जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारे-ए-एहसास, मौजूद था संत हरिदास। तहरीर डॉक्टर शाहनवाज फैयाज की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मिली सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत अब सुनिए कुछ और फिल्मी नामे।
2: शहर में दूसरे कोई नहीं तुझसे मिलो, जो भी देखे

ऋचा शर्मा और आनंद राज आनंद की आवाजों में ये नगमा भी अपने धन धना धन फिल्म से सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में है, फिल्म है हाउसफुल 2।

इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप नीतिका त्यागी से आलमी खबरें सुनिए। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से मुस्तस्ना रहेंगी। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आजादाना तजारती समझौते से सनत और तजारत और सरमाया

मार्शल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर लोग अपनाए हुरमुज से गुजरना चाहते हैं तो वो खुली है, अलबत्ता ये ईरान के लिए नहीं खुली है। जनाब ट्रंप ने ईरान को ये कहते हुए खबरदार किया कि अमरीका आज रात ईरान पर सख्त हमला करेगा और इन हमलों की शिद्दत हर रात के बाद बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के सभी बिजली प्लांट्स और पुलों को तबाह करता रहेगा जब तक कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार न हो जाए। जनाब ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि हर बार ईरान की तरफ से जंगबंदी का सिलसिला तोड़ा जाता है। उन्होंने ईरानी क़यादत को पैगाम दिया कि बेहतर है कि वो एक मुआहदा कर ले, वरना वहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब ने बहरीन में बड़े पैमाने पर हथियारों और कलपुर्जों के जखीरे पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि उसने रैंप पर जहां कुवैत में अली सलीम ठिकाने पर MQ-9 ड्रोन्स तैनात थे, हमला करके बहुत से ड्रोन्स को तबाह किया है और नुकसान पहुंचाया है। भारत ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान ताजा कशीदगी और तजारती बहरी जहाजों पर हमलों के बाद वो मगरबी एशिया के हालात वाकयात पर करीबी निगाह रखे हुए है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान ने महफूज और बिला रूकावट जहाजरानी और आबनाए हुरमुज से तजारत जारी रखने की भारत की अपील को दोहराया। आबनाए हुरमुज में दो मर्चेंट जहाजों पर हमलों और मगरबी एशिया में बहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती तश्वीश के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने तनाजे से मुतासर खित्ते में काम करने वाले भारतीय जहाजरानों की हिफाजत के लिए जामे सी फेरर फर्स्ट पहल का आगाज किया है। वजीर मौसूफ ने भारतीय जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल रद्दअमल की हिदायत की है। नई दिल्ली में आला सतही बैनुल अक्वामी वजारती जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब सोनोवाल ने हर एक बहरी जहाज की हकीकी वक्त में निगरानी करने और खित्ते में मुतासिरा हर भारतीय जहाजरानों के लिए मखसूस लियेजों अफसरान मुकर्रर करने की हिदायत दी। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों स्कूली तलबा ने अपने यूनिफॉर्म में अपने असातिज़ा और वालिदैन के साथ रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में जमा होकर एहतजाज किया और मकबूजा इलाके में पाकिस्तान की फौज की जुल्म ज्यादतियों की मजम्मत की। खबरों में कहा गया है कि ये स्कूली तलबा पीर के दिन कसीर तादाद में जमा हुए और अमन की निशानी के तौर पर अपने हाथों में सफेद परचम उठाए हुए थे। उनके हाथों में बैनर भी थे जिन पर लिखा हुआ था कि बैनुल अक्वामी मीडिया हमारे बारे में भी खबरें दी। वो लोग पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस पूरे इलाके में ये एहतजाज पाकिस्तान के तवील अरसे से चले आ रहे कब्जे के लिए एक बराह रास्त चैलेंज बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों ने वहां बहिमाना कार्रवाई शुरू कर रखी है जिसमें दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात अमरीका के टेक्सास के डेलस स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक जुमेरात की रात 12:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामद की तकरीबन 99% अशिया महसूल से मुस्तस्ना रहेंगी। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आजादाना तजारती मुआहदे से सनत और तजारत और सरमायाकारी के लिए नई राहें खुलेंगी। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और यह भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से आलमी सतह पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। अमरीका ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने पाकिस्तानी फौज के मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया है और फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर जीत हासिल की और दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

मेरे वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। भारत बरतानिया जामी इक्तसादी और तजारती मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से मुस्तस्ना रहेंगी। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आजादाना तजारती समझौते से सनत और तजारत और सरमायाकारी के लिए नई राहें खुलेंगी। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और यह भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से आलमी सतह पर आवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। अमरीका ने अबराई हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने पाकिस्तानी फौज के मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया है और फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। इसके साथ ही उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से। और आज की जो फिल्म है वो है छलिया, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब जिक्र करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने छलिया को यादगार बना दिया। मुख्य कलाकारों की बात करें तो राज कपूर और नूतन हमेशा से ही मेकर्स की पहली पसंद थे। इससे अनाड़ी की भारी सफलता को देखते हुए प्रोड्यूसर सुभाष घई और डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने छलिया में भी इसी जोड़ी को रिपीट किया। छलिया में राज कपूर साहब का लुक और उनका अंदाज काफी हद तक चार्ली चैपलिन के मशहूर ट्रैम्प किरदार की याद दिलाता है। ढीले ढाले कपड़े, मासूमियत भरी मुस्कान और नेक दिल व्यक्तित्व ने इस किरदार को राज कपूर के यादगार किरदारों में शामिल कर दिया। वही नूतन अपने स्वाभाविक अभिनय और गहरी भाव भंगिमाओं के लिए जानी जाती थी। छलिया में उनका अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है, और ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर दोबारा से सुपरहिट भी साबित हुई। फिल्म में अब्दुल रहमान का जो बेहद महत्वपूर्ण और दमदार किरदार प्राण साहब ने निभाया था, उसके लिए पहली पसंद मशहूर अभिनेता राज कपूर थे। शुरुआत में राज कपूर को ही इस रोल के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन डेट्स की वजह से बात नहीं बन पाई। इसके बाद ये रोल प्राण को मिला। ये बदलाव फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि प्राण साहब ने इस पठान के किरदार को इतनी शिद्दत और भावुकता से निभाया कि ये उनके करियर की सबसे यादगार और पॉजिटिव किरदारों में से एक बन गया। इसके अलावा रहमान और शोभना समर्थ ने भी अपनी भूमिकाओं को पूरी गंभीरता और प्रभाव के साथ निभाया, जिससे फिल्म की कहानी और अधिक मजबूत बन गई। और अब वक्त है फिल्म के एक और खूबसूरत नगमे का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और फिल्म का नाम है छलिया। दोस्तों, छलिया फिल्म अगर आपने देखी होगी तो देखते समय अगर आप जरा गौर करेंगे तो एक मजेदार बात नजर आएगी। फिल्म के कुछ दृश्यों में जब राज कपूर साहब सड़क पर चलते दिखाई देते हैं तो पीछे दीवारों पर उनकी ही पुरानी फिल्मों के पोस्टर भी दिखाई देते हैं, यानी पर्दे पर राज कपूर भी हैं और बैकग्राउंड में भी उनकी फिल्म की झलक भी है। आज की भाषा में इसे एक दिलचस्प मेटा रेफरेंस कहा जा सकता है, जो दर्शकों के लिए एक छोटा सरप्राइज था। कहा जाता है कि डम डम डिगा डिगा इस आइकॉनिक गाने की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने खुद अपने किरदार के नटखट मिजाज को बेहतर दिखाने के लिए कोरियोग्राफी में कुछ खास बदलाव करवाई थी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक छोटा सा संदेश।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं।

एक व्यक्ति के घर में रहना पड़ता है। करीब 5 साल बाद शांति अपने बेटे के साथ भारत लौटती है। उसका पति केवल उसे स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन समाज की शंकाएं और लोगों के सवाल उनके सामने एक नई मुश्किलें खड़ा कर देते हैं। यहाँ तक कि परिवार के लोग भी उसे अपनाने में हिचकिचाते हैं। ऐसे कठिन समय में उसकी जिंदगी में आता है छलिया, जिसका किरदार राज कपूर साहब ने निभाया है। एक बेफिक्र लेकिन नेक दिल इंसान जो शांति का सहारा बनता है। धीरे धीरे कहानी रिश्तों, विश्वास, गलतफहमियों और भावनात्मक संघर्षों के कई मोड़ों से गुजरती है। आखिरकार अनेक उतार चढ़ाव के बाद सच सामने आता है, गलतफहमियां दूर होती हैं और बिछड़े हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का मौका मिलता है। छलिया की सबसे बड़ी खूबी यह है, ये दर्शाती है कि इंसानियत, विश्वास और प्रेम किसी भी पूर्व आग्रह से बड़े होते हैं। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है छलिया। और श्रोताओं, फिल्म का जो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके मेल भी मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं आपके मेल अब पढ़ लेती हूं। ये मेल आया है नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवगन, सावित्री बाई का पलियारी, छत्तीसगढ़ से। और आगे बढ़ते हैं, ये मेल आया है दादा बाबू रोड झारखंड से, मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन बाबू, मिर्फा और बेबी चाहत का। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से मेल कर रहे हैं, साथ में हैं शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्णजीत सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुन्नूर गुरलाल और अविराज सिंह जी हैं। नीतेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम और कृष्णा देवगन हैं छत्तीसगढ़ से। और ये हैं सुनील पाठक जी, जो एक ही फिल्म से कार्यक्रम के लिए मेल किया है उन्होंने। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा जी। ग्राम पंचायत जाफराबाद से है सुधाकर, प्रशांत, संचित, परमेश, प्रणाली, सानवी और कल्पना। वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला, ये लिखते हैं आज की फिल्म सुभाष देसाई की छलिया, राजकुमार कपूर, प्राण नूतन की भूमिका वाली फिल्म, कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजी लाजवाब फिल्म पेश हो रही है, बेहद लाजवाब पेशकश, धन्यवाद आपका जो आप आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल से जुड़े हुए हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। और आगे बढ़ते हैं, और ये मेल आया है हमारे पास छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसफाक, खतीजा, मोहम्मद असफाक, आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर और इनके परिवार के सभी सदस्य का। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी, दीपा रिमझिम गुप्ता जी का है मेल। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु हैं हमारे साथ जुड़े हुए। मेरठ कैन से दिग्दर्शन और कविता गौड़। और ये है नोहार जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु जी और संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भारत, कमल, पिंगावाला चौक जालंधर से हैं। और ये है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजीत भावसागर लिखते हैं दहेज और रूढ़िवादी सोच पर ये फिल्म, बिल्कुल सही बात, ये इस फिल्म में बहुत सारी समाज की विभाजन के दौरान जो परिस्थितियां थी उसको उजागर किया गया है। तो चलिए कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं फिल्म के आखिरी पड़ाव पे। दोस्तों, अगर छलिया आज भी याद की जाती है तो उसके संगीत का योगदान बहुत बड़ा है। फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और गीत लिखे थे मशहूर शायर कमर जलालाबादी ने। गायकी की बात करें तो फिल्म के गीतों को अपनी आवाज दी थी मुकेश, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी। 1960 में रिलीज हुई छलिया को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और ये उस साल की सफल फिल्मों में गिनी गई। राज कपूर और नूतन के अभिनय की विशेष रूप से

दर्शकों ने पसंद किया उनको और दोनों को 1961 के फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकन भी मिला। छलिया की एक और खास बात यह थी कि अपने दौर की यह उन गिनी चुनी फिल्मों में शामिल थी जिसमें विभाजन के दौरान बिछड़ गई महिलाओं के दर्द और समाज द्वारा उन्हें स्वीकार न किए जाने जैसे संवेदनशील मुद्दों को बड़े पर्दे पर सामने रखा। यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ अपने गीत संगीत के लिए नहीं बल्कि अपने सामाजिक सरोकारों के लिए भी याद की जाती है। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म का ये आखिरी गीत।

श्रोताओं, उम्मीद है फिल्म से जुड़ी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। फिल्म मुलाकात होगी दिन के 3 बजे मैटनी मेलोडीज प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनिएगा समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। भारत बरतानिया मुक्त व्यापार समझौता अज तो लागू होया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा यह समझौता भारत बरतानिया की भाईवली विच एक महत्वपूर्ण पल है। केंद्रीय मंत्रियों ते उद्योग जगत ने भी भारत बरतानिया मुक्त व्यापार समझौते की शलाघा की। भारत तो बरतानिया नूं वख वख उत्पाद रवाना करने की लड़ी विच अज पंजाब ते अमृतसर ते लुधियाना तो भी उत्पादों की खेप रवाना की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा केंद्र सरकार ने नवी ऊर्जा नाल आयुर्वेद ते योग नूं आलमी पद्धर ते स्थापित कीता है। भारत दी प्रधानगी हेठ 12वें ब्रिक्स ते किरत ते रोजगार मंत्रियां दी मीटिंग हैदराबाद च शुरू हुई। भारत ने कल पहले एक रोजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच विच इंग्लैंड नूं 6 विकटां नाल हराया।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुरदनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म।

0: रहा है। आज ओडिशा के लिए मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है और आलमी फीफा फुटबॉल कप के फाइनल मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जामे इख्तिसादी और तिजारती समझौता CETA और सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक समझौता जो आज से नाफिज हुआ है भारत और बरतानिया के दरमियान साझेदारी में एक अहम पेशरफ्त है। जनाब मोदी ने यह बात कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए कही। वजीर आजम ने मजीद कहा कि CETA से भारत के किसानों, कारोबारियों और MSMEs को काफी फायदा पहुंचेगा, साथ ही कई फाल शोबों को बरतानिया की मार्केट में ज्यादा रिसाई हासिल होगी। वजीर आजम ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी, पेशावराना खिदमात और जिद्दत तराजी में इश्तराक को वसत हासिल होगा और हुनर याफ्ता भारतीय अफराद की ज्यादा आमद और रफ्त में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत और बरतानिया मुश्तरका खुशहाली के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता आज से लागू हो गया है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान ये समझौता नाफिज होने की खुशी में तिजारत और सनत की वजारत मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है जिसके दायरे में सभी रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके आएंगे। गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल हीरे जवाहरात की बरामद को फरोग देने से मुतालिक काउंसिल और कस्टम अथॉरिटी और दूसरे मुतालिका इदारों के इश्तराक से आज तीसरे पहर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी जाएगी। इस सिलसिले में तिजारत सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजनामा में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि ये जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरिद मौके फराहम करेगा और साल 2047 तक विकसित भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नस्बुल ऐन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समझौते से मुआशरे के हर तबके को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत के अवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। सनती इदारों ने भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहिदे को भारत के आजाद तिजारत से मुतालिक सफर में एक तारीखी संगे मील करार दिया है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप ने कहा कि मजकूरा मुआहिदा आलमी वैल्यू चेन्स में भारत की शराकत दारी और इख्तरा पर मबनी तरक्की को फरोग देने में कामयाब और मुआविन साबित होगा। जनाब स्वरूप ने भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदे के निफाज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। एसोचैम के सदर निर्मल कुमार मिंदा ने कहा कि मजकूरा मुआहिदे के जरिए दुनिया की तो सबसे कदीम जमहूरियतें साथ आई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकजी सरकार एक नई तवानाई और जोशो खरोश के साथ योग और आयुर्वेद को आलमी मंजरनामे पर लाई है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में 2026 के सोश्रुतम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आयुर्वेद की कदीम जर्राही को साइंसी मेयारात पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि और ज्यादा भलाई, नीस बेहतरी के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीके अपनाने की जरूरत है।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि आयुष की वजारत आलमी सेहत तंजीम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आयुर्वेद के तरीकाए इलाज को आलमी मेयार का बनाने के काम को मुस्तहकम किया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के दौरे के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। इस दौरे के दौरान जालंधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेहतर बनाए गए दीगर 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये नई रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से जोड़ेगी।

0: ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। वजीर मुमलिकत मोहतरमा शोभा के साथ मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया की जेर सदारत आला सतह की मीटिंग में सोशल सिक्योरिटी को फरोग देने, काम करने वाली खवातीन की शराकतदारी में इजाफा करने, आलमी हुनरमंदी को बरूए कार लाने और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बेहतर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कानून साजों को बामानी बहस व मुबाहिसे और तामीरी तबादला ख्याल के लिए इज्जत मिलती है, न कि ऐवान में रखना अंदाजी के लिए। विधायी गौरव यात्रा के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि राजस्थान की जमहूरी मुजाकरात और तौर तरीकों की एक शानदार रिवायत है। इस यात्रा का एहतमाम राजस्थान कानून साज असेंबली के 75वें साल के मौके पर अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। असेंबली को जमहूरियत का एक स्कूल करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतों को अवामी नुमाइंदों की नुक्ताचीनियों को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। अच्छे कामकाज की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शफाफियत और जवाबदेही वक्त का तकाजा है।
1: लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो, मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेही जनपद भी होना चाहिए। समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए। वही जनपद सफल होगा और वही शासन सफल होगा।
0: भारत ने खबरदार किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात न होने और आलमी तनाज़ेआत पर मुअस्सर तौर पर तवज्जो न देने के नतीजे में इस आलमी इदारे से अवाम का एतमाद उठ रहा है। ये बात अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने मुस्तकबिल के लिए कसीर पहलू वाली हिकमत अमली के मौजू पर वजीरों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि सलामती काउंसिल मौजूदा तनाज़ेआत में बामानी तरीके पर मुदाखलत करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से बैनुल अक्वामी अमन और सलामती बरकरार रखने की उसकी अहलियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज ओडिशा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। शिमाल मशरकी भारत के बास हिस्सों बिहार, मगरबी बंगाल और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश होने का अंदाजा लगाया गया है। फीफा आलमी फुटबॉल कप 2026 में स्पेन फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction is eroding global public confidence. Red alert for heavy rain in Odisha today, and in FIFA World Cup.

0: दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,60,00,000 रुपए से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान

0: किया है। आज नई दिल्ली में सौ श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा तो प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
1: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और आप प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, इस कलाकार में मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे जो आज की कलाकार हैं वो हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज पार्श्व गायिका और अभिनेत्री थी, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपने अभिनय और सुरीली आवाज से अपनी पहचान बनाई। वे एक मशहूर शास्त्रीय गायक घराने से ताल्लुक रखती थी और जतिन ललित की बहन थी। जी हाँ, इतना ही काफी है और अब तो आप पहचान गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुलक्षणा पंडित की। तो आइए आज हम करेंगे इनके बारे में ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उनकी आवाज में ये खूबसूरत।

श्रोताओं, अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो सुलक्षणा का जन्म छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उनके पिता पंडित प्रताप नारायण पंडित एक कुशल शास्त्रीय गायक थे और दिग्गज पंडित जसराज उनके चाचा थे। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। पार्श्व गायिका के रूप में उनका

करियर 1965 में आई फिल्म तकदीर से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के साथ युगल गीत गाया। उन्होंने हिंदी, बंगाली और मराठी जैसी कई भाषाओं में गाने भी गाए। और अगर उनके अपने करियर की बात की तो उलझन से बतौर अभिनेत्री के रूप में उन्होंने कदम रखा। इसके बाद उन्होंने हेरा फेरी, अपनापन, संकोच और थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्में 25 फिल्मों में काम किया। फिल्म संकल्प के गीत तू सागर है के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार भी मिला।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओ, हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारी कलाकार हैं वो एक बेहतरीन पार्श्व गायिका सुलक्षणा पंडित है। इस कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपके साथ बनी हुई हूँ। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, और जैसा कि हमने बताया कि इनका जो बैकग्राउंड था वो पूरा ही गायक के बैकग्राउंड का था। अगर हम उनका जो संबंध था हरियाणा राज्य के हिसार जिले के पिली मंडोरी गांव से था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और दिग्गज पंडित जसराज उनके मामा थे। राजगढ़ के पूर्व सांसद और जनसंघ नेता वसंत कुमार पंडित भी उनके मामा थे, और जैसा कि हमने बताया कि जतिन ललित उनके भाई थे, लेकिन उनके जो तीसरे भाई यानी जो सबसे बड़े भाई मंदिर वो भी एक बेहतरीन गायक थे। पहले जतिन ललित से पहले उनका उन्हीं के साथ बहुत ही अच्छा गाना रिकॉर्ड करते थे, और साथ ही उनकी तीन बहनें भी थी, माया एंडरसन, संध्या सिंह और विजेता पंडित थी। उनके पिता वो भी एक शास्त्रीय गायक थे। पंडित के भतीजे यश पंडित भारतीय टेलीविजन अभिनेता है। उनकी भतीजियां श्रद्धा पंडित और श्वेता पंडित पार्श्व गायिका है, और बहुत ही प्रसिद्ध गायिका उनकी चचेरी बहन है जो है हेमलता जी।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और जो हमारे पास पहला संदेश आया वो आया है गांव लोहगर ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह का, और इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। अगला संदेश है नितेश देवगन जी का और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूर्ण राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, जो कि हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। यासिन अंजान जी हमें लिखकर भेज रहे हैं और उनके साथ हैं साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रानाज, बेबी चाहत, अगला जो कि हमें लिखकर भेज रहे हैं झारखंड से। अगला जो संदेश है वो है अमर रमेश कुमार का और उन्होंने लिखा है कि उन्हें सारे गीत बहुत ही

लाजवाब लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो संदेश है वो है सोमदत्त का, जिला पटियाला पंजाब से, और इनके साथ है कैरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। अगला संदेश है मसरूर हसन जी का और सहारनपुर से, और इनके साथ है सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम। अगला जो संदेश है गुरमीत सिंह का है और साउथ एक्सटेंशन से, वो हमें लिखकर भेजा है शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। धर्मेंद्र चीपा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं, रोचक किस्से सुनवा रहे हैं और साथ साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, हमको बेहतरीन जानकारी मिल रही है, ये जानकारी हमारे ज्ञान में इजाफा करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ है कपिल चीपा और पूजा परिहार। अगला जो संदेश है वो दिग्दर्शन गौर जी का है मेरठ कैंट से, और इनके साथ है कविता गौर, अनिल मोहन जी हमें लिखकर भेजे, इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। प्रकाश वर्मा हमें लिखकर भेजे, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से। तुलसी मस्कीन लिखकर हमें भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशूर। और जो अगला संदेश है वो है फारूक अली खान का, और इनके साथ है फारिया ताहिरा और फरहीन, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं यूपी से। अगला जो संदेश है वो आर कुमार का है, इनके साथ है मिंटू पिंकी आती अरोड़ा, जो कि हमें लिखकर भेज रहे हैं पंजाब से। इशक मोहम्मद जी का संदेश है, अगला संदेश है फागू राम यादव का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, और इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, स्वर्ण सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं लोगर ठाकुरवाला से। अगला जो संदेश है वो है सुदर्शन मुखी का, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और अगला संदेश है संदीप मक्कर जी का, और इनके साथ है ज्योति मक्कर, मन्नत भरत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक से, अजीत भावसर, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं वीरमगान गुजरात से, अमीना तखन जी हमें भेज रहे हैं गांव घिटरोनी नई दिल्ली, साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम और इनके अन्य साथी। साथ ही अगला संदेश है संजय ढींगिया के, जो बागपत उत्तर प्रदेश से हमें लिखकर भेजन के साथ हैं नमन और अपार ढींगिया।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे आज के इस कार्यक्रम में सुलक्षणा पंडित जी के बारे में। अगर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि अभिनेता संजीव कुमार ने उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। काम मिलना बंद हो जाने के बाद उनका समय कठिन हो गया और उनकी बहन विजेता पंडित और बहनोई संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने उनके लिए भक्ति एल्बम बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी आदेश जी का निधन हो गया था। साथ ही अगर हम बात करें विजेता पंडित जी की, तो बहुत कम काम मिलने की वजह से और साथ ही उनकी शारीरिक क्षमता जो थी वो काफ़ी प्रभावित हुई, और प्रभावित होने से उन्होंने बहुत ही कम काम किया। उन्होंने जुलाई 2017 में आज ही विजय अकेला को एक लंबा रेडियो साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय और गायन करियर के बारे में बात की थी। श्रोता, वो दिन था 6 नवंबर 2025 को जब हम सभी ने विजेता पंडित जी को खो दिया। हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ को हम आज भी याद करते हैं उनके इन बेहतरीन गीतों से। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए विदा।

0: में 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नजर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप निधि कटियागी से खबरें सुनिए। भारत और ब्रिटानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और यह भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरी तफसील से। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है कि जामे इकतसादी और तजारती समझौता CETA और सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक समझौता जो आज से नाफिज हुआ है, भारत और बरतानिया के दरमियान साझेदारी में एक अहम पेशरफ्त है। जनाब मोदी ने यह बात कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए कही है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि CETA से भारत के किसानों, कारोबारियों और MSMEs को काफी फायदा पहुंचेगा, साथ ही कई फाल शोबों को बरतानिया की मार्केट में ज्यादा रिसाई हासिल होगी। वजीर आजम ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी, पेशावराना खिदमात और जिद्दत तराजी में इश्तराक को वसत हासिल होगा और हुनर

तब भारतीय अफराद की ज्यादा आमद और रफ्त में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत और बरतानिया मुश्तरका खुशहाली के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी मसनूआत जामे इकतसादी और तिजारती समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान ये समझौता नाफिज होने की खुशी में तिजारत और सनत की वजारत मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है, जिसके दायरे में सभी रियासतें और मरकज के सिरे इंतजाम इलाके आएंगे। गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल हीरे जवाहरात की बरामद को फरोग देने से मुतालिक काउंसिल और कस्टम अथॉरिटी और दूसरे मुतालिका इदारों के इश्तराक से आज तीसरे पहर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है, जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी जाएगी। इस सिलसिले में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजाना अखबार में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि यह जामे इकतसादी और तिजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरिद मौके फराहम करेगा और साल 2047 तक विकसित भारत के वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के नस्बुल ऐन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इस समझौते से माशरे के हर तबके को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत की अवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा इससे न सिर्फ भारत के बरामदकारों को फायदा होगा बल्कि व्हाइट कॉलर सर्विस से वाबस्ता लोगों के लिए भी सूदमंद साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते के तहत बरतानिया के लिए लगभग भारत की सभी बरामदी मसनूआत को महसूलात से छूट हासिल होगी, जिससे छोटे ताजिरों, किसानों, माहीगीरों और दूसरे शोबों के लिए जबरदस्त मौके पैदा होंगे। सनती इदारों ने भारत बरतानिया आजाद तजारती मुआहिदे FTA को भारत के आजाद तजारत से मुतालिक सफर में एक तारीखी संगे मील करार दिया है। एसोचम के सदर निर्मल कुमार मिंदा ने कहा कि मजकूरा मुआहिदे के जरिए दुनिया की दो सबसे कदीम जमहूरियतें साथ आई हैं। उन्होंने ये कहा कि इस मुआहिदे से टेक्सटाइल, चमड़े, बहरी अशिया, जवाहरात और जेवरात, इंजीनियरिंग मसनूआत और केमिकल्स के शोबों को नुमाया फायदा पहुंचेगा। भारत की तिजारत के फरोग से मुतालिक काउंसिल के चेयरपर्सन मोहित संगला ने कहा कि मजकूरा मुआहिदा भारतीय बरामदकारों के लिए मौके का एक नया बाब खोलता है और इससे बाजार में उनकी रिसाई में इजाफा होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज नाफिज होने वाला भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तिजारती मुआहिदा भारत की मुआशी तरक्की और आलमी शराकत दारियों को मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम है। जनाब सिंह ने उजागर किया कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में भारत ऐसे मुआहिदे कर रहा है जो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करते हैं, आलमी मौके को फरोग देते हैं और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाते हैं। सारिफिन की उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तिजारती मुआहिदा एक अहम कदम है जो किसानों और ज़रई शोबे का तहफ्फुज़ करते हुए मुल्क के इक्तिसादी मवाद को मुस्तहकम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मज़कूरा मुआहिदा भारत और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी रवाबित को मुस्तहकम करने की जानिब एक इंतहाई अहम कदम है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकजी सरकार एक नई तवानाई और जोशो खरोश के साथ योग और आयुर्वेद को आलमी मंजरनामे पर लाई है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में 2026 के सोश्रुतम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आयुर्वेद की कुलीन जर्राही को साइंसी मेयारात पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि आयुष की वजारत आलमी सेहत तंजीम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आयुर्वेद के तरीकाए इलाज को आलमी मेयार का बनाने के काम को मुस्तहकम किया जा सके। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरपर्सन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान बाला के नए मुंतखबा मेंबरों को हलफ दिलाया। इनमें कर्नाटक से मंसूर अली खान और मध्य प्रदेश से रजनीश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के 17 जुलाई के दौरे के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। इस दौरे के दौरान जालंधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेहतर बनाए गए दीगर 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा।
مرکزی وزارت داخلہ نے پورے مہاراشٹر کے لیے ایک نئی خصوصی عدالت نامزد کی ہے. اس عدالت میں قومی جانچ ایجنسی کے قانون کے تحت اور اس ایجنسی کی طرف سے تفتیش کردہ معاملات کی سماعت کی جائے گی. وزارت داخلہ نے بمبئی ہائی کورٹس کے

0: चीफ जस्टिस और महाराष्ट्र सरकार से सलाह मशविरे के बाद इस अदालत का ऐलान किया है। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। वजीर मुमलिकत मोहतरमा शोभा के साथ मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया की जेर सदारत आला सतह की मीटिंग में सोशल सिक्योरिटी को फरोग देने, काम करने वाली खवातीन की शराकत दारी में इजाफा करने, आलमी हुनरमंदी को बरूए कार लाने और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बेहतर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। फिलिस्तीन ने लड़ाई से मुतासर मुल्क में 3 अहम प्रोजेक्ट शुरू करने के भारत के फैसले का खैर मकदम किया है। इनमें से एक प्रोजेक्ट पेशावराना तरबियती इदारे में जिस्मानी आजा फिट करने का एक खसूसी अस्पताल कायम करने से ताल्लुक रखता है। नई दिल्ली में फिलिस्तीन के सिफारत खाने ने एक बयान जारी करके भारत के फैसले का खैर मकदम किया है। इस बयान में यह भी कहा गया है कि भारत ने यह फैसला एक ऐसे वक्त में किया है जब फिलिस्तीनी अवाम, खासतौर पर गजा पट्टी के लोगों को हालिया दिनों में सबसे ज्यादा संगीन इंसानी बहरान का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर वो बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अगले हफ्ते फौजी हमले तेज कर दिए जाएंगे। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिनों में अमरीकी हमले जारी रहेंगे जिसके तहत ईरान के बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। भारत ने खबरदार किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात न होने और आलमी तनाज़ियात पर मुअस्सर तौर पर तवज्जो न देने के नतीजे में इस आलमी इदारे से अवाम का एतमाद उठ रहा है। ये बात अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने मुस्तकबिल के लिए कसीर पहलू वाली हिकमत अमली के मौजू पर वजीरों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि सलामती काउंसिल मौजूदा तनाज़ियात में बामानी तरीके पर मुदाखलत करने में नाकाम काम रही है जिसकी वजह से बैनुल अक्वामी अमन और सलामती बरकरार रखने की उसकी अहलियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। और फीफा आलमी कप में दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तिजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्त दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और यह भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में वैकपाल की मौसीकी से नगमा फिल्म है सौतन की बेटी।

अरे हमरा करजुआ काट गई तोरी तीखी नजरिया की धार, हे गोरिया।

हे गोरिया हमें जीना।

0: गले में।
1: अरे गोरिया गोरिया फिर भी।

मां छाए बदल, कभी तुमसे सुनाए कभी तू छेड़े गजल, कभी बल खा के चले कभी लहरा के चले, चले तू जब भी चले दी।

0: खोया जहर पीना तेरी गली में ए गोरिया।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे, फिल्म थी प्यारा दुश्मन। और सामने लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में राम लक्ष्मण की मौसी से जाय नगमा, फिल्म है पुलिस पब्लिक।

वही समझ के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशी खिदमत है गीतों भरी कहानी तकदीर।

0: हेलो प्रिंस, कैसे हो?
1: खैरियत से तो हो ना?
0: नहीं यार, अंधेरे में कैसे बैठे हो?
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही बैठा था कि अचानक नींद आ गई।
0: हाँ, नींद आ गई थी या कोई सुहाना सपना देख रहे थे?
1: दरहकीकत मैं सपनों ही में गुम था, क्योंकि अभी अभी एक नगमा सुन रहा था यार।
0: खैर यार छोड़ो,
1: तुम सुनाओ दोस्त, तुम्हारा क्या हाल है? और हाँ, तुम्हारे अरमानों के आसमान पर मोहब्बत की पतंग कहाँ तक पहुंची?
0: हाँ दोस्त, अपना नसीब ऐसा कहा कि इतनी जल्दी पतंग हवाओं से बातें करे। अभी तो जद्दोजहद के समंदर में मुकद्दर आजमाई करनी बाकी है। शायद इस गहरे समंदर की मौजों में कोई कीमती मोती हाथ आ जाए।
1: भाई ऐसा क्यों? और तुम्हारी नीलोफर का क्या हुआ? भाई मैंने तो सुना है आजकल तुम्हारा नीलोफर से खूब
0: वो तो ठीक है, मगर दोस्त तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो बड़े बाग की बेटी है। हाँ वैसे नीलोफर का दिल बहुत साफ है और उसके शीशे दिल में मेरी मोहब्बत की तस्वीर भी साफ साफ नजर आती है, लेकिन ये सोचकर के जमाना क्या कहेगा, इसलिए मोहब्बत की दहलीज पर कदम रखने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि मेरे पहले कदम ही फिसल जाए और मैं गुमनामी और बदनामी के ऐसे गार में जा गिरूं कि जहां सिवाय अंधेरे के और कुछ हाथ ना लगे और फिर ये दुनिया मेरा मजाक बनाती रहे।

0: रंगीन लम्हात को साल भर का भी वक्त गुजरने नहीं पाया था कि अचानक रूबीना एक शाम मेरे घर आई। तुम्हारी हालत बताओ, क्या हुआ, प्लीज बताओ ना।
1: प्रिंस, बस ये पूछो क्या ना हुआ जो मैं बताने जा रही हूँ। क्या तुम उसको सच जानोगे, हकीकत समझोगे और क्या मेरी बात सुनकर बर्दाश्त कर सकोगे?
0: आखिर फिर भी बताओ तो सही, क्या हुआ मेरी रूबीना को?
1: पापा ने आज ही मुझसे कहा कि तुम कल अमेरिका अपने भाई के पास पढ़ाई के लिए जाओगी।
0: क्या?
1: और अब मेरी तमाम तैयारी मुकम्मल है। बहुत मुश्किल से चंद लम्हे निकाल कर तुम्हें बताने आई हूँ। मेरे प्रिंस, हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना।

जावेद और उसके घरवाले हैदराबाद के रहने वाले थे। जावेद बीएससी मुकम्मल करके अपनी बाकी पढ़ाई अमरीका जाकर मुकम्मल करना चाहता था। उसकी लगन और मेहनत को देखते हुए उसके वालदेन ने उसको अमरीका भेज दिया था। अमरीका रहते हुए जावेद ने मुझे बहुत याद रखा था। जावेद के खतूत बहुत पाबंदी से मेरे नाम आते। एक रोज एक बहुत तवील खत मेरे नाम आया। जावेद ने अपने खत में लिखा था, दोस्त, जिस कॉलेज में मैं जेर तालीम हूं उस कॉलेज में एक हिंदुस्तानी लड़की भी पढ़ती है जिसका नाम नीलोफर है। निहायत खूबसूरत, निहायत जहीन, निहायत स्मार्ट। एक दिन जब मैंने अपना तारुफ कराया और उसको यही बताया कि मैं इंडियन हूं तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने खुद ही मुझसे आकर दोस्ती कर ली और दोस्ती भी हमारी काफी बुलंदी पर पहुंच चुकी है। खतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैंने जावेद को लिखा, यार मुझे अपने दोस्त का फोटो तो भेजो ताकि मैं भी तो देख सकूं कि मेरे दोस्त की तकदीर का सितारा कैसा है। मगर जावेद हमेशा मुझे यही लिखता रहा। नीलोफर फोटो देने से इंकार करती है, कहती है कि तुम मेरा फोटो लेकर क्या करोगे, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी हूं। कल जावेद का मुख्तसर खत मिला। लिखा था, दोस्त, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है और परसों मैं अपने वतन पहुंच रहा हूं। जावेद अब अपने वतन पहुंच चुका था। कल के जावेद और आज के जावेद में बहुत नुमाया फर्क आ चुका था। कहां कल का परेशान हाल जावेद और कहां आज का तालीम याफ्ता खूबसूरत खुशहाल जावेद। जावेद ने भाग दौड़ करके शहर में एक दुकान भी ले ली थी और उसमें अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोला था। वहां नीलोफर भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने घर आ चुकी थी। मगर नीलोफर ने जावेद से वहीं अमेरिका में रहकर अपने मिलने के औकात और जगह तय कर लिए थे। उसने जावेद से इस बात का इकरार भी करा लिया था कि इन मुलाकातों का जिक्र आप न अपने दोस्त से करेंगे न घर वालों से। मैंने जब सुना कि रूबीना भी पढ़ाई पूरी करके घर आ चुकी है तो मैं उसके घर पहुंचा। मगर मालूम हुआ रूबीना एक हफ्ते के लिए अपने मामा के घर बैंगलोर गई हुई है। मैंने एक हफ्ता बहुत बेचैनी से गुजारा। एक हफ्ते बाद फिर मुलाकात की गरज से रूबीना के घर की तरफ चला। मगर रूबीना ने आवाज सुनने के बाद भी मेरी तरफ देखना गवारा नहीं किया और सीधे निकली चली गई। रूबीना के इस रवैये से मुझे बेहद सदमा हुआ। मैंने तो 3 साल कैसे रूबीना की तस्बीह पढ़ पढ़ कर गुजारे। आज जब हमारे प्यार की शमा रोशन होने का वक्त आया तो जाने ने ही हमारा साथ न दिया। क्या हमारी तकदीर में हमेशा अंधेरा ही रहेगा? वक्त अपनी गर्दिशी अय्याम की चक्की चलाता रहा। जावेद की मेरी मुलाकातें होती रहीं और उधर जावेद

जावेद, अब तुम जल्दी से अपनी अम्मी को हमारे घर भेजो। और देखो, ये बात अभी राज ही रहनी चाहिए। जब हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो जमाना देखेगा और कहेगा कि जोड़ी हो तो ऐसी।

0: मैंने इस दरमियान सोचा कि जावेद की अम्मी से पूछूं नीलोफर का घर कहाँ है, नीलोफर कैसी लड़की है। मगर ये सोचकर खामोश रहा जब जावेद ने अब तक मुझसे कुछ नहीं बताया तो मैं उनसे क्यों पूछूं। जावेद की शादी तय हो गई थी, मालूम क्यों मेरे दिल पर एक बोझ सा था। मेरी कई मरतबा अजीब सी कैफियत हुई थी, एक तरफ खुशी और एक तरफ एक अनजाना सा खौफ।
1: अरे दोस्त, क्या बात है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? बारात में नहीं चलोगे?
0: नहीं जावेद, मैं बारात में नहीं जा रहा हूं, बल्कि वलीमे की तैयारी मुकम्मल करता हूं ताकि कल परेशानी ना हो। जब भाभी आ जाएंगी तो सबसे ज्यादा तो मैं ही देखा करूंगा ना। जावेद की बारात अब मुख्तार साहब के घर पहुंच चुकी थी। बारात का शानदार इस्तकबाल किया गया, खूब खातिर तवाजु हुई, खाने से पहले निकाह हुआ, चारों तरफ से मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो की आवाजें आती रही। मुबारकबाद का सिलसिला इतना तवील था कि खत्म ही ना होता था। शाम को दुल्हन रुखसत होकर जावेद के घर आ गई। लोगों को दूर दूर तक ये वहमोगुमान भी न था कि कल का मुफलिस जावेद आज की शोहरत याफ्ता शहर के सबसे बड़े अमीर घर की बेटी को दुल्हन बनाकर लाएगा। औरतों की आवाजें थी, मुबारक हो दुल्हन, मुबारक हो, बच्चों का अजीब गरीब शोर था। कोई औरत कह रही थी दुल्हन चांद का टुकड़ा है, कोई कह रही थी दुल्हन जन्नत की हूर है, कोई कह रही थी हमारा जावेद क्या चांद नहीं है। एक हफ्ते बाद जावेद मेरे कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़कर जोर से दबाकर बोला,
1: दोस्त तुम्हारे हुए एहसानात का मैं कैसे शुक्र अदा कर पाऊंगा जो तुमने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किए।
0: बेवकूफी की बातें मत करो यार, ये भाइयों का मामला है। खैर छोड़ो, क्या आज भी हमारी भाभी को नहीं दिखाओगे?
1: अरे यार, मैं तो ये क्या तेरी भाभी को दिखाऊंगा, तूने तो खुद ही मुझसे कहा था कि जब भाभी आ जाएंगी तो सबसे ज्यादा तो तू ही देखा करेगा।
0: मैं जावेद के साथ उसके घर पहुंचा। जावेद की अम्मी ने मेरी पलाई ली, बहुत सी दुआएं दी और कहा तुमने तो जावेद की शादी में कोई सेहरा भी नहीं पड़ा, तो कोई फिल्मी नगमा ही सुना दो। सुनकर मेरी अम्मी भी आ गई, सब हमजुबान होकर गाने की फरमाइश करने लगे।

0: जावेद की अम्मी ने दुल्हन के मुंह पर से घूंघट हटा दिया तो मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। मेरे सामने दुल्हन की शक्ल में नीलोफर नहीं बल्कि रूबीना थी। रूबीना
1: दोस्त, क्या तुम्हें दुल्हन पसंद नहीं आई?
0: नहीं जावेद, ये बात नहीं। माशाल्लाह दुल्हन इतनी खूबसूरत है कि उसके उसने की चमक ने मेरी आंखें चकाचौंध कर दी है। चाहे तुम वाकई बहुत खुश नसीब हो, प्रिंस तुम ही कम नसीब हो जो तुम्हारी रूबीना तुम्हारे दोस्त की दुल्हन।

बहार हुस्न लुटाए क्यों, सारा बज़्म में जलवा दिखाए क्यों, तुम्हें आँखों से।

और हम ये सुनिए सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाजों में दिल से फिल्म का नगमा, नगमानिकार गुलजार, मौसीकार ए आर रहमान।

देखो ये बाला पर्वत ये रे पर्वत सर संसार

0: घंटे बज गए, चलो चलो।
1: क्यों भैया, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा दुश्मन का।
1: अच्छा लगा ना?
0: अच्छा चल चल जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओ टायर पंचर हो गया। पहले मेरे कार से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जाते रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तुम क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: क्यों पूरी होती आज टमाटर शुरू होने से पहले ही
1: श्रीमती काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तुमने खत्म कर दिया।
2: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

के इश्तराक से आज तीसरे पार कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बलकमामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी गई। इस मौके पर गैर मुल्क तजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल के अहलकारों के अलावा चेन्नई में बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर सुतपा चौधरी भी मौजूद थे। डॉक्टर चौधरी ने समझौते को बाहमी इकतसादी ताल्लुकात में एक अहम संग मील करार दिया। इस सिलसिले में तजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजनामा अखबार में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि जामे इकतसादी तजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरद मौके फराहम करेगा और 2047 तक विकसित भारत के वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के नस्बुल ऐन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते से माशरे के हर तबके को बाख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत के आवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा इससे न सिर्फ भारत के बरामदकारों को फायदा होगा बल्कि व्हाइट कॉलर सर्विस से वाबस्ता लोगों के लिए भी ये सूदमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत बरतानिया के लिए लगभग भारत के सभी बरामदी मसनूआत को महसूलात से छूट हासिल होगी, जिससे छोटे ताजरों, किसानों, माहीगिरों और दूसरे शोबों के लिए जबरदस्त मौके पैदा होंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज से नाफिज होने वाला भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती मुआहदा भारत की माशी तरक्की और आलमी शराकत दारियों को मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम है। प्रताप सिंह ने उजागर किया कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में भारत ऐसे मुआहदे कर रहा है जो मुल्क की मईशत को मुस्तकम करते हैं, आलमी मौके को फरोग देते हैं और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाते हैं। सार्फीन के उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती मुआहदा एक अहम कदम है जो किसानों और जरी शोबे का तहफ़ करते हुए मुल्क के इकतसादी मफाद को मुस्तकम करता है। सनअती इदारों ने भी भारत बरतानिया आजाद तजारती मुआहदा FTA को भारत के आजाद तजारत से मुतालिक सफर में एक तारीखी संग मील करार दिया है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल आनंद स्वरूप ने कहा कि मस्कूरा मुआहदा आलमी वैल्यू चेन्स में भारत की शराकतदारी और इख्तरा पर मबनी तरक्की को फरोग देने में कामयाब और मुआविन साबित होगा। उन्होंने भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती मुआहदे के नफाज पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। मरकजी वजारत दाखिला ने पूरे महाराष्ट्र के लिए एक नई खसूसी अदालत नामजद की है। इस अदालत में कौमी जांच एजेंसी NIA के कानून के तहत और इस एजेंसी की तरफ से तफ्तीश करदा मामलात की समाअत की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने खबरदार किया है कि अक्वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात न होने और आलमी तनाजात पर मौसर तौर पर तवज्जो न देने के नतीजे में इस आलमी इदारे से अवाम का एतमाद उठ रहा है। यह बात अक्वाम मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने मुस्तकबिल के लिए कसीर पहलू वाली हिकमत अमली के मौजू पर वजीरों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि सलामती कौंसिल मौजूदा तनाजात में बामाना तरीके पर मुदाखलत करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से बलकवामी अमन और सलामती बरकरार रखने की उसकी अहलियत के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। जनाब पी हरीश ने कहा कि 80 साल से चला रहा अक्वाम मुत्तहदा का मौजूदा निजाम और तरीकेकार आज के आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए नाकाफी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इंतशार और बेचैनी बराबर बढ़ती जा रही है। वहां जारी एहतजाज का आज 36वां दिन है। हजारों लोग रावलकोट में एहतजाज कर रहे हैं। मुश्तरका अवामी कार्रवाई कमेटी के लीडर सरदार अम्मान खान ने रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि उसने जबरन खित्ते पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर एक मकबूजा इलाका है, न कि मुतनाजा इलाका। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कामयाबी हासिल नहीं होती ये तहरीक जारी रहेगी, चाहे मुजाहरीन को अपनी जानें निछावर ही क्यों न करनी पड़े।

परचम अब्बास दा गाजी अब्बास दा सोने अब्बास दा परचम परचम अब

निष्काम रे करण चरागा लोके सारे जगमग जगमग दीवे जग दे।

सच्चा तेरा नाम है सच्चा, सच्ची जात है तेरी, जर तो महताब बना दे लालन हस्ती मेरी, जदों की ताज कर कलंदर दा, जदों की ताज कर कलंदर दा, मेरी हर एक मुश्किल पहली पहली मेरी रूह विच वसदा, लाल सखी मेरी रूह विच वसदा, लाल

झल्ला पखी पखी झल्ला में पखी झल्ला पखी पखी झल्ला में पखी पखी झल्ला में पखी पखी झल्ला में पखी झल्ला पखी ते लगे ठंडी वा मौसम गर्मी दा झल्ला पखी पखी।

जथांगे उठती वही रे बेशक दर्द मंदा दे डेरे जथ थंडा उठ सुंजड़िया जाही तो बिन

आमिल अजकल सोहना साई ना ता में मुफ्ती खून थी साई जा देखा जो

कर कर याद सजन को, जा देखा झुंड में किन मिन को, रोवा कर

ਆ ਮਿਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਹਣਾ ਸਾਈਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਖੂਨ ਥੀ ਸਾਈਂ ਵਾਟ ਨੇ।

शाम 6 बज के 10 मिनट सुनूंगे चंद पंजाबी फिल्म म्यूजिक। सेवन शुरू करते हैं सिलसिला अज दी गल दा। साडी अज दी गल दा विशा है नौजवानों विच हुनर विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट। सामिन अज अजिहे विषय की सानू बेहद जरूरत है जो सिर्फ नौजवानों का नहीं सगो पंजाब अदे देश दे भविख का भी विशा है। ते ए विशा इस करके भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ए साडे नौजवानों विच यानी कि साडे यूथ विच हुनर विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट का है। अज दे समय दे विच डिग्रियां तां बहुतियां दे कोल ने पर सफलता उस नूं मिलदी है जिस दे कोल डिग्री दे नाल नाल हुनर भी है। एक समा सी जदों लोग एक नौकरी नूं ही अपना टीचा मानदे सी पर हुण दौर बदल गया। हुण दुनिया उन्हां दी है जो एक तो वध हुनर सिखदे ने नवीआं तकनीकां अपणाउंदे ने ते अपने लई रोजगार दे आप मौके तैयार करदे ने। पंजाब दे बहुत सारे नौजवान विदेश जाण दा सुपना वेखदे ने। बेशक हर व्यक्ति

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावां डांगो आपूसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत के 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना ज़ाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम पिवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक

0: वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम, राम।
0: लोकेंद्र भाई
1: हाँ, प्रीति बहन
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम में जानकारी होगी, मनोरंजन भी होगा। तो आइए सबसे पहले जानकारी देते हैं।
1: देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी हमारे किसान भाई बहनों के लिए योजनाएं चलाई हैं
0: जी,
1: जिसमें से एक योजना है किसान उत्पादक संगठन। इसमें क्या है हम अपने भाइयों को भी बता देते हैं। प्रीति बहन क्या क्या है बताइए
0: इसमें। जैसे कि किसानों द्वारा बनाया गया एक ये पंजीकृत संगठन है।
1: हाँ?
0: और इसका जो मकसद है वो छोटे और सीमांत किसानों को संगठित करके उनकी आय को बढ़ाना और खेती को और अधिक लाभदायक बनाना है।
1: हाँ, और इसका जो उद्देश्य है वो मैं बता देता हूँ
0: जी।
1: छोटे किसानों को एक मंच पर लाना है, खेती की लागत कम करना है, बीज खाद और कृषि उपकरण उचित कीमत पर उपलब्ध कराना है, किसानों की उपज का बेहतर भंडारण प्रसंस्करण और विपणन करना है, किसानों को उनकी उपज और उचित मूल्य दिलाना है
0: जी। बिल्कुल, और इसके लिए हम योग्यता भी बता दें कि सामान्यतः किसी क्षेत्र के कम से कम 300 किसान या फिर 100 किसान मिलकर FPO बनाते हैं और फिर वो संख्या राज्य और परिस्थितियों के अनुसार बदली जा सकती
1: बिल्कुल।
0: है। और इसका महत्व ये है कि किसानों की आय, जैसे कि हमने बताया कि बढ़ोतरी होगी और जो बिचौलिए हैं उन पर भी निर्भरता कम होगी।
1: बिल्कुल, तो ये तो रही योजना। तो अब हम भाइयों को एक जानकारी दिलवाते हैं, जानकारी संध्या गुप्ता से। उन्होंने जो हमारे किसान भाई हैं, जो अनुभवी किसान हैं, उनसे अपने उनके अनुभवों को साझा किया और वो है औषधीय फसलों की खेती। तो उन्होंने जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने क्या क्या अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, आइए सुनते हैं।
2: जब भी हम अपनी बहनों से बातें करने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, उनसे अपने विचार साझा करने आते हैं, तो प्रयास हमेशा यही रहता है नित नयापन लेकर आए अपने कार्यक्रम में। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित कराया है पूजा शर्मा को, जो महिला उद्यमी है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। पूजा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने भाणाता यहाँ निबूझना चाहूंगी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उससे के मतलब निकाले हमारी बहन।
3: सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह, जो गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर एक समूह बनाती हैं, जिसमें कम से कम 10 महिलाएं और ज्यादा से ज्यादा 15 महिलाएं होती हैं, जो मिलकर एक समूह बनाती हैं। और जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में स्कीम है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उससे हमने अपने सभी समूह को जोड़ा है। और समूह बनाने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार करती है
2: जी। तो क्या उसी गांव की महिला होनी चाहिए या उस गांव तक बाहर के, जिस तरह कह रहे भैया 5 गांव की पंचायत है या 10 गांव के लोग हैं, तो ईसा भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ है।
3: सारे गांव की बहनें समूह में हो सकती हैं, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट करी
4: आईसीआर
5: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। कृषि समाचार दर्शन के आज के अंक में औषधीय फसलों की खेती करने वाले किसान अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
4: मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के हजौना गांव का निवासी हूँ। बताना चाहूंगा कि मैं पैरामिलिट्री में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट 5.5 साल देश की सेवा किया हूँ। रिटायरमेंट लेकर मैं अपने गांव हजौना में खेती करने के लिए वापस आया, जो मकसद था। शुरुआत चंदन की खेती से की थी 2018-19 में। आज हमारे बाग में लगभग 2500 पौधे चंदन के हैं। हम लोगों ने एक सैंडलवुड बेस्ड एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल बनाया, जिसको ऋषिग्राम के नाम से हम लोग प्रमोट करते हैं। हल्दी प्लस कुछ दुर्लभ औषधियों की खेती भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चंदन एक औषधीय पौधा है, उसके साथ जो हल्दी हम उगाते हैं, हल्दी की विशिष्ट वैरायटी लकडोंग हल्दी है, जो मेघालय की है, जो दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी मानी जाती है। एक काली हल्दी होती है जो भी एक औषधि है, आयुर्वेद में उसका यूज होता है। तीसरा हमारे पास एक कस्तूरी हल्दी है जो केरला फॉरेस्ट की है, वो फेस पैक में काम आता है। पूरी जो हमारी खेती है वो प्राकृतिक खेती पर आधारित है। हम लोग देसी गायें रखते हैं, रासायनिक उर्वरकों के बदले हम इसी चीजों को बनाकर हम अपने खेत को मैनेज करते हैं। और ऋषिग्राम के नाम से ही हम लोग अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, देसी गाय का घी बनाते हैं, पूरा देसी तरीके से उसको प्रोसेसिंग भी करते हैं। हमारे फार्म पर हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं किस तरीके से आप जैविक खेती कर सकते हैं और चंदन की खेती को किस तरीके से उत्तर भारत में आप लगा सकते हैं। चंदन की खेती शुरुआत करने के पहले मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है IWST वहां पर जाकर इसकी ट्रेनिंग ली थी कि क्या हमारे उत्तर भारत की जलवायु उसके लिए सूटेबल है। वहां के वैज्ञानिकों ने बताया सफेद चंदन कहीं भी हो सकता है, तो हम लोग उसको यहाँ पर उगाना प्रारंभ किए और हमारे खेत में लगभग 2500 पौधे हैं। हमारे पास चंदन की नर्सरी होती है और जितनी भी हल्दी है उसके सीड भी होते हैं, उसको हम लोग अपने फार्म पर प्रोसेस करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और अपने ई कॉमर्स ऋषिग्राम से हम लोग उसको सेल भी करते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों की बात है, किसानों को हम लोग अपने फार्म पर अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे फार्म पर आता है, देखता है, विजिट करता है, उनको हम लोग सारी चीजें बताते हैं, सही जगह से सही जानकारी लोगों को मिले, पौध मिले, सही बीज मिले। भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, वहाँ से बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार, बहुत सारी जानकारी लोगों को मिलती है। उसी का एक उत्तर भारत में जिससे हम लोग संपर्क में रहते हैं वो RCFC जोगिंदर नगर है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से हम लोगों को सहायता मिल जाती है। भविष्य की योजना हमारी ये है कि हम चंदन और जो भी हल्दियों की खेती कर रहे हैं या औषधियों की खेती जो भी कर रहे हैं, उसको हम बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं और हम हर किसान के पास ये चाहते हैं हर घर में चंदन का पेड़ हो। हमारा एक मुहिम है हर घर चंदन का, तो एटलीस्ट किसी के घर में अगर 4-6-10 पेड़ चंदन रहता है तो उसके लिए एक एसेट होता है। बहुत सारे सामाजिक दायित्व होते हैं एक किसान को, अगर उसको एक मुश्त 5-10 लाख रुपए मिल जाता है 3-4 चंदन के पेड़ों से, तो उसकी बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके घर के लिए, उसके मकान के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उसके पास एक पूंजी होगी। चंदन की साबुन बने, चंदन की अगरबत्तियां बने, चंदन की धूप पत्ती बने। थोड़ा और लेवल पे जाएंगे तो हम लोग चंदन का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके भी मार्केट कर सकते हैं, जो हमारे ग्रामीण भारत की समृद्धि के लिए नील का पत्थर साबित होगा मुझे लगता है।
6: मैं पुष्कर सिंह बिस्ते नंदानगर जनपद चमोली से हूँ। हम लोग अभी हाई एल्टीट्यूड में कुटकी की खेती करते हैं। कूट है पुष्कर मूल, तगर, जटामासी, कपूर कचरी, रोजमेरी, लेवेंडर, चिरायता, तुलसी, औषधीय खेती। और इनके थ्रू हम लोग जो है कि अलग अलग क्लाइमेट में जड़ी बूटी उगाते हैं खेतों में, वैज्ञानिक तकनीक ढंग से करते हैं। उसके बाद उसको जब तैयार होता है किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, किसानों को उसकी पैकेजिंग सिखाते हैं, ग्रेडिंग सिखाते हैं, फिर किस तरह से उसको मार्केटिंग लॉन्च किया जाता है, उस मार्केटिंग तक उसको पहुंचाते हैं हम लोग। हम लोग इसका जब खेती करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रत्येक फसल का, कि कितने नाली में कौन सी क्रॉप होगी, उस कितने हेक्टेयर में होगा और उसका उत्पादन कितना निकलेगा। सरकार उसका पंजीकरण कराती है, उस जिस खेत में जो क्रॉप होगी उसके डॉक्यूमेंट लगे होते हैं, आधार कार्ड हो गया, खसरा खतनी हो गया, और सरकार की जो संस्था होती है हर्बल रिसर्च सेंटर, वो उसमें जो है कि सत्यापन कराने के बाद हमारे नाप लेन पे हो। उसके बाद उसको सरकार वही मदद करती है कि जब माल बेचते हैं तो उसका एक रमणा बनाते हैं निकासी। प्रेजेंट टाइम पे हमारा 18 हेक्टेयर में कुटकी है, तो उस कुटकी को हम लगाते हैं। लगाने के बाद उसका 2 साल तक रेगुलर मॉनिटरिंग कराते हैं, उसमें कीड़ा न लगे। अगर कीड़ा लग गया तो हम लोग ऑर्गेनिक की ही गांव में जो है कि दवाई तैयार करते हैं गौमूत्र से, अखरोट के खाल से, जो गांव का होता है।

0: बाद जब वो तैयार होता है उसको हम पहले कल्टीवेशन खेत से करते हैं, फिर उसको वॉशिंग कराते हैं अपने यहाँ पे, वो ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसकी ग्रेडिंग कराते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड बनाते हैं, और ग्रेडिंग करने के बाद उस ग्रेडिंग को हमारी महिला ही बनाती, ग्रुप वाली से ग्रेडिंग करते हैं, और पैकेजिंग करके हम उसको बाहर इंडस्ट्री को देते हैं, जैसे आपका झांसी में इंडस्ट्री है, कलकत्ता में हो गया, बेंगलुरु में हो गया, दिल्ली में हो गया, इन जगह हम उसको जो है कि जैसे जैसे डिमांड आती है तो उसको सप्लाई देते हैं। कोई भी क्रॉप आपके कुटकी हमारी है, पुष्पर मूल है, कपूर कचरी, चटामासी, लेवेंडर है, रोजमेरी है, तगर है, जितने भी हम जड़ी बूटी करते हैं उसको खुदाई से पहले हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट का हर्बल रिसर्च सेंटर के आदमी से सत्यापन कराते हैं। हम एप्लीकेशन देते हैं कि भैया हम माल खोदने वाले हैं, आप एक बार मॉनिटरिंग करा दीजिए, वो भी सत्यापन करते हैं, एक लिखते हैं कि भाई इसमें लगभग इतना माल तैयार होगा, खुदाई के बाद फिर दोबारा जब माल पैकेजिंग होता तो फॉरेस्ट वाले से सत्यापन करेंगे, उसके बाद हमको रवाना मिलता है निकासी, उसके बाद हम कंपनी को माल पहुंचाते हैं। प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, सही मौसम रहता है तो हमारा जो है कि 30-70 का एक रेशियो जड़ी बूटी बनता है, अगर 30,000 हमने लगाया है तो 70,000 रूपए उसका लाभ निकल जाता है 2 साल में। हम बाकी किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है या प्लेन का एरिया है, 1200-1800 मीटर पे जो गाँव होते हैं, जो किसान होते हैं, जहाँ पे बेसिकली अब जंगली जानवर फसलों को बहुत नुकसान करते हैं, तो हम चाहते हैं कि औषधियों में नुकसान नहीं होता, औषधीय खेती अगर आदमी करे तो उसे एक परिवार की आजीविका तो चलती है लेकिन एक बहुत बढ़िया आय का स्रोत रेगुलर बन जाता है जड़ी बूटी में। हमने तो क्लस्टर स्टार्ट किया था, आज हम लोग उत्तराखंड के 5-6 डिस्ट्रिक्ट में किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पौध देते हैं और उन्हीं किसानों से हम बायबैक वापस लेते हैं। औषधि में अगर हम औषधि करते हैं तो हम कभी ऐसा भी हमारा चलता है, इंटरनल जो क्रॉप है अगर पेरिनियल में अगर हमने कुटकी लगाई है या रोजमेरी हमने लगाई है तो होता क्या है उसके बीच में जो 1 फीट का डिस्टेंस छूटता है, हम कहते हैं इसमें आप जो है कि हल्का सा कैमोमाइल लगा दो, कैमोमाइल की आज मार्केट में बहुत डिमांड है, वो 500-700 रुपए किलो बिक जाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो 3 महीने की क्रॉप है, 3-4 महीने में जल्दी तैयार हो जाता है, तो हम उसको बीच में वो पेरिनियल क्रॉप लगाते हैं और किसान का लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में इंकम आ जाती है, बीच में जो लंबा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बीज में किसान की इनकम बढ़ जाती है। हम तो ये कहेंगे किसानों को कि अधिक से अधिक मात्रा में जड़ी, क्योंकि जड़ी बूटी का आज बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट तो है ये, क्योंकि दो काम है वो, एक तो स्वास्थ्य के लिए भी है, दूसरा हम किसी के स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे हैं साथ साथ सोशल वर्क में। एक अपना लक्ष्य रखा है कि उत्तराखंड के जितने हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्र हैं कि हम लोग जो है कम से कम किसानों को जो है कि 100% जोड़ेंगे जड़ी बूटी किसी न किसी क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि जहां पर कुटकी होती है वहां सब होता है, जहाँ पर जो क्रॉप होती है जड़ी बूटी में, कोई कम एल्टीट्यूड में कोई ज्यादा एल्टीट्यूड, तो हम हर प्रकार के क्रॉप किसानों को दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर हमारा हर किसान के घर में कम से कम 50,000 रुपए सालाना इनकम जड़ी बूटी से जाए।
1: मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक औषधि किसान उत्पादक हूँ, जिसमें मैं औषधि के रूप में अश्वगंधा, अकरकरा, कलौंजी, सतावर, सफेद मूसली, चिया की खेती करता हूँ। मुख्य रूप से अश्वगंधा को पाउडर के रूप में प्रोसेसिंग करता हूँ। अश्वगंधा की प्रति एकड़ बीज दर जो जाती है 8 किलो प्रति एकड़, 1 एकड़ में इसका उत्पादन है 6 से 8 क्विंटल तक जड़ निकल जाता है। औषधि फसलों में मुख्य रूप से अच्छा यदि प्रॉफिट मिलता है हमको तो अश्वगंधा के रूप में मिलता है, जिसमें 75,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक प्रति एकड़ का उत्पादन मुझे मिल जाता है। इसके साथ साथ अकरकरा और चिया की फसल, जो कि अकरकरा में भी 4 से 5 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है, इसका उत्पादन 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। इसका बाजार भाव जो है लगभग 15,000 रुपए क्विंटल से लेकर 20,000 रुपए क्विंटल तक जाता है, 4 किलो प्रति एकड़ लगता है, इसका उत्पादक जो है 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ जाता है। इसका बाजार भाव 15,000 रुपए क्विंटल से लेकर 24,000 रुपए क्विंटल तक रहता है। मैं पिछले 5 से 6 साल पहले से औषधि फसल की खेती कर रहा हूँ, मेरे मन में विचार पहले से ही था कि मैं और कुछ औषधि फसलों की खेती करूँ, तो इसके लिए मैंने RCFC रिसर्च सेंटर जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में फिर गया, वहाँ RCFC रिसर्च सेंटर जबलपुर, तो उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिए अपने से, अश्वगंधा हुआ, सर्पगंधा हुआ, सतावर हुआ, सफेद मूसली। जैसे अश्वगंधा की फसल देखें तो हम लगभग 140 से 160 दिन की फसल है, 140 दिन के बाद में हम इसकी जो जड़ें हैं वो उखाड़ के और साफ करवा के और बराबर सुखा के उसका पाउडर फार्म में बढ़िया ले सकते। ऐसे ही जैसे अकर करा हुआ, अकर करा की भी जड़ निकलती है, तो अकर करा का ये 100

0: 40 से 150 दिन के बाद में हम उसको उखाड़ के छांव में सुखा के और पाउडर फार्म की जो जड़ें रहती हैं उस कंडीशन में निकाल के सुखा लेते हैं। चिया 150 से लेके 180 दिन की फसल है, ये 180 दिन में पक के तैयार हो जाता है। मेरे पास में टोटल एरिया 3.5 से 4 एकड़ है, तो लगभग मैं सबसे अधिक सुगंधा उसमें लगाता हूँ 2 से 2.5 एकड़ में, बाकी आधा आधा एकड़ में 2-3 फसलें और लगाता हूँ। कुछ बहुवर्षीय फसलें भी हैं इसमें, जैसे सतावर हुआ, सफेद मूसली हुई, सर्पगंधा हुआ, तो इनको बहुत कम एरिया में हम लगाते हैं। 18 से 24 माह की फसल है तो उसको लगभग 25 डिसमिल से आधा एकड़ में लगाते हैं। इससे हमको ये रहता है कि जैसे हम कम दिनों की फसल भी हमको प्राप्त हो जाती है, और अश्वगंधा में यदि हमको लॉस हो रहा है तो ये जो फसलें हैं इनसे हमको उसकी पूर्ति हो जाती
1: है। मेरा नाम सचिवाला है, मैं ग्राम पंचायत धिनेनी से हूँ, मेरा जिला सीतापुर, ब्लॉक बिसवा। मैं औषधीय खेती करती हूँ, मैं 2 साल कर रही हूँ। पहले मैंने अपराजिता का फूल लगाया था, अन्नदाता प्रोजेक्ट से वहाँ से बिल लिया था। इस समय मेरा अपराजिता लगा है, उधर मई जून में लगाया था ब्लूकार्न, मैंने 2 बीघे लगाया था, लगभग 1-1 लाख का हुआ था वो। तो लहसुन और आलू और गन्ना मेरे पति बोते थे, उसमें हमारा परिवार का खर्चा भी नहीं चल पाता था, उसमें जो है आमदनी भी नहीं होती थी। मैं ये प्रोजेक्ट चालू किया और इसमें हमको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, और ये औषधि खेती इसमें बिक्री भी अच्छी हो जाती है, हमको पैसे भी अपने मनमाने मिल जाते हैं इसमें। लोगों ने मार्च में इसका बीज बोया था पहले, फिर इसमें लगभग तीसरे दिन पानी लगाते रहते हैं और इसकी घास फूस सब साफ करते रहते हैं, फिर 1 महीने में इसका पेड़ तैयार हो जाता है। 1 महीने के बाद हम लोग इसकी रोपाई कर देते हैं खेत में, रोपाई करने के बाद फिर उसको सफाई करते रहते हैं, घास वास उसमें हटाते रहते हैं और नाले भी बनवा देते हैं। फिर उसमें जैसे फूल का पेड़ लगभग 1 बीते का होता है, बस वो अपने आप उसमें 1-2 फूल 4 फूल 5 फूल आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसमें फूल लगने लगते हैं। ज्यादा मेहनत भी नहीं है, ज्यादा कोई दवा पानी भी नहीं इसमें, अगर हम डालते हैं तो वही गौमूत्र का 10 परणी अर्क बना के डाल देते हैं। अपराजिता की फसल बहुत लंबी है, ये जुलाई है, जुलाई से हमारे चालू हो गए हैं और जुलाई से लेके हमारे अरे सितंबर अक्टूबर नवंबर तक अच्छे फूल लगते हैं। फिर उसके बाद जब दिसंबर आता है थोड़ा डाउन हो जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक ये डाउन रहते हैं। अगर हम अपने पुराने पेड़ रखते हैं तो हमारे उधर जैसे ही मार्च लगता है वैसे फूल इसमें लगने लगते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो समय लगता है इसमें नए पेड़ बनाने में। इसको अगर पुराने पेड़ हम रखें तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें होगा। हमको पहले नहीं पता था, हमने लगभग 10-15 पेड़ पुराने रखे थे, उसमें जैसे मार्च चालू हुआ बस उसमें फूल लगने लगे और हमने अपना 15 किलो फूल उसी पेड़ से अब तक इकट्ठे कर दिए। मैंने 1.5 बीघे का अपराजिता लगाया है इस बार, और पिछले साल मैंने लगभग 10 विसुआ लगाया था, उसमें हमारा 40,000 का अपराजिता हुआ था, लगभग 80 किलो हमने निकाला था उसमें से फूल। हम लोगों को कोई कीड़ा उड़ा लगने लगा तो हम वही गौमूत्र में 10 परणी 10 पत्तियों का बना के, जैसे गांजा है, धतूरा है, नीम की पत्ती है, कनेल की पत्ती है, इस तरह की 10 पत्ती उसमें डाल देते हैं, गौमूत्र में डाल के उसको 10 दिन रख के फिर उसको 1 लीटर उसका और पूरी टंकी पानी में छिड़कवा देते हैं। ब्लूकार्न का बीज फरवरी में बोया जाता है, उसका पेड़ लगभग 1 महीने बाद तैयार हो जाता है, उसको हम मार्च में रोपाई कर देते हैं, उसकी 1 महीने के बाद उसका पेड़ लगाने योग्य हो जाता है। उसके बाद हम 1 महीने के बाद अप्रैल में रोपाई कर देते हैं, जैसे 1 हाथ का पेड़ होता है बस वो उसमें फूल आने लगते हैं। ये ज्यादा नहीं 2 महीने चलता है सिर्फ, हमारा खर्चा भी निकल आता है, लेबर हमारे 250 रुपए पे रहते हैं, हमारा ये 450 का इस बार बिका था केजी का। ब्लूकार्न जो है इसका पेड़ बहुत लंबा होता है, इसको खड़े खड़े हम लोग तोड़ते हैं और इसमें जगह नाला बना के रखते हैं, फिर भी इसमें जगह नहीं रह जाती है, इसमें दूसरी पहले तो लगता है दूसरी फसल हो जाएगी लेकिन जब पेड़ तैयार हो जाता है तो नहीं होती है कोई फसल। और ये जो अपराजिता का पेड़ है इसमें भी दूसरी फसल नहीं होती क्योंकि इसका पेड़ फैलता बहुत है, इनको दिक्कत नहीं है। मैम हमारे हिसाब से तो सब लोग इसकी खेती करें, बहुत अच्छा है, ये खेती है आयुर्वेदिक दवा में जाता है।
2: कृषि समाचार दर्शन का यह अंग अब संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: तो किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार दर्शन के तहत ये कार्यक्रम सुना जिसमें आपने जाना कि आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है और उससे जुड़ी जो औषधीय जो फसल हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।

0: कई चिकित्सा में हमारे काम आती हैं। तो ये जानकारी संध्या गुप्ता की। और आइए अब आपको जानकारी दिलवाते हैं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की। आइए सुनवाते हैं आपको ये जानकारी।
1: आईसीआर कई तरह की रिसर्च करता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आईसीआर के वैज्ञानिक बनाते हैं, मैकेनाइजेशन की दिशा में कई तरह के प्रयोग होते हैं। तो एक तो वो प्रयोग ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, टेक्नोलॉजी का कमर्शलाइजेशन हो, इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत महत्व है। तो एक तो जल्दी कैसे लोगों तक पहुंचे टेक्नोलॉजी का लाभ, और दूसरे कृषि क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, और आज भी हमारी लगभग आधी आबादी को रोजगार मिलता है, हमारे किसान हो, खेती पे काम करने वाले बाकी साथी हो। और इसलिए आज हमने आग्रह किया कि जो CSR का हिस्सा है, कॉरपोरेट सेक्टर को एक कानून बना के देने की व्यवस्था की है, तो उसका एक हिस्सा खेती को भी मिले। खेती को काफी कम मिलता है, एग्रीकल्चर से संबंधित गतिविधियों के लिए, जैसे क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई किया जा सकता हो, कोई प्रयोग कर रहे हो उसमें सहयोग, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने में सहयोग, AI मशीन लर्निंग जो आधुनिक खोज और टेक्नोलॉजी जिसका लाभ कृषि को मिल सकता है उसमें आए, कैसे पोषण युक्त आहार मिले उसके क्षेत्र में भी उनका पैसा लग सकता है, नए स्टार्टअप्स के लिए, AI के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो कृषि से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उस पर CSR का वो पैसा लगाएं, ये आग्रह किया है। और कई लोगों ने यह कमिटमेंट किया है कि वो CSR में खेती को प्रधानता दें। जो समझौते हुए हैं UK के साथ हुआ है, या इसके पहले यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, ये हमारे देश के लिए, देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग, हमारे व्यापार जगत, उनको एक नई ताकत मिलेगी। इन समझौते के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं।
0: तो अभी आपने जानकारी सुनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। और इसके तहत माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी साझा की जो कि कृषि से जुड़ी थी, और इसमें स्टार्टअप्स की बात कही, AI की बात कही, जिससे कि जो समझौतों की बात की उससे जो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो और प्रगति करेगा, उसका और प्रसार होगा।
2: बिल्कुल प्रीति बहन, देखिए, और हम अपने भाइयों को बता दें कि बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमें अपने पशुओं की विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बरसात के मौसम में जो नमी, कीचड़ और संक्रमण के कारण पशुओं में जो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है उसमें विशेष रूप से उनका ध्यान देना है। और इसके साथ मुख्य सावधानी भी बरतनी है, हम वो भी अपने भाइयों के साथ साझा कर देते हैं। पशुओं को साफ सुथरे, सूखे और हवादार बाड़े में रखें, बाड़े में जो जलभराव और कीचड़ में ना हो, और उसका जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको भी साफ सफाई के तहत निकालते रहें समय समय पे। पीने के लिए स्वच्छ और ताजा पानी उपलब्ध कराएं, संतुलित आहार दें, तथा इसके अलावा जो गीला और फफूंदी लगा चारा उनको ना खिलाएं। पशुओं को बारिश में अधिक देर तक भीगने ना दें, और भीगने से उन्हें अच्छी तरह से, जो भीग जाते हैं उनको अच्छी तरह से साफ सफाई रखें।
0: जी बिल्कुल, और कहने का तात्पर्य यही है कि जो पशुधन है वो हमारी कृषि की रीढ़ है, तो उसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है कि उनका समय समय पर चेकअप कराएं, ताकि उनको अगर किसी तरह की दिक्कत है, क्योंकि बरसात का समय है, कीटाणु आसपास होते हैं, मिट्टी जो होती है वो गीली होती है, तो खुरपका उनको होने की संभावना रहती है। तो ये जो छोटे मोटे रोग हैं कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तो उसका ध्यान देना भी एक जो कृषि कृषक है उसका ही रहता है। तो हाँ, उसको ध्यान दे, और इस तरह की कोई समस्या हो तो उसका समय रहते उपचार करें।
2: बिल्कुल,
0: तो इसी के साथ अभी जो हमारा कार्यक्रम कृषि जगत है वो यही

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गजल एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुनते हैं कव्वाली मोहम्मद रफी की आवाज में।

की सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा।

0: आप सुन रहे थे गजल एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली कैबिनेट ने समयबद्ध सरकारी सेवाओं के अधिकार संबंधी ऐतिहासिक विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी को बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समझौता किया। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं की लगभग 1,30,000 छात्राओं को इस महीने से मुफ्त साइकिल मिलेगी और दिल्ली यातायात पुलिस ने भारत मंडपम में भारत टेक्स आयोजन के लिए यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली कैबिनेट ने नागरिकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए दिल्ली विधेयक 2026 नागरिकों का समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विधेयक में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट दंडात्मक व्यवस्था की गई है। साथ ही बिना उचित कारण के सेवा प्रदान करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रूपये का दंड, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रूपये तक लगाया जा सकेगा। हालांकि किसी भी अधिकारी पर दंड लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर मिलेगा, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी कर यह निर्धारित करेगी कि कौन कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में होंगी। साथ ही आवेदक से लेकर सेवा प्राप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि कोई नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो नागरिक को अलग से अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मामला स्वतः नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील के रूप में पहुंच जाएगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण नियुक्त किए जाएंगे और एक स्वतंत्र वैधानिक दिल्ली राइट टू सर्विस आयोग का गठन भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी विभागों और अधिकारियों को सेवा प्रदान करने में होने वाली देरी और लापरवाही के लिए अधिक जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह कानून राजधानी में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सरल, भावी तथा तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर बनेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वर्ष 2011 के दिल्ली नागरिकों का समयबद्ध सेवा प्रदान का अधिकार अधिनियम का स्थान लेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है।
3: इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। यमुना के किनारे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन भी किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मीनेश सी शाह ने समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली को 2,800 नई वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इन बसों को PME ड्राइव योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई बसें अंतिम गंतव्य तक संपर्क सुविधा बेहतर करेंगी और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली

0: में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नवाचार, संवर्धन, कटाई के बाद की तकनीक, सस्टेनेबल पैकेजिंग, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए लंबे समय की साझेदारी बनाना है। साथ ही देश के औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों के सतत प्रयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना भी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक सार्वजनिक यातायात सुनिश्चित करने के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करने का फैसला किया है। ये पहल कामकाजी महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं के दैनिक यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे उन्हें शहर के सबसे व्यस्त रास्तों पर सुबह और शाम के व्यस्ततम समय के दौरान बिना किसी रुकावट के आरामदायक सफर की सुविधा मिल सके।
2: इस प्रस्तावित नेटवर्क के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 समर्पित इलेक्ट्रिक बस सर्विस शामिल हैं। इनमें राजधानी के 15 प्रमुख व्यस्त रूट पर महिलाओं के लिए 30 विशेष बस सेवाएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस समेत दूसरे बड़े शिक्षण संस्थानों और प्रमुख रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली 13 समर्पित रूटों पर 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सेवाएं शामिल हैं। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना और रेगुलर बस सेवाओं में भीड़ भाड़ को कम करना है। उन्होंने बताया कि इन रूटों की पहचान उन कॉरिडोर के आधार पर किया गया है जहां महिला यात्रियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, जिससे उनकी दैनिक यात्रा और रोजाना आने जाने की जरूरतों को सही और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि हर बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से सीधे जुड़े हुए पैनिक बटन, दिव्यांग जनों के लिए लो फ्लोर रैम और जरूरत पड़ने पर बस मार्शल और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्राची प्रिया।
0: दिल्ली सरकार इस महीने से कक्षा 9 की लगभग 1,30,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित करना शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पहल छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि साइकिल से स्कूल तक का सफर आसान होगा, नियमित उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा और ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी लड़की की शिक्षा दूरी के कारण बाधित न हो। दिल्ली सरकार हर बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जुलाई महीने को पॉक्सो जागरूकता महीने के रूप में मना रही है। इसके अंतर्गत 25 जुलाई को पहली बार बच्चों की सुरक्षा पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह जानकारी दी। श्री सूद ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सीधा संवाद होगा। साथ ही पॉक्सो, साइबर सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता और संवाद के माध्यम से सरकार बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 वर्ष पूर्व शुरू किए गए साइंस ऑफ हैप्पीनेस कोर्स को अभी तक 2,000 से अधिक विद्यार्थी अपना चुके हैं। इस मूल्य संवर्धन कोर्स को डीयू के 17 कॉलेजों और एक विभाग द्वारा अपनाया गया है। इस अवसर पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में इन सभी संस्थानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रधानाध्यापकों और संबंधित अधिकारियों ने कोर्स को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कुलपति ने पाठ्यक्रम की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रसन्न रहना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह तभी संभव है जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विकास टांक आज भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल की उपस्थिति में श्री टांक ने भाजपा की सदस्यता ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने युवाओं को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि युवाओं का कौशल विकास ही आत्मनिर्भर भारत और विकसित दिल्ली की नींव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को अच्छी गुणवत्ता का कौशल प्रदान करने और उनके लिए नए अवसर पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को यूथ फॉर गवर्नेंस प्रोग्राम, विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, आईटीआई को अपग्रेड करने, एआई और रोबोटिक्स आधारित लर्निंग और सीएम श्री स्कूलों में आईसीटी लैब्स जैसी पहलों के जरिए सशक्त बना रही है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे भारत टेक्स के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक मथुरा रोड, भैरव मार्ग और आसपास के इलाकों में किसी भी गाड़ी को रोकने या पार करने की इजाजत नहीं होगी। इन सड़कों पर गलत तरीके से पार्किंग करने और निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ISBT, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें और जहां भी संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यातायात पुलिस ने नागरिकों से रिंग रोड का उपयोग करने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली के हौज खास में कल आयोजित होने वाले 48वीं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बलबीर सक्सेना मार्ग, चौधरी दिलीप सिंह मार्ग, चौधरी हुकुमचंद मार्ग और गौतम नगर रोड पर यातायात बाधित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से मुख्य सड़कों और जुलूस के रास्ते के पास गाड़ियां पार्क करने से बचने की सलाह दी है। सरकार ने उस सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान कल 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी को देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आज चंडीगढ़ में हरियाणा ई वाहन नीति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम और फरीदाबाद की जरूरतों को देखते हुए हरियाणा ई वाहन नीति 2022 में दिल्ली की तर्ज पर आवश्यक संशोधन किए जाने पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली कैबिनेट ने समयबद्ध सरकारी सेवाओं के अधिकार संबंधी विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी को बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समझौता किया। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा नौवीं की लगभग 1,30,000 छात्राओं को इस महीने में मुफ्त साइकिल मिलेगी और दिल्ली यातायात पुलिस ने भारत मंडपम में भारत टैक्स आयोजन के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। आरंभ में आइए सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं मोहित चौहान।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका हम आपको पुनः सुनवाएंगे रात्रि 8:30 पर।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन।
2: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवन स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पुरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और भक्त के मिलन का उत्सव। सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ध्वज तथा कपिध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है तालध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है, जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। सुभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हो। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
3: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतित मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को

0: खत्म करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रुभाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
1: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं, तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं, तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पोहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहां राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
1: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्रा।
3: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको सपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य जी भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर अनुजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था, क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्धा विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी तो आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्या आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में, सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वरण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
1: पूरी की रथ यात्रा प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोनावेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथ यात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
4: जिस शिला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतरकर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं। उसको गुटी पांडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहनने में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्योचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
1: रथयात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथयात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
5: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलकर एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलकर एज अ टीम काम कर रहे हैं।
1: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथयात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
6: स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन एंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिचुअल्स, द नीति एज वी कॉल एफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर सर्विसेज, डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो मेनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू फैसिलिटेट ए वेरी सेफ ऑर्डरली एंड स्पिरिचुअली फुलफिलिंग रथ यात्रा फॉर द डिवोटीज कमिंग फ्रॉम फार अक्रॉस द वर्ल्ड। द श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्रेसेस इट्स ग्रेटिट्यूड to all the sebats of the Sri Mandira, the officials, the volunteers and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There will be few traffic restrictions in the city and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Vadodanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
1: पुरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
7: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र

0: जोहरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300

110 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कार्यक्रम गीत मालिका में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए सुनते हैं बर्फी फिल्म का ये गीत रेखा भारद्वाज की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं सैयद कादरी ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

और कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से। गायिका हैं तुलसी कुमार, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार जीत गांव।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कम्प्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
3: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन

0: व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
2: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है।
1: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
3: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
1: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की यह जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
4: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21

0: जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रूपये के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.

इस मजलिस में 9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आज के फनकार हैं चंदन दास। 9:45 पर खबरें नशोंगी और 9:55 पर सिलसिले मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं चंदन दास।

पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में 3 भारतीय खातून मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के अटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान 40 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिससे शहरी मोबिलिटी में बेहतरी आएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमाया लागत 14,400 करोड़ रूपये से ज्यादा होगी और यह कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान बिला रूकावट कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जिससे शहर के सड़क नेटवर्क पर नुमाया तौर पर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी। इम्कान है कि यह प्रोजेक्ट जिस हिस्से का अहाता करेगा उसमें सफर का औसत वक्त 60 मिनट से कम होकर 20 मिनट हो जाएगा। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वरुणा दरिया किनारे तकरीबन 43 किलोमीटर तवील 6 से 4 लेन वाले सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर की तामीर की मंजूरी दी है, जिस पर कुल सरमाया लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रूपये होगी। इससे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाई अड्डे, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रसाई में नुमाया बेहतरी आएगी। मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम की तश्कील के लिए 1,27,500 करोड़ रूपये के बजट अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि सेमीकॉन 1.0 प्रोग्राम में तवज्जो सनत के आगाज और उसे कायम करने पर थी और सेमीकॉन 2.0 के तहत सभी अहम जरूरी चिप्स भारत में ही डिजाइन की जाएंगी और इस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अख्तितम तक मुल्क चिप डिजाइन करने के मामले में खुद कफील बन जाएगा। जनाब वैष्णो ने मजीद कहा कि भारत ने अमरीका, जापान, यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी के साथ पहले ही शराकत दारियां कायम की हैं। उन्होंने मुतला किया कि सेमीकॉन 2.0 के तहत 4,00,000 करोड़ रूपये की सरमाकारी का इम्कान है। मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रूपये के बजट अखराजात के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि आइंदा 5 बरस के लिए यह स्कीम नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से इसकी मुद्दत के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 39,00,000 करोड़ रूपये के मोबाइल फोन तैयार किए जाने का इम्कान है, जबकि मजमूनी बरामदात के 7.5 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 15,00,000 करोड़ रूपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है। मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की खातिर कौमी सरमायाकारी पॉलिसी की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद मुल्क में गैस पर मबनी यूरिया तैयार करने वाले यूनिटों के क्याम के लिए यूरिया के शोबों में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है, ताकि खुद किफालत के हदफ को हासिल किया जा सके। भारत और बरतानिया के दरमियान जामी इक्तिसादी व तजारती मुआहदा सीईटीए नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी तहफ़ुज़ से मुतालिक मुआहदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, भी नाफिज़ुल्अमल हो गया है। इससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशावर अफराद की आमदोरफ्त और मसावकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इस तारीखी समझौते के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को सिफर महसूल के साथ रसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, डब्बाबंद खुराक, दवासाजी और एमएसएमई जैसे शोबे शामिल हैं। इस समझौते पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये समझौता भारत और बरतानिया के दरमियान इकतसादी सफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। मुआहदे के नफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गई। तजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुआहदा वजीर आजम मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि यह एक नहायत अहम और बड़े तजारती मुआहदों में से एक है, जो दोनों मुल्कों को तजारत और सरमाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन ने कहा कि मुआहदा दोनों मुल्कों के लिए नहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक काउंसिल AEPC के चेयरमैन डॉ ए सक्तिवेन ने कहा

0: कि इस मुआहिदे के नतीजे में डेढ़ साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जामे इक्तसादी और तजारती मुआहिदा सीईटीए और समाजी तहफ़ से मुतालिक मुआहिदा भारत और बरतानिया के देरीना ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे इक्तसादी व तजारती मुआहिदा से भारत के किसानों कारोबारी अफराद और एमएसएमईज को काफी फायदा होगा जबकि मुख्तलिफ शोबों को बरतानिया के बाजार तक बेहतर रसाई हासिल होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका की फौजी सेंट्रल कमांड ने कहा कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम रास्ता है। ईरानी अहलकारों ने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरिक्स को निशाना बनाया गया जिसमें कम अज कम 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जनूबी बंदरगाही शहर बुशहर को भी निशाना बनाया गया जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तनसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इस दौरान ईरान के सिपाही पासदानान इंकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उसने बहरैन और उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं जिसमें कमांड सेंटर तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया। वजीर आजम ने मोदी जुमे के रोज हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रूपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी इमदाद सीएसआर पर जोर दिया ताकि स्टार्टअप्स महारत की तरक्की और एग्री टेक के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी कॉन्क्लेव 2026 के लिए आईसीएआर टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर पर जोर दिया कि वह ट्रस्टीशिप के भारतीय अखलाक को अपनाएं और अपनी कमाई का एक हिस्सा किसानों जरिए तहकीक और देही बिरादरियों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें। भारत और पोलैंड ने आज नई दिल्ली में छोटी बहुत छोटी और दरमियानी सनअतों के शोबों में तआवुन को मजबूत करने पर दो तरफा बातचीत की। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं वहीं दिगर 10 ने चांदी के तमगे जीते। फीफा वर्ल्ड कप में के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमरीका के अटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निजाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रूपये से ज्यादा के खराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। हुकूमत ने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मशवरे सेहत के। इस सिलसिले के तहत कुछ बातें हो जाए आपकी सेहत के हवाले से, तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कलौंजी के तेल के क्या क्या तिब्बी फवाइद आपको हासिल हो सकते हैं। कलौंजी, जी हाँ, छोटे छोटे काले बीज यानी ब्लैक सीड भी कहा जाता है इनको, इसी से इसका तेल निकाला जाता है। इसमें बायोटिक्स कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो जिस्म के खलियात को नुकसान पहुंचाने वाले

0: उसका मकसद वाजह है कि अंग्रेज अपने अफसरों को उर्दू यहाँ की हिंदुस्तानी भाषाएं पढ़ाना चाहते थे, और जिसमें बंगला न कि सिर्फ उर्दू, बंगला भी और दूसरी जबानें भी, तो वो चाहते थे कि रीजनल लिटरेचर मालूम हो जाए मुझे क्या है नहीं है वगैरह वगैरह। इस नीयत से तो ये कॉलेज शुरू हुआ, लेकिन लल्लू लाल जी को जो काम सौंपा गया हिंदी को, हिंदी में, हिंदी लिपि में, यानी देवनागरी का काम जो सौंपा गया, तो लल्लू लाल जी को मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूं। दस्तावेज तो ये बताता है कि उनको ये मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं, यानी
1: उर्दू के बहुत अच्छे स्कॉलर थे,
0: बहुत अच्छे स्कॉलर थे, उनको मालूम था। थोड़ा मामला तो वहां पोलिटिसाइज जरूर हो गया है, पोलिटिसाइज तो वहीं पर हो गया है मामला। इसको दो तरह से देखना चाहिए, एक तो ये है कि ये सब जब मसले खड़े हुए देवनागरी और उर्दू, तो उर्दू और हिंदी में एक ही फर्क रह गया था जब शुरू हुआ, तो वो फर्क था सिर्फ लिपि का, रस्म खत का। जब शुरू हुआ ये झगड़ा तो फर्क दोनों जबानों में, दोनों को अलग अलग अलहदा किस्म की जबान बनाने में सिर्फ रस्मुल खत का योगदान था, सिर्फ रस्मुल खत की अहमियत बढ़ जाती थी वहां पे, और रस्मुल खत की बुनियाद पर हिंदी और उर्दू दो जबानें करार पा गई थीं उस वक्त, पॉलिटिकली और फोर्सिबली। दूसरी बात जो आपने बहुत रेनेसा की बात की, क्रांति की बात की, क्रांति पीरियड को बिल्कुल मिस इंटरप्रेट करने के लिए अंग्रेजों ने इस तरह का शोषण जरूर छोड़ दिया था, और हम लोग उसमें आ भी गए। भारतेंदु जी खड़ी के प्रद्योतक थे, खड़ी के प्रचारक थे, खत्री जी भी खड़ी के प्रचारक थे, सभी लोग खड़ी को पसंद कर रहे थे, और जितने लोग खड़ी को पसंद कर रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सवाय लिपि के वो उर्दू को सपोर्ट कर रहे थे, और उस हिंदुस्तानी भाषा को जो हमारे और आपके दिलों को ठीक तरीके से अपने कब्जे में ले रखी थी वो जुबान, तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों को। तो वो जो मसला खड़ा हो गया था वो सिर्फ यही नहीं था कि मतलब हिंदी और उर्दू का मसला था, बल्कि ये मसला अस्तित्व का भी था, एक तरह से तहजीबी शनाख्त का भी मसला बन गया था, और उसको खामखा के बना भी दिया गया था। हालांकि हमारी तहजीबी शनाख्त जो है इसी से नहीं थी, बल्कि हमारी जो मुश्तरका भाषा थी जो उर्दू और हिंदी के नाम पर चल रही थी वो दरअसल एक ही भाषा थी, और एक भाषा आज भी है
1: एक ही भाषा। बताइए डॉक्टर नंद किशोर
2: जी सर,
1: आपने तो तकरीबन सारी बहसें सुन ली और बड़ी अहम बातें भी सुन ली, अब आप तो आपके बारे में सुना है कि आप बड़े अच्छे स्कॉलर हैं और हिंदी और उर्दू के मसाइल पर आपकी नजर बहुत अच्छी है, अब आप बताइए कि क्या मसला क्या है ये।
2: दरअसल थोड़ी सी हम पीछे जाएं और
1: कहां तक,
2: मतलब दिल्ली और लखनऊ, जब उर्दू जो है एक दिल्ली और लखनऊ सेंट्रिक हो जाती है, जिस तरह से हिंदी बनारस और इलाहाबाद सेंट्रिक हो जाती है, वहां पे हम देखते हैं कि एक तरफ पोशाक और उर्दू, यानी दरबारी व्यवस्था में उर्दू जो है वो जनता से कट जाती है, वहां जनता गायब है, दरबार है, तो वहां पे जो रचनाएं आ रही हैं, मीर में जो लिखा है उसमें कुछ जनता के है, लेकिन उसमें उस तरह से जनता इन्वॉल्व नहीं है, उस तरह से जनता नहीं आ रही है जिस रूप में आना चाहिए, क्योंकि भाषा के स्तर पे उर्दू फारसी का बहुत बड़ा हिस्सा ले लेती है, और वहां पे वो एक अभिजात वर्ग के लिए वो अपनी कविता प्रस्तुत करती है। वहां पे एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे नजीर को देखने की जरूरत है, नजीर अकबराबादी को। नजीर अकबराबादी गालिब और मिर्जा की अपेक्षा उन लोगों के लिए लिखते हैं जो श्रमिक है, ककड़ी बेचने वाला है, ककड़ी बेचने वाले के लिए वो कविता लिखते हैं, वो जो सेक्स वर्कर है उसके लिए कविता लिखते हैं, वो जो बेढ़निया है उनके लिए कविता लिखते हैं, वे मौत पे कविता लिखते हैं, पक्षियों पे कविता लिखते हैं, बचपन पे, बुढ़ापा पे, औरत पे, मर्द पे, और इन सबको लेकर के रोटी की बात करते हैं, आदमी की बात करते हैं। सुहराबोस कविता है पढ़ते हुए, दो स्टेंजा पढ़ने के बाद से तीसरे स्टेंजा पढ़ने का मतलब अंदर से आदमी जो है एकदम तिलमिला जाता है। वही बात,
0: सही बात कर रहे
2: हैं, वही बात हम आगे चल करके 47 के विभाजन के बाद देखते हैं, यानी 1947 के बाद सदाब हसन मंटो और असमत चुगताई जो रच रहे थे
1: जी,
2: वह आदर्श हमारे सामने फिट तो बैठ रहा था, लेकिन चूंकि आदर्श से जब हम यथार्थ की तरफ जाते हैं, यथार्थ की तरफ हम मुड़ते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि पारंपरिक दिमाग नहीं टूटता है, और पारंपरिक दिमाग जब नहीं टूटता है तो उसमें तमाम गैप पैदा होते हैं। उसी गैप का एक नतीजा है कि अंग्रेज समझ जाते हैं कि अच्छा इनको जो है लिपि के अंदर मारा जा सकता है।
0: अच्छा,
2: इसलिए जो

0: बाजार की भाषा थी, जो बाजार जो उर्दू बाजार बना था उसमें 80% हिंदू थे और बाकी लोग मतलब मुस्लिम थे, लेकिन उनकी जो भाषा थी, आपस में जो दुख तकलीफ था वो दोनों मिल करके काम कर रही थी, जो उर्दू और हिंदी जिसको हम खड़ी
1: की तरह से संप्रेषित करते थे जी,
0: वो दोनों व्यक्त करते थे। अभी की स्थिति में जो हम बात करें वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि किस तरह से महानगरीय व्यवस्था के भीतर एक गैप पैदा हो गया है, ये भाषाई गैप है। हम पड़ोस में रहते पड़ोस के व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि वो क्या खाता है, क्या बोलता है, क्या पहनता है, क्या उसके शौक हैं, क्या उसका नाम है, कहाँ काम करता है, कितना उसके मतलब कितने बच्चे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं
1: नहीं जानते हैं।
0: नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ एक और भी चीजें जो हमें बहुत तकलीफ देती है वो ये है कि हम संवादहीनता की स्थिति में नहीं है। ये संवादहीनता कहीं न कहीं सत्ता और धर्म ने पैदा किया जिसको समझने की हमें जरूरत है।
1: बिल्कुल सही।
2: देखिए बात यह है कि आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, बड़ी समझदारी की बातें हैं और बड़ी सही बातें हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जिससे मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा।
1: बिल्कुल।
2: आपने कहा कि दरबार में दरबारों ने उर्दू की तरक्की में हाथ दिया, नहीं किया। हमें दरबारों से शिकायत यही है कि अकबर शाह सानी और इन सबके दरबारों में कोई उर्दू वाला नहीं था।
0: बिल्कुल
2: सुन लीजिए, बल्कि शाह आलम ने जो शायरी की है, शाह आलम ने जो शायरी की है वो ठेठ हिंदी की शायरी है, पंजाबी की शायरी है, बहादुर शाह जफर ने पंजाबी में शेर कहे। मतलब ये कि उर्दू का ताल्लुक ये उर्दू के दुश्मनों ने उड़ाई है कि साहब ये तो जबान जो है बाजारी नहीं है, अवश्य है, ये जबान ही बाजार की है, आम लोगों की है, शहरों के भी है, देहातों की।
0: बिल्कुल आप सही कहा।
2: हमें ये बात नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि एक साहब को फालिज हो गया था। अच्छा, वो बराबर में थे, एक पर्चा लेकर आया कि साहब ये क्या मांस लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई मैं हिंदी जानता हूँ लेकिन इतनी नहीं जानता। वो गांव के थे, बुलंदशहर के किसी के, मालूम हुआ फालिज लिखा हुआ है। वो फालिज समझ रहे हैं, वो लोग नहीं समझ रहे। मतलब ये कि जबान जो बदल रही है जिस तरीके से लखनऊ के उस पर क्या कहते हैं सचिवालय
1: पर,
2: एक लक्षा वाले से किसी ने कहा कहीं दूर से कि मैं सचिवालय चलोगे, उसने कहा नहीं जी वहां नहीं, फिर दूसरे से कहा उसने, भी तीसरे से कहा उसने, तो उसने सेक्रेटरियट तो कहने का यार तुम हिंदी में बोलो ना,
1: हिंदी में बोला। अब उसी बात से तुम अंग्रेजी बोल रहे थे,
2: बदल रही है वो, इस तरह से बदल रही है। हाँ आपकी
3: सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। गांधी जी ने एक बार एक जगह पे जैसे मान लीजिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया है, ठीक है, मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू के बीच की उस भाषा को कहा जाने लगा जिसमें उर्दू में अरबी फारसी के ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं थे और हिंदी में संस्कृत के ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं थे जो आम जनता समझ सके।
1: बिल्कुल।
3: तो गांधी जी ने इसी संदर्भ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, जैसे बालकृष्ण भट्ट ने एक वो हास्य विनोद का पुट है उनकी भाषा में
2: जी।
3: वो एक जगह लिखते हैं जनता नहीं मेला है झमेला है, है ना, जनता नहीं मेला है झमेला है। तो इस तरह की वो बात करते हैं कि अच्छा लगता है कि उर्दू के शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग है उसमें। तो कहीं ना कहीं अब जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं, मान लीजिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रेमचंद ने मुझे जो लगता है कि उर्दू कहानी को जिंदगी का जो सबक सिखाया था वो कहीं इंकलाबी कदम से कम नहीं था।
2: बिल्कुल।
3: उस समय उर्दू कहानी एक नए दौर पर चल पड़ी और ये वही मुझे लगता है कि ये वही राह थी जो बाद में मंटो और इस्मत चुगदई और वेदी से जो था वो मिलती थी।
1: अभी नंदकिशोर जी ने जो बात कही थी और आपने अच्छा कहा कि असल में एक उर्दू के खिलाफ जो नारे दिए गए हैं उसमें से एक नारा यह है कि ये दरबारी भाषा है, दूसरा नारा यह है कि ये विदेशी
2: भाषा,
1: दूसरा नारा ये कि विदेशी है और ये फारसी आमेज और अरबी आमेज है और अपनी जड़ों से कटी हुई जबान है, और इस तरह के बहुत सारे एतराजात किए जाते रहे हैं उर्दू पे। लेकिन तारीख ये नहीं कहती है, तारीख ये बताती है कि हमेशा प्रो पीपुल लैंग्वेज रही है। वजह उसकी ये कि इसकी पैदाइश के पीछे ही बाजार में और समाज में मेलों में और फौजों में जो मुख्तलिफ जगहों के लोग इकट्ठे हो गए थे वो टूटी फूटी भाषा में टूटी फूटी जबान में किस तरह से अपने माफूल जमीर का इजहार कर सकते हैं, इसकी जरूरत ने उर्दू को पैदा किया।
3: बिल्कुल।
1: तो इसकी बुनियादी जरूरत ही कम्युनिकेशन की जरूरत थी, जो लैंग्वेज की का सबसे

0: बड़ा आधारशिला जो है वो कम्युनिकेशन स्किल का है, यानी लैंग्वेज यानी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की सतह पर यह जबान रही। रहा सवाल ये कि उर्दू में पर्शियनाइज्ड उर्दू या मुफर्रस और मुअर्रब जबान जिसको कहते हैं,
1: मुश्किल
0: अदब मुश्किल जबान है ना, तो मुश्किल जबान जिसको कहते हैं वो लिटरेरी स्टाइल है। इट इज नॉट ए लैंग्वेज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, है ना। जब हम अदब की बात करेंगे तो अदब में मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स होते हैं और अजरूए तकाजाए हाल होते हैं
1: जी। मतलब ये जमाने के मुताबिक
0: जमाने के मुताबिक होते हैं।
1: मैं अर्ज करता कि शुरू होता है एक बात
0: जी,
1: दुनिया में कोई सी दो जबानें ऐसी नहीं है जो इतने करीब हो।
2: मैं अपनी बात नहीं कहती, गोपीचंद नारंग ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था
0: जी,
2: कि उन्होंने बोला था कि जो उर्दू और हिंदी में बहुत निकटता का संबंध है
0: जी,
2: और फर्क तब लगता है जब हम लिखते हैं।
1: हाँ, वो तो है
0: जी, जी।
2: अदरवाइज बोलना हो तो बोलने में पता ही चलता है हिंदी बोल रहे हैं उर्दू बोल रहे हैं,
1: स्पीच की लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं
0: है।
3: मैं जो कहना चाह रहा था पहले तो एक की
0: जी, आप बताए।
3: मैं ठीक उसी की बात कर रहा था जो आप, जाहिर सी बात है जिन श्रमिकों की चर्चा मैं कर रहा था वह श्रमिक जो है वो किसी भी तरह का हो। मैं एक चीज जो कहना चाह रहा हूँ इसमें, खास करके भाषा के संदर्भ में, हिंदी उर्दू के संदर्भ में, वो यह कि जो हाशिए पे रहे लोग हैं और जिन्होंने कविता लिखी है, जिन्होंने कहानियां लिखी हैं, वे आज कहीं ना कहीं एक खोज की जरूरत की मांग कर रहे हैं। उनपे कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक नूरे मियाँ ने जो है वो जो गरीब तबका था उसके लिए बाग लगवा दिए, क्योंकि सार्वजनिक चीजों जब सार्वजनिक जगहों पर मतलब सार्वजनिक चीजें बहुत नहीं थी, मैं कुछ कह नहीं पा रहा। मतलब जैसे एक कुआं है तो कुआं सार्वजनिक नहीं था, बाग सार्वजनिक नहीं था। तो उस समय जिस समय वो चीनी मिल एक तरफ स्थापित करते हैं और दूसरी तरफ श्रमिकों के लिए और उस तरह के आम जनता के लिए वो बाग बनवाते हैं, कुआं खोदवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, लेकिन आज तक उन पर काम नहीं हुआ। एक जो आदमी जो कसाई का काम करता था जामिल, जो मीरगंज हमारे यहाँ का है, वो व्यक्ति बहुत बेहतरीन कविताएं लिखता था, वो बहुत अपने क्षेत्र में लोकप्रिय था। तो वो जो एक तरह से जो उर्दू में भी जो हाशिए के लोग हैं उन पे भी काम होना चाहिए और ये संबंधों को जाहिर सी बात
1: है करवा देंगे। लेकिन एक बात सुनिए कि उर्दू और हिंदी जो है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा से बहुत करीब रही,
2: बिल्कुल,
1: और आम आदमियों में और बीच के दर्जे के लोगों में कभी इसका इख्तलाफ नहीं रहा। सिर्फ पॉलिटिशियंस का वो चक्कर है जो वो हिंदी अलग करते हैं उर्दू अलग, पर नहीं है। जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि लिसानी सतह पर यानी लिंग्विस्टिक सतह पर तो दबाने दोनों अलग अलग हो जाती हैं, जैसे इन्होंने भी कहा और आपने किसी को कोट भी किया कि वो इस तरह से अलग होती है कि जब हम बोलते हैं तो आप कहीं चले जाइए पूरे हिन्दुस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं, आप पूरे उस समय घुमाओ दुनिया में, वहां जो जबान वो बोलते हैं हिंदुस्तानी वो सारी की सारी वही है जो आप वो बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदी है, मैं कहूंगा नहीं है उर्दू बोल रहे
0: हैं,
1: ये तो स्पीच का है। लेकिन जब हम लिखते हैं, अब आप जब रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जब आप क्रिटिकल क्रिटिसिज्म कर, तो जबान इसलिए टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है। आप कोई साइंटिफिक अंदाज पर लग रहा है तो उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने आपसे कहा कि हम उस हिंदुस्तानी की तरफ आ रहा है जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था।
2: बिल्कुल सर, देखिए अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि उस ओर आ रहे हैं, अगर हम अपनी बात करें तो एक उर्दू अकादमी दिल्ली ने किताब छापी थी 2006 में, खदंगे नाज, शेर सिंह नाज देहलवी का कलाम है ये। तो जो अपने एएच खान साहब हैं उन्होंने इसका तर्जुमा किया था, तो ये किताब के पन्ने कहीं ना कहीं बिखरे पड़े थे। तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं दीपक मल्होत्रा साहब, उनके टेबल पे बिखरे थे। तो मैं अचानक पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कोई टीचर चाहिए जो हिंदी जानता हो। उर्दू का हिंदी में शब्द को अर्थ लिखना था शब्दों के, और पूरी किताब मेरे हाथ से निकली है। इसमें नाज मेमोरियल सोसाइटी बनाई है इन्होंने, जिसमें हारून यूसुफ साहब इसके एक सदस्य हैं और इनके पोते जस्टिस विजेंद्र जैन,
1: अच्छा अच्छा,
2: ये शेर सिंह नाज देहलवी के पोते हैं सर। ये किताब आई और ये किताब अब पूरे 2006 में पब्लिश हो गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सारा कलाम पढ़ा है, मेरे हाथ से निकला, मुझे बहुत खुशी हुई कि हम कहीं ना कहीं आज भी रुचि रख रहे हैं।
0: हाँ, सही कहा गंजम साहब ने, एकदम सही बात कही कि किसी भी मसले पर गुफ्तगू

0: तरह से की जाती है, या तो डाइक्रोनिक हो जाइए आप, नहीं तो सिंक्रोनिक हो जाइए, है ना। डाइक्रोनिक होने में फायदा होता है, सिंक्रोनिक होने में फायदा नहीं होता है। सिंक्रोनिक मतलब हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ एनीथिंग, है ना, किसी भी चीज का तारीखी मुताला। तारीख में आप किसी भी ओरिजिन को, मसले को तलाश नहीं कर सकते। माजी बहुत गड़बड़ मामला होता है। आज के तनाजुर में जब हम इसी भाषा को, जो दो रूपों में, दो रूप में, यानी हिंदी और उर्दू के रूप में ये भाषा अब मकबूल आम और खास है, इसकी मौजूदा सूरत हाल को, इस जबान की जब हम देखते हैं, तो वही बात जो खली कंजुम साहब ने कही है कि हम लोग भाषाई स्तर पे वहीं पहुंच गए हैं जहां ये भाषा कभी एक जैसी हुआ करती थी, जिस तरह सभी बोलते थे। तो स्पीच कल्चर जो है ना कहीं हम लोग सब एक हो गए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग कागज पर उतरते हैं, बस दो लिपियों की वजह से भले मुख्तलिफ हो जाते हों। ज्ञानचंद जैन ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उसको दोहरा, ज्ञानचंद जैन है, बड़ी अच्छी बात, जब वो हिंदी उर्दू के मुखालफत में एक भाषा दो लिखावट नहीं लिखा था, ये किताब नहीं लिखी थी, तब उन्होंने एक मजमून में ये कहा था कि उर्दू और हिंदी जबान तो एक है, लेकिन दोनों दो तरह के अदब पैदा करते हैं। बस ये
1: मैंने उनसे उस वक्त भी इख्तलाफ किया था, जैसा जब मिले मैंने कहा हमारा फिक्शन देख लीजिए आप, नॉवल हिंदी का कहीं कोई फर्क नहीं,
0: कोई फर्क नहीं है,
1: कोई फर्क नहीं है साहब, भाई कैरेक्टर्स वही है, जबान वही है, बात वही है, सारी वही चीजें हैं, लेकिन बात यह कि बेचारे आपको बोलने का कम मौका मिला, किशोर साहब आप बोलिए।
2: एक चीज मैं थोड़ा सा बोलूं, ये धूमिल की कविता है जिसको कोट करते हुए मैं अपनी बात करूंगा, उसमें है कि हथियारों ने फिर उसी जुबान में बोलना शुरू किया है जिसमें तुम्हारे बचपन की लोरियों की गंध है। मसलन जो बाजार आज आ गया है, और ये बाजार जो है हर चीज को अपने गिरफ्त में ले लिया है, ऐसे में लैला को जब करना था इम्प्रेस तो मजनू ने खाए सेंटर फ्रेश। अब ये देखिए, सेंटर फ्रेश अपने आप में मल्टीनेशनल चीज है, लेकिन उसमें जो कुआं है, जो मूली है, जो साइकिल है, वह हमारे लोक की चीज है। कहीं ना कहीं संस्कृति हमारे लोक को खत्म करके, हमारी लोक भाषा को खत्म करके हमें एक तरह से वहां से बाजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, हमारी उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां पर भी जब हम संबंधों की बात करते हैं, हिंदी उर्दू संबंधों की बात करते हैं, तो इसमें यह चीज को भी समझने की जरूरत है कि हम कहीं कल्चरली पुअर तो नहीं हो रहे हैं। जो है
1: हिंदी वो बात नहीं है, बिल्कुल शुरू ही से हिंदी और उर्दू दोनों जबान वालों का रवैया ये रहा है कि जो चीजें बाहर से आ रही है वो हमारी है। एक साहब ने इंशा बहुत बड़े शायर थे उर्दू के और बहुत बड़े स्कॉलर, उन्होंने बेगम लिखा कि फला बेगम, तो किसी ने इतराज किया साहब ये लफ्ज बेगम नहीं बेगुम है। उन्होंने कहा जब मैं तुर्की बोलूंगा तो मैं उसको बेगम कहूंगा, मेरी जबान में ये लफ्ज बेगम है। अच्छा मैं एक बात कहता हूं, मैंने एक शेर सुनिए, ये गालिब का शेर है, इनके अलावा आप दोनों बताइए। नक्शे नाजे बुते तन्नाज बाहोश रकीब, पाए ताउस पे खामे मानी मांगे। अब बताइए कौन सी जबान में ये शेर है,
3: मुझे लगता है अरबी फारसी सब कुछ है।
1: देखिए है ना, अब है क्या कि ये शेर सच में उर्दू का है, उनकी उर्दू गजल का है। अब फर्क कहां हुआ, कैसे हुआ ये उर्दू का, इसमें एक फेल यानी एक वर्ब मांगे आ गया। अब ये है कि उर्दू नहीं चल सकती एक कदम भी आपके वर्ब हिंदी के वर्ब लिए बगैर,
3: बहुत अच्छा
1: नहीं चल सकती,
3: बहुत अच्छा।
1: और आप देखिए कि ये जो पूरा देखिए शेर देखे, नक्शे नाजे उदे तंदाज बागोश रखीब, पाए ताउस पाए खामे मानी मांगे, सिर्फ मांगे एक लफ्ज है और ये हिंदी से लिया। तो वह उर्दू वाले हिंदी की फेल यानी जिसे हम वर्ब्स कहते हैं उसके बगैर काम नहीं कर सकते। नाउन दोनों के साथ बराबर बराबर होते, मतलब कहने का ये है। अच्छा क्यों है ये कि ये शुरू ही से ये रिवायत रही है कि फेल फारसी के जो हमने लफ्ज लिए वो तो ले लिए, लेकिन फारसी के वर्ब्स नहीं लिए हमने, वो हमने हिंदी से लिए। मतलब ये है कि हिंदी और उर्दू में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, ये हमने खुद कर रखा है, पॉलिटिशियंस का किया हुआ है, और वो जो लोग जो जबान की सियासत करते हैं ये उनका है। अब लफ्ज जो है आप देखिए कि उर्दू में अगर आप हिसाब लगाएंगे बैठकर गिनती कीजिए हजारों लफ्ज हिंदी के हैं।
2: बिल्कुल,
1: एक बात मैं बताऊं आपको कि बेसिक वोकैबुलरी लिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक वोकैबुलरी हर जबान की 500-600 लफ्ज होते हैं बेसिक, बाकी हम आसपास से मांगते हैं। तो ये तो है, हम हिंदी ने भी बेसिक वोकैबुलरी पास जैसा है उसकी, उर्दू की भी, उर्दू ने हिंदी से मांगी है, हिंदी ने बहुत से लोग जिनसे मांगे, और उर्दू ने तो खैर दुनिया भर के जबानों से
0: दरवाजा ही खोल रखा है।
2: उर्दू तो हर यहाँ तक कि रीजनल भाषाओं से भी जुड़ती है, अवधी से जुड़ गई जो है, वो ब्रज से जुड़ गई, ऐसा नहीं कि केवल जो है खड़ी बोली से ही जुड़ करके, जहाँ जो है वो उसको
3: लगता है। सर आपने जैसे कहा कि आपने एक बात कही कि जो उर्दू है वो हिंदी के बिना नहीं चल सकती, तो मैं कहना चाहती हूँ कि 2008 में एक मास्टर थे जब, तो मेरा हिमाचली पहाड़ी कविता संग्रह जो देवनागरी में ही है।
1: अच्छा,
3: तो मैं औरों की बात नहीं करती, अपनी बात करती हूँ। जैसे मैंने एक शब्द है एंचली, पहाड़ी एंचली, अब रिलीजियस भजन होते हैं भगवान शिव के जो समझ में ही नहीं आते, आम आदमी तो समझ ही नहीं सकता उसको।
1: अच्छा, अच्छा।
3: इतने मुश्किल है, तो मैंने एक जगह लिखा है शिवजीरी एंचली न कोई मुजरा नहीं, कभी कभी आपको जो सुनाना चिंदा है ना, तो एक ऐसे मैंने मतलब मेरी देखो फरमान कविता उर्दू का शब्द है, मैं कहती हूँ करदा है गुमान वक्त कदया मेहरबान वक्त, लास्ट लाइन बोल रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं बोलती, ईना प्रिया एक रोज बनी धर्मराजरा फरमान वक्त। तो इस तरह से एक जगह गीत कविता है जिसमें मैं लिखती हूँ जिंदगी दी रंगत बदली गई बद दुआ दुआ बनी गई। सारे उर्दू है या नहीं?
0: जी जी जी,
3: ढेर उर्दू के शब्द है सर, चल ही नहीं सकती। मैं एक शेर बोलना चाहती हूँ हिंदी उर्दू संबंधों के को लेके, बेगानगी नहीं, बेगानगी नहीं, बस इतनी सी दोस्ती है, हम उनको जानते हैं वो हमको जानते हैं।
1: क्या बात, क्या कहूँ, ये तो बड़ी बात है ना। बात ये देखिए, मैं आखिर में आपसे ये कहूंगा, तो वक्त खत्म होने पे आ रहा है कि सेकुलर अपने आप को बनाना और शो करना अलग बात है, और एग्जैक्टली सेकुलर बनना खुद बड़े मुश्किल बात है, और जबान के मामले में हम जबान के सबसे बड़े दुश्मन होंगे जब नसर में, यानी प्रोज में हम बड़े मोटे मोटे लफ्ज इस्तेमाल करें, या पोएट्री या जिसे हम क्रिएटिव वर्क कहते हैं।
2: बिल्कुल सही।
1: हाँ, आप जो वो काम कर रहे हैं, तहकीक का काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो करो ठीक है, लेकिन वो नहीं कभी करना चाहिए। देखिए जबान का मामला ये होता है कि एक इडियोक्रेटिक जबान होती है, यानी मेरी हम चार बैठे, हम चारों की जबानों का आप टेप रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके बाद एनालिसिस, कुछ भी सही, हम उर्दू वाले कितने ही सही है, आप हिंदी वाले दोनों कितने, जब फाइनल एनालिसिस होगा तो मालूम होगा हम चारों की जबान ही अलग है।
3: सर एक आपकी बात पे बात याद आ गई कि आपने बोला ना जैसे हिंदी की, अगर हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हम ये हिंदी की बात करें, हिंदी कभी भी कोई मजहब या धर्म की भाषा नहीं रही, संक्षेप में कह रही हूँ कि जो हिंदी को ब्राह्मणवादी या हिंदूवादी इस तरह के जो शब्द दिए वो अंग्रेजों ने दिए हैं या पश्चिमी विद्वानों ने दिए हैं। मुझे लगता है जो भारतीय समाज को ठीक से समझ नहीं पाए वही ऐसा कहते हैं। आप देखिए
1: वाली समझ पाए वो हमारे समाज को
3: सर हिंदी शब्द
0: हमारे सामईन को मतलब के लिए ये बात के ये जरूरी जाना चाहिए कि उर्दू शब्द का इस्तेमाल जब हुआ तो उससे पहले इस भाषा को, जिस भाषा को हम लोग दो रूप में जानते हैं
3: जी,
0: उस भाषा को हिंदी ही कहा जाता
1: था। हिंदी और हिंदी
0: 1780 में पहली बार उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया गया इस भाषा के लिए, जो पहले हिंदी
1: खत्म हो गया जी। और मैं बता दूं शाह सलमान
0: जी,
1: अमीर खुसरो, मीर तकी मीर और गालिब, इन सब के हाँ उनके अपने कलाम के लिए लफ्ज या तो हिंदी आया या हिंदी आया,
0: हिंदी आया
3: तक ये तो बात कहते हिंदी का कवि हूँ मैं,
0: हिंदी
3: कहते हैं मैं कभी हिंदी का हूँ
1: बट ठीक है,
0: गालिब तक कहते हैं बेगुजर आज मजमू है हिंदी,
1: हिंदी
0: मजमू है हिंदी के बेरंगे।
4: उर्दू हिंदी के लिसानी रिश्ते, इस हवाले से अभी आप अदबी नशिस्त समाप्त कर रहे थे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। तामिले इरशाद फरमाइश फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त नईम हाजिर खिदमत है, आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप तमाम सामईन की नजर है।

रहीम मुन्ना। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ और उनके कुछ और साथी, बहुत सारी फरमाइशें एक ही मेल में लिखकर भेजी हैं। भोपाल से हैं चंपालाल दुबे अनंत और दर्शिका दर्शित और अहले खाना। गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहरलाल गांधी की फरमाइश भी अगले नकमे के लिए, इसी नकमे को सुनने के मुंतजर हैं। आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर, गांव हंडीखेड़ा सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदर शर्मा और साथ में सार्थक शर्मा, और मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन की फरमाइश भी है, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। पंजौर से चंद्रमोहन और इंद्र मोहन, और ये फरमाइश ईमेल करनाल से मिला है बलविंदर सिंह सोडी साहब का। अगला ईमेल है प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण का, करणवीर हाउस भुचक बठिंडा पंजाब से। अगले नकमे को आप भी सुनना चाहते हैं, आप मजनू पटेला दिल्ली से, कमल बालूचा, मधु बालूचा और सागर बालूचा। और ये फरमाइशी ईमेल मिला है उन दोस्तों का जिनके नाम हो चुके हैं शामिल, तो साइड लाइन करना पड़ेगा आपके इस ईमेल को। घंटाघर चौखंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, साथ में संप्रीत, इसी नकमे को सुनना चाहते हैं। शेरवानी स्कूल कंचडंड वाला यूपी से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर। और कुछ तारीफी कलमात आपने लिखकर भेजे जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जनाब, मोहब्बत है आपकी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और साथ में स्वीटी छाबड़ा। और अगला ईमेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी वो भी करना पड़ेगा जो पिछले ईमेल का किया था। बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, साथ में कुसुम नेताम और राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, बुलाना महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं। तामेशाद प्रोग्राम का अगला नकमा। और सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से फरमाइश की है गजानन गिले, नवदीप एलिया, सुशील ने, इसी नकमे को सुनने के मुतमन्नी है मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और आरती कुमारी। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नकमा, और ये नकमा है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। फिल्म है कन्हैया, मौसीकी शंकर जयकिशन की।

फिल्म के इस नगमे को कलम बंद किया था शैलेंद्र ने, और अब आपको सुनवाते हैं सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजों में गेस्ट हाउस फिल्म का दुगाना, प्रेम धवन का लिखा हुआ, मौसीकी चित्रगुप्त की, और सुनने के ख्वाहिशमंद आप तमाम सामीन। दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज और साथ में हसन नवाज, और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है। मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद करीम अंसारी, शमसुल कमर रहीका, सहावर रोड गंज टुंडवारा से, और आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर और विशाल, और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक और कव्या मल्होत्रा, और विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम की फरमाइश है आकोट से। अगला ईमेल तेलंगाना भोंगी से मौसूल हुआ, आप है मोहम्मद बुरहानुद्दीन, इसी नगमे को सुनना चाहते उत्तम कुआ भगत, श्वेता भगत, किशोर ताशु, पाकुर झारखंड से, और तालुका निवासक खुपटी से बंडूलाल लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपलगढ़। और अगला ईमेल मोहम्मद मुजीब शेख, जायना नाविया शेख और बेबी अमीरा शेख का है, आपने आशियाना अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से फरमाइश की है। इसी नगमे को सुनना चाहते नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शनी मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका काल पांडे, साईनगर आरवी महाराष्ट्र से, राहुल मनवर, सल्ला मनवर और देवी प्रियांशी हैं, शाहनगर यवतमाल से इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं। फातिमा कॉलोनी श्रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नादिर नासिर, साजिद शाहिद, और आप हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, कुमार गली श्रीरामपुर से, और नांदेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश है नारायण गायकवाड़, देरन गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ की। अगला नगमा आपकी नजर पे करते हैं, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, जामनिया गाजीपुर से, और मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक सेन और अहले खाना सिटी सेंटर खंडवा से सुनना चाहते हैं अगले नगमे को। और तामिल शाद प्रोग्राम में ईमेल के जरिए अब शामिल हो रहे हैं गुलबर्गा कर्नाटक से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शबीर बन्नती और आसिफ इकबाल, और आप हैं कुमार हिरा सहारनपुर से सैयद मसूद, शाहीन हसन, नाजिया इब्राहिम और सगा शिव थोराट, कविता थोराट और शेह थोराट की फरमाइश है देगांव तहसील पूना महाराष्ट्र से, और आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु खोरवाल, मोहम्मद यूनुस खत्ती, मोहम्मद सादिक खत्ती, अयुब खत्ती की फरमाइश है छिपा कॉलोनी खंडवा एमपी से, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा गेस्ट हाउस फिल्म से।

अप्रैल फूल फिल्म का ये तो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। नगमा निगार थे हसन जयपुरी, मौसीकी शंकर जयकिशन की थी। और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ससुराल फिल्म का नगमा शैलेंद्र का लिखा हुआ, मौसीकी शंकर जयकिशन की है। इन दोनों नगमों की मिली जुली फरमाइश अब शामिल कर रहे हैं किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और भानु प्रिया। और आप हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन और साथ में अक्षय सेन। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, जयपाल यादव का, सागर एमपी से। और आप हैं पोषण बंचोर चंद्रकिरण और छाया बंचोर पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और अगला फरमाइशी मेल मौसूल हुआ नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरतम और साथ में रूबीना वसीम। और आप हैं गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर और महक प्रीत कौर, गांव तंगोरी, जिला मोहाली, पंजाब से आपने फरमाइश इरसाल की है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश ककनीजा, पूनम और निमित तिशानी। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक और निमी साहू। और आप हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी। अगले मेल शामिल कर रहे हैं गिरडीह बिशनपुर से झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिर परवीन, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा का। और अब शामिल हो रहे हैं संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले, शेगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से। और आप ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, कोटवा नारायणपुर, बावपट्टी बलिया से। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको भी साइडलाइन कर देते हैं। पुराना तालाब ब्रमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सुल्तान अंसारी, साथ में अस्मानाज अंसारी। और पिदवई नगर से तुपरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर, साथ में अंजुमन खान। और आप हैं शब्बीर हुसैन, मुज्जू बाबा और शहजाद हुसैन, सब्जी मंडी बुल्डाना से। और अगला नगमा आपकी नजर करते हैं, आप हैं मोटाला महाराष्ट्र से विजय सोलकर, रत्नमाला और कुमकुम गुड़िया, विनोद मंडलकर, वीणा मंडलकर और विविधा मंडलकर, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और अगली फरमाइश राज पैलेस मोमनाथ भंजन यूपी से मिली है, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा की। और अगला नगमा आप भी सुनना चाहते हैं, आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज केतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी और उनके बहुत सारे साथी। और एक और ईमेल, उसके बाद नगमे की बारी है, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तृप्ति साहू। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

सारा फिल्म का ये दुगाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे। हसन जयपुरी का लिखा हुआ मौसीकी रामलाल की थी और अब आपको सुनवाते हैं दिल ही तो है फिल्म का नगमा मुकेश का गाया हुआ। रोशन की मौसीकी में इस नगमे को कलम बंद किया था साहिल लुधियानवी साहब ने और इन दोनों नगमों की फरमाइशें भी शामिल कर लेते हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह और साथ में पिरकर और ये फरमाइश मिली है अल्तमश समीना मुदस्सर की जुम्मन नगर खंडवा से और अल्ताफ उजय सैफुल्ला साबाद की फरमाइश सांगली जत शहर से मिली है और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं चमन पाक दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर सना डॉक्टर अदीबा और ये फरमाइश मेल मौसूर हुआ अनूप सिंह नथावत धीरज सिंह सोलंकी और सागर पवार का गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से और महेंद्र सरकटे विजय सरकटे मिलिंद हैं वरुड़ जौलका से और अगला फरमाइशी ईमेल उन दोस्तों का जो शामिल हो चुके हैं तो ड्रॉप कर देते हैं इस ईमेल को। भाटापारा छत्तीसगढ़ से बचकमल डॉक्टर बसंत भिर्गु मोतीलाल यादव और इसी नगमे की फरमाइश मौसूल हुई है जलाशपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती भट्ट और जैस्मीन भट्ट की और अगला ईमेल है गांव नएवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा का आप हैं स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह गुरनूर सिंह लोहगढ़ ठाकुरावाला से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं इंदर चौक दिल्ली से अजीम वकार माहिर अजीम और निशा अजीम और जेल रोड जालंधर से रोशन जहां मन्नत जहां और जीनत जहां ये जेल रोड कितने हैं इस मुल्क में कभी कभी हमारा सर भी चकरा जाता है। गणेशपुर गंज डंडवारा एटा यूपी से शेख शमा परवीन एम फारूक शेख बेबी मुस्कान और अगला ईमेल सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से मिला है पंजाब रामटेके यशोधरा रामटेके और शव्या रामटेके का और आप हैं बरगद बेल हुबली कर्नाटक से फैज अहमद शाकिर मुल्ला जी और साबिर और अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत के हमारे सामने मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शादाब खत्री और ये फरमाइश ईमेल रिपीट हो गए इसको भी साइडलाइन करते हैं तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विश्वकर्मा साथ में चेतन विश्वकर्मा एम ए वहीद रुमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर मोहम्मद फजी की फरमाइश है फुलोंग जहाबाद तेलंगाना से और आप हैं सुभाष योगी राजू मिगलानी बब्बू डब्बू कृष्णा कॉलोनी हांसी से ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है छत्तीसगढ़ कोका भिलाई से प्रताप पांडे और रेखा पांडे का इसी नगमे को सुनना चाहते हैं अनंता भगत अरुणा भगत सुलोचना भगत मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से और सुब्रत चौधरी की फरमाइश है कोलकाता से अगला ईमेल है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेरा कोमल मेरा कपिल मेरा का और आप हैं रमेश ये

पहले हम शामिल कर चुके हैं। मेल आगे बढ़ते हैं जनाब। सावरा नगर अमरावती महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं अगले नकमे को, रेखा संगर और संजय संगर, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है कासगंज यूपी से। योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक का और राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्के वाली फलना चाहे, गोकुल चौक गंगजिला सहरसा से और बागपत यूपी से फरमाइश किया। संजय ढींगिया नमन ढींगिया साथ में अपार ढींगिया, और ये फरमाइश दिल्ली से मिली है पश्चिम बिहार से, और हमारे सामने नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, साथ में डी के अलवी और अलीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर हुसैन अंसारी, नईम रजा सिद्दीकी, पश्चिम थोक गंज टुंडवारा से और पंदर कावड़ा से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे, बिट्टा भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया झज्जर हरियाणा से हैं। और अगला ईमेल रिपीट है, इसको भी करते हैं साइड लाइन। सुशांत प्रियाजा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमार, टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर दिल्ली से, और ये फरमाइश ईमेल भी हुआ है रिपीट, इसको भी साइड लाइन करना पड़ेगा जनाब। बेलम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जेबुन निसा और सद्दाम सोनी, और ये फरमाइश ईमेल मेन बाजार कुंडरवाड़ी महाराष्ट्र से मिला। गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, साथ में प्रदीप येमेकर और बाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, साथ में चंपा साहू, मोहम्मद कलीम अंसारी और जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, गंज टंडवारा कासगंज से हैं। और ये फरमाइशी ईमेल कमल सानी और पिंकी सानी का नागपुर महाराष्ट्र से, और आप हैं डोंडी बिहार से। यहां कुछ नामों में थोड़ा सा झोल है, इसलिए बेहतर होगा कि इस ईमेल को ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि जो सरनेम है वो कुछ अच्छा साउंड नहीं करते, जरूर इसके साथ में कुछ गड़बड़ की गई है। और प्रकाश बोरगांव का, सुषमा बोरगांव का प्रांजलि है सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से, और अगला ईमेल मौसूल हुआ है परिणता सिद्धांत गोहानकर, टुकटुक गोहानकर का बदलापुर मुंबई से, और फहीम मंसूर अदी, फातिमा मंसूरी है बांदा यूपी से, और ये फरमाइश मिली गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली की, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, गाटगी नगर यवतमाल से। काफी नाम शामिल हो गए, अब नगमा सुना देते हैं जनाब। बड़ा प्यारा सा नगमा है, मुकेश की आवाज में है दरअसल ये नगमा। दिल तुम्हारा है हमेशा तुम्हारा होगा, कौन कहता है मुझे इश्क दोबारा होगा,

0: और अब आपको सुनवाते हैं राज फिल्म का दुगाना मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले का गाया हुआ। कल्याण जी आनंद जी की है मौसीकी और नगमा निगारें अख्तर रुमानी। सुनने के मंतजिर लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और साथ में रानी मानिकपुरी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, मोहम्मद ताज अंसारी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान से। अगले मेल मौसूल हुआ है डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी और जिशान अहमद सिद्दीकी का, तीन सरादा भिलाई छत्तीसगढ़ से और मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित हैं। नई सड़क शाजापुर एमपी से आपने राजावत कॉम्प्लेक्स से ये फरमाइश अमीर साल की है। अगला मेल हो गया है रिपीट, इसको करते हैं साइड लाइन। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और अर्णव जायसवाल हैं नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से, और गगनदीप थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी है नवा शहर टोरवाल पंजाब से। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, साथ में आरजू जाजोरिया। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश का। और अस्तुपुरा जिला मऊ से फरमाइश की मदर अली अंसारी, रजे बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक ने। इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो साइलेंट होना पड़ेगा आपको जनाब। बार बार ईमेल करके फिर तो मामला गड़बड़ होता है, वक्त भी जाया होता है। पैजोनिया जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आलोकिक चंसोलिया और आदर्श और उनके कुछ और साथी। और बूंदी चक भागलपुर से सुनने के मुतमन्नी इस नगमे को दिलीप कुमार सोनी। और अगले मेल रिपीट है, इसको भी करते हैं साइड लाइन। मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता वंश है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, और ये फरमाइशी मेल मिला है श्याम किटे, वंदना किटे, कार्तिक किटे का, राठगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, साथ में योगेश शर्मा और सुरेश नारंग, साथ में सोनाली और आशा नारंग सहारनपुर से आपकी फरमाइश हमें। सोनाली पथिक आपने नाम लिखा है, पैरकेफ नाम शामिल कर ले जनाब। हरपुर मटगली बरेली से शाहरुन अंसारी, फरियाद हुसैन और शकील अहमद इतरी से। और ही फरमाइश ईमेल बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशो का है मुख्तसर पंजाब से, और बुलशहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा और सुरेश चौरसिया, और साथ में सरो चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया, साहबगंज चौराहा फरुखाबाद यूपी से हैं। उस्मान शेख फौजी, साहिरबानो करिश्मा शेख ने लातूर हिपर सोगा से। और ये फरमाइश ईमेल मिला है मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसन पवार का, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से। और आइए अब सुनते हैं नगमा, बाकी नाम बाद में शामिल किए जाएंगे।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: नहीं कुछ नहीं।
1: कुछ नहीं

इसी नगमे को सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी और वान्या सिंगरौल, और ये फरमाइश मिली है उन दोस्तों की जिनके नाम हो गए शामिल। तो आगे बढ़ते हैं। विठल यादव, अनुसुईया यादव, पवनलाल यादव है नागपुर से, और अगला ईमेल मिला है धाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर और रिंकी शेखावत का गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, और आप हैं नथुर राम शर्मा, ललित शर्मा, सुरेश शर्मा, मंडी हरजी राम मलोट से, और तिलक राणा, मीना राणा, रोमी राणा नेपाल पैलेस सागर से हैं। इसी नक में वो सुन रहे हैं पुरानी बागपत से इलियास, मुस्कान कुरेशी, रानी कुरेशी और उनके कुछ और साथी, और आप हैं वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशर जहां, मास्टर अजहर खान और अहले खाना, ये फरमाइश ईमेल मिला है। पारू चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा का कुमार गली कोलगांव से, और शंभु दयाल खटक, विमला देवी, पूजा खटक है गांव जाखो राजस्थान से, ये फरमाइश मिली है। नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरा और ज्योति रानी की, और अगला ईमेल रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, खमरुनिसा, शबिस्ता और एले खाना का है। इसी नगमे को सुन रहे हैं सिद्धार्थ गोंदाने, अर्शनताई गोंदाने, प्रणय कुमारी प्रसिद्धि, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से, गुरमीत सिंह मेहता साहब है साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, और ये फरमाइश मिली है गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुधार, चेतन सुधार, सारिका सुधार की। इसी नगमे की फरमाइश की थी छोटी वलिया कर्जत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम और शबाना आजाद ने, विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, आदित्य बंसोड़े।

0: भटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हैं हर्षा रामकर, दिलीप रामकर और अक्षय रामकर। अब देखिए जनाब, वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। हालांकि काफी ईमेल अभी हमारे पास थे, इनमें से एक दो ईमेल शामिल करना चाहेंगे। बड़े अभी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, त्रिभुवन मालवीय और अहले खाना, और ये फरमाइश है नवेद हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी के मारहरा गेट से, और अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, नर्मदा पाक, मंगल बेडा महाराष्ट्र से, और निशा सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया हैं धनौरी तेली वाला से। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आज का प्रोग्राम बस यही इख्तिताम पजीर होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुत ही अहम फैसले लिए हैं, जो पूरे देश के विकास के लिए, हमारे मूलभूत ढांचे के विस्तार के लिए अहम है। क्या हैं ये फैसले और किस तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेंगे, इस सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद
2: अदिति जी। आज कई तरह के अलग अलग फैसले लिए गए हैं, विभिन्न जो हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, उससे जुड़े हुए, सेमीकंडक्टर जो हमारा इकोसिस्टम है, या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, रेलवेज, या एग्रीकल्चर से जुड़ा एक बहुत अहम फैसला है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से बहुत जुड़ा हुआ एक अहम फैसला लिया गया है। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन 2.0 मिशन से जुड़े कैबिनेट निर्णय के बारे में क्या कहा।
4: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है।
2: इसको आप कैसे देखती हैं इस परिदृश्य में कि सेमीकॉन 1.0 कुछ वर्ष पहले लाया गया था?
3: आपने जैसा कि कहा कि बहुत ही मूलभूत परिवर्तन के लिए बड़े बड़े आज डिसीजंस लिए गए हैं। अगर आप सारे डिसीजंस को एक तार में पिरोकर देखना चाहें तो आप जानेंगी कि ये मोस्टली आत्मनिर्भरता की तरफ देश को ले जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रमों की घोषणा आज हुई है, जिसमें सेमीकॉन 2 जो आपने कहा, जो सबसे अहम आज का डिसीजन है, वो देखिए अहम इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व का जो सबसे इम्पोर्टेंट सब सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप किसी भी बड़े देश को देख लीजिए, जो जो देश इकोनॉमिक तरक्की जल्दी कर पाए हैं वो देश हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे हमारा कॉम्पिटिटर है चाइना, तो उससे हम कम्पीट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। अब मोबाइल एक्सपोर्ट्स में भारत ऑलरेडी दूसरे नंबर का देश बन चुका है, हम चाइना से ही पीछे हैं और हम बहुत तेजी से प्रगति करने वाले हैं। और सेमीकॉन की इंडस्ट्री सोनू जी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जिसका सेमीकॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो पूरे स्ट्रेटेजिक सेक्टर को आज की डेट में ड्राइव कर रहा है। ना सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया की है, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दें और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इस इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। आप जानती हैं कि माइक्रोन का बहुत बड़ा एक प्लांट ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में जा चुका है,

0: उसके बाद केम्स का प्लांट जो 46 एकर्स में फैला हुआ है उसका भी अब शुरुआत हो चुकी है, तो उसी को आगे ले जाने के लिए आज इसकी घोषणा की गई है।
1: सो ये जो एक इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जैसा आप कह रही हैं कि 12 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे सेमीकॉन 0.1 के अंदर और ऑलरेडी 3 ऑपरेशनल हो चुके हैं, बाकियों पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। सो आपको लगता है ये मोमेंटम जो बना रहे उसके लिए आज का जो ये अनाउंसमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका किस तरह से हमारे जो रोजगार सृजन पर भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसके बारे में भी अगर आप हमें बता सकें।
0: देखिए कम से कम इससे 60,000 जॉब्स की जनरेशन का प्लान है, और आप ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज की डेट में करीब अगर पूरे देश का लैंडस्केप आप देखिए 105 स्टार्टअप्स हैं जो इसी सेक्टर में कार्यरत हैं इस टाइम, और जो फंडिंग सपोर्ट ले रही हैं वो ऑलरेडी जो मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ भी जा रही हैं अपने लेवल पर, वो करीब 24 हो चुकी हैं। और कम से कम ये जो प्लांट्स आज की डेट में काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जैसा कि आपने देखा कि आज अश्विनी वैष्णव जी ने जब अपनी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज वहां बताई कि हमारे देश की दूर दराज गांव की लड़कियां उनको हम चिन्हित करके फिर सेमीकंडक्टर के ऑपरेशंस में उनको ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, थाईलैंड जा रही हैं बच्चियां। झारखंड की एक लड़की का वहां पर वक्तव्य हुआ और उसने बताया कि वो कह रही है कि मैं कभी झारखंड से बाहर नहीं गई और सीधा थाईलैंड गई और सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लेके अब वो सेमीकंडक्टर प्लांट में कार्यरत है। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे रूरल इंडिया की लड़कियों को ट्रेन करके, और 60% जो बच्चे और जो वर्कफोर्स इस वक्त सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस में भारतवर्ष में है उसका 60% महिलाएं हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि जो नया सेमीकंडक्टर का अब करिकुलम बन गया है, क्योंकि अब हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो करीब 500 कॉलेज भारत के ऐसे हैं जिन्होंने इसको एडॉप्ट कर लिया है और 8,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रतिवर्ष सेमीकंडक्टर करिकुलम को पढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब कल को जाकर हमारे वर्कफोर्स को एनर्जाइज करने वाले हैं।
1: और इस सरकार ने हमेशा ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का उस पर बहुत बल दिया है, उसके विकास पर, और सड़कों को लेकर आज जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास एक 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो 6 लेन ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर है, और दूसरा प्रोजेक्ट है 43 किलोमीटर से ज्यादा 6x4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। इन दोनों में जो 25,400 करोड़ रुपए का खर्च बताया है सरकार ने किया जाएगा, इनके प्रमुख फायदे क्या होंगे इस जो एरिया में रहते हैं लोग, और अगर हम कारोबार की बात करें टूरिज्म की बात करें थोड़ा विस्तार से बता सकें तो?
0: देखिए आजकल हमारे शहरों की सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर वक्त से पहुंच पाए, उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है। हम जब सड़क पर बहुत सारा वक्त जाया करते हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो वक्त जाया करते हैं, तो वो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, हमारी अर्बन मोबिलिटी को लो करता है और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जो हमें ये बताती हैं कि मॉडर्न एक्सेस कंट्रोल्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स अगर हम बनाते हैं तो उससे ना सिर्फ अर्बन कनेक्टिविटी बढ़ती है सोनू जी, उससे हमारी यू नो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम बेहतर काम कर पाते हैं, हम इकोनॉमी में अपना बेहतर योगदान दे पाते हैं, तो ये एक साइक्लिकल इम्पैक्ट होता है पूरी इकोनॉमी पर। और जैसा कि कनेक्टिविटी से जाहिर सी बात है कि आसपास के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको भी बहुत गति मिलेगी क्योंकि आसान हो जाएगा आवागमन। ये जो दो प्रोजेक्ट्स वाराणसी के लिए घोषित हुए हैं इनसे बहुत सारी अर्बन मोबिलिटी की जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ट्रैफिक चोकिंग की वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ना सिर्फ लोकल रेजिडेंट्स को इसका फायदा होने वाला है, वाराणसी एक बहुत ही बड़ा इस वक्त टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया है, रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अहम डेस्टिनेशन बन गया,
1: इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए
0: और आप देखिए इनक्रेडिबल इंडिया का जो ब्रांड है उसको भी गति मिलती है ना जब ग्लोबल टूरिस्ट आते हैं और कनेक्टिविटी इम्प्रूव नजर आती है, सीमलेस ट्रांसपोर्ट नजर आता है, तो फिर वो एक अच्छा इम्प्रेशन लेके भारत का बाहर जाते हैं, उससे फिर हमारी ग्लोबल और इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है।
1: और अगर हम वापस फिर एडवांस टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स के लिए जो अप्रूवल आया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का 62,500 करोड़ रुपीज का आउटले है 5 सालों के अंदर, और उसमें इंसेंटिव सपोर्ट की भी बात की गई है, और एक जो बड़ा उन्होंने कहा है कि लक्ष्य है कि भारतीय ब्रांड्स बिल्ड हों, इसको आप कैसे देखती हैं? अभी तक जो मोबाइल फोन में हमने प्रगति देखी है पिछले 11 वर्षों में उसको देखते हुए ये

0: आपको और कितना एक आगे ले जाने वाला स्टेप दिखाई देता?
1: देखिए, जो मोबाइल फोन्स हैं इस वक्त भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में टॉप का प्रोडक्ट है, और हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और हम पिछले दशक के कंपैरिजन में देखें तो 2014 में हमारा जो स्थान था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में वो हम 9th स्पॉट पर थे पूरे विश्व में, और आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। तो ये 10 साल का हमारा प्रोग्रेस है। वहीं अगर हम विद इन द सेक्टर किसी प्रोडक्ट की बात करें तो मोबाइल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो इस वक्त टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी है इंडिया से। मतलब आप समझिए कि डीजल से भी आगे हम डीजल का एक्सपोर्ट करते हैं, फ्यूल का भी कुछ एक्सपोर्ट हम करते हैं, और आज ही अश्विनी वैष्णव जी ने भी बताया कि ये टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी बन चुका है। और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि 10 साल पहले टॉप 100 में भी नहीं था। टॉप 100 एक्सपोर्टेड आइटम जो इंडिया से हैं उसमें मोबाइल फोन का जिक्र नहीं था, और आज वो टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी बन गई है। तो ये जताता है और दर्शाता है कि देश में इनहेरेंट कैपेसिटी और इनहेरेंट पोटेंशियल कितना था। आपको याद है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई आई थिंक 2021 में आई, और उसको कितना बड़ा उसका लाभ हुआ है इकोनॉमी को कि आज की डेट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ गई है कि एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। और सेकेंडली जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि इस वक्त भारत में 98% जो फोन यूज हो रहे हैं वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड फोन्स हैं। तो हम ना सिर्फ एक्सपोर्ट सेगमेंट में बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं मोबाइल सेक्टर में, हम इवन डोमेस्टिकली इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अब यूज भी कर रहे हैं। और जैसा कि सरकार का अनाउंसमेंट है कि इंडिया के मोबाइल ब्रांड्स को पूरे विश्व में एक्सेप्टेबिलिटी दिलानी, तो ये एक चैलेंज है। आई थिंक उसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए आज ये स्कीम लाई गई है।
0: अदिति, एक और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूरिया में आत्मनिर्भरता हम अचीव कर सकें उसके लिए जो पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई निवेश नीति यूरिया क्षेत्र से संबंधित एक कैबिनेट निर्णय के बारे में भी बात की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12.7 लाख मैट्रिक टन्स, उससे करीब 1 करोड़ मैट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। इस पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
0: इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं?
1: देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ी स्कीम है जो आज अनाउंस हुई है, और मेरे हिसाब से इसका महत्व बहुत दूर और देर तक हम देखते रहेंगे। फॉर इंस्टेंस, आपने अभी जब देखा वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ, तो जो सप्लाई चेन्स चरमराई उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर हुआ? उन्हीं कमोडिटीज पर जिस पर हमारी इम्पोर्ट निर्भरता है, जिसमें हम क्रूड को मानते हैं। हम पहले क्रूड लेकर आते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, फिर हम उससे फ्यूल बनाते हैं, पेट्रोल डीजल बनाते हैं। हमें कितना बड़ा हिट हुआ, हालांकि हमारी इकोनॉमी ने उसको बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब किया, देश ने फटाफट डाइवर्सिफाई किया सोर्सेज ऑफ क्रूड को। सिमिलरली यूरिया का इम्पोर्ट एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, और देखिए हमारा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है। हम ये ना भूलें सोनू जी कि हम जितने मर्जी एडवांस्ड हो जाएं, हमारे देश में जो रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की वो किसान है, और किसान के माध्यम से फार्मिंग है और एग्रीकल्चर है। तो उसकी तरफ जो ध्यान सरकार ने आज दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे होने क्या वाला है, इससे हर प्लांट जब ये बन जाएगा, 8 प्लांट्स की घोषणा हुई है, 6 ऑलरेडी बन चुके हैं पिछले 10 साल में, 8 और बनेंगे। जब एक एक ये प्लांट कायम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, 250 करोड़ प्रति प्लांट इम्पोर्ट पे जो जा रहा है, 250 करोड़ प्रति प्लांट जो जा रहा है वो हम सेव करने वाले हैं, और 1 करोड़ मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हम बढ़ाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि आपने देखा है कि ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड होता है यूरिया, तो इसके लिए हेल्प होगी फार्मर्स की।
0: सो बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाले सारे आज डिसीजंस थे, जिसमें 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स रेलवेज के भी शामिल हैं उड़ीसा और झारखंड में, जिनसे जो रोड पर भार है वो कम होगा, रेलवेज की तरफ डाइवर्ट होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगे, एनवायरमेंट को फायदा होगा। बहुत धन्यवाद आपका अदिति जी, आप आई और आपने इन

0: अहम फैसलों पर, उनकी बारीकियों पर हमें जानकारी दी। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
2: में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशा खिदमत है कवालियां फनकार अहमद खान कवाल और हमनवा।

0: माफ कीजिएगा, कल 16 और 17 साल के नौउम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मंसूबे का ऐलान किया है। इस इकदाम का मकसद नौजवानों को सोशल मीडिया की लानत और नुकसानदह असरात से महफूज रखना है। अलबत्ता इन पाबंदियों के तहत बाज सूरतों में इस्तिस्ना हासिल किया जा सकता है। ये इकदाम पिछले महीने ऐलान की गई उस पाबंदी के बाद किए जा रहे हैं जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। ये जाब्ते 2027 से नाफिजुल अमल होंगे। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सस में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहिदा और उससे मुंसलिक समाजी तहफ़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। भारत और पोलैंड ने कल नई दिल्ली में छोटी, बहुत छोटी और दरमियानी सनतों के शोबे में तआवुन को मजबूत करने पर दो तरफा बातचीत की। जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा आलमी कप फुटबॉल के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिकी मौसीकी में जब सुनिए पंडित एमएस गोपाल कृष्ण का वायलिन पर बजाय राग बागेश्वरी।

0: क्लासिकी मौसिकी में अभी आप सुन रहे थे पंडित एम एस गोपाल कृष्ण का वॉल्यूम पे बजाया राग बागेश्वरी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आखिर से प्रोग्राम में सुनिए चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे।
1: निगाह शौक से
0: पहली पेशकश वांटेड फिल्म से है। शकील बदायूनी के लिखा हुआ नगमा, मौसीकी रवि की, आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की।

जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये नगमा सुन रहे हैं। लता मंगेशकर की तरह मुकेश मन्नाडे और महेंद्र कपूर की आवाज सुन रहे हैं। मौसीकी शंकर जयकिशन की और नगमा निगार शैलेंद्र।

0: एक दिल सौ अफसाने, इस फिल्म का नगमा सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शंकर जयकिशन की मौसीकी में नगमा निगार थे हसन जयपुरी। इस नगमे के साथ ही आखिरी शब प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आप हमारी नशात सुन रहे हैं। शब के 12:50 पर चाहते हैं अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर दो कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निजाम को मस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रूपये से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहिदा और उससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकेबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप्स में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कल उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान 46 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिससे शहरी मोबिलिटी में बेहतरी आएगी। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमाया लागत 14,400 करोड़ रूपये से ज्यादा होगी और यह कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान बिला रूकावट कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जिससे शहर के सड़क नेटवर्क पर नुमाया तौर पर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी। इम्कान है कि यह प्रोजेक्ट जिस हिस्से का अहाता करेगा उसमें सफर का औसत वक्त 60 मिनट से कम होकर 20 मिनट हो जायेगा। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वरुणा दरिया किनारे तकरीबन 43 किलोमीटर तवील 6 से 4 लेन वाले सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिस पर कुल सरमाया लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रूपये होगी। इससे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाई

अड्डे, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रिसाई में नुमाया बेहतरी भी आएगी। मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम की तशकील के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट इखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 1.0 प्रोग्राम में तवज्जो सनत के आगाज और उसे कायम करने पर थी और सेमीकॉन 2.0 के तहत सभी अहम जरूरी चिप्स भारत में ही डिजाइन की जाएंगी और इस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अख्तिताम तक मुल्क चिप्स डिजाइन करने के मामले में खुद कफील बन जाएगा। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि भारत ने अमरीका, जापान, यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी के साथ पहले ही शराकत दारियां कायम की हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि सेमीकॉन 2.0 के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का इम्कान है। मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट इखराजात के साथ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि आइंदा 5 बरस के लिए यह स्कीम नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से इसकी मुद्दत के दौरान मजमूई तौर पर अंदाजन 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन तैयार किए जाने का इम्कान है, जबकि मजमू बरामदात के 7,50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। चुनाव कमीशन ने कल पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जाम नजरसानी SIR मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाये की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल जो 28 जुलाई तक जारी रहना था अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाये की जाएगी। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहिदा CETA नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, वो भी नाफिजुल अमल हो गया है। इसे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को 0 महसूल के साथ रिसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खुराक की डब्बाबंदी, दवासाजी और MSME जैसे शोबे शामिल हैं। इस माहिदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की सिम्त में एक अहम कदम है। यह माहिदा भारत और बरतानिया के दरमियान इकतसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। माहिदे के निफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गई। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह माहिदा वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि यह एक निहायत अहम और बड़े तिजारती माहिदों में से एक है जो दोनों मुल्कों को तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर लिंडे कैमरून ने कहा कि यह मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक कौंसिल AEPC के चेयरमैन डॉ AK शक्ति थीवेल ने कहा कि इस मुआहिदे के नतीजे में 1.5 साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अब नए हुर्मुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका की फौजी सेंट्रल कमान ने कहा कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम रास्ता है। ईरानी अहलकारों ने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरिक्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज कम 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जनूबी बंदरगाही शहर बशेर को भी निशाना बनाया गया, जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तंसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमे मुहाजिरानी ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी ने दावा किया कि उसने बहरीन

0: और उर्दुन में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं, जिसमें कमांड सेंटर, तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। उसने कहा कि ये हमले बहिरे हिंद में अमरीका की जानिब से बहरी अफवाज तैनात करने और आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के बहाने बहरी रास्तों की नाकाबंदी के जवाब में किए गए हैं। उसने इस नाकाबंदी पर मगरबी एशिया से तवानाई की सभी बरामदात को रोक देने की भी धमकी दी है। उन्नीस साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इकोनिजाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रूपये से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसमें घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तिजारती मुआहिदा और उससे मुंसलिक समाजी तहफ़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है और जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा चाहता है। हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब खैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
3: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स। तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसैट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है। अभी 10 यूनिट लग चुके हैं। उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस अक्षर

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं।

श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म सीआईडी से। बहुत ही खूबसूरत सा गीत था और 54 में फिल्म आई थी और उसके बाद से ही आज तक कितने साल हो गए होंगे, करीब आई थिंक 74 इयर्स हो गए हैं और ये फिल्म, ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर उसी तरह गुनगुनाते हैं लोग जैसे कोई नया गाना हो, उनकी जनरेशन का गाना हो। अब सुनिए कार्यक्रम गीत सुनहरे और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए से अधिक के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसाइट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजिरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच अमरीका के अटलांटा स्टेडियम में चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अर्जेंटीना पर 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। इस रोमांचक मुकाबले में विश्व कप के इतिहास में समृद्ध 2 देश आमने सामने हैं, जो 19 जुलाई को फाइनल में स्पेन के खिलाफ जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडजस्टमेंट में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2:10 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं और ये वक्त होता है नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का। आए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। बने रहे हमारे साथ और सुनते रहिए यायार लाइव न्यूज 24/7।

0: ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं। मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते हैं।
1: तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है।
0: अब बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ।
1: कल रात मैंने एक सपना देखा था।
0: सपना? कैसे सपना?
1: चारों तरफ आग ही आग, धुएं के बादल, मशीन गनों की धार धार, टैंकों की गड़गड़ाहट, भयानक जंग हो रही। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठ जाता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, जूम आसमान में 300, 400, 700 की रफ्तार होते ही नीचे दुश्मनों का एयरपोर्ट नजर आता है। धड़म धड़म धड़म, 3 बॉम्ब जाके निशाने पे गिरते हैं, एयरपोर्ट साफ।
0: उसके बाद
1: एक धड़ाम से आवाज आती, मेरा प्लेन हिल उठता है। नीचे देखता हूँ तो आधा प्लेन गायब, नीचे देखता हूँ तो होश गायब। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, आंखें बंद करके धड़ाम से नीचे कूद पड़ता हूँ, और जब आंख खुलती है अपने आप को एक अनजाने से शहर में एक अनजाने घर के सामने पाता हूँ। दरवाजा खुलता, एक खूबसूरत सी लड़की मुझ पर एक बाल्टी ठंडे पानी की डाल देती, आंख खुल जाती।
0: शुक्र है आंख खुली तो सही, मैं तो डर रही थी कि आपका सपना शायद खत्म ही नहीं होगा।
1: खादी, अब तो शुरू हुआ है मेरा सपना।
0: अरुण बाबू, मैंने आपके हाथ में दवा लगाकर पट्टी बांध दी है, अब आप।
1: पट्टी आपने गलत हाथ में बांधी।
0: गलत?
1: जानती हूँ ये क्या हो गया वंदना
0: जी,
1: तुम मेरे सपने में हो गई थी। सच होगा मेरा सपना?
0: मुझे क्या मालूम।
1: तो फिर किसे मालूम?
0: बाबा को।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। श्रोताओं, रात के 3 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार होंगे। पहले आप हिंदी में और फिर उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाते हैं। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुस जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटेरो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय के दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Union Cabinet has approved Semicon 2O with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1O, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub.
4: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
3: Mr. Vaishnav said the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural affinity.
5: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
3: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU Free Trade Agreement as fair, equitable and balanced, saying it is a win-win agreement for all sectors in both nations. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal has launched the EVSP portal of Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department in New Delhi. The portal aims to expand digital access to legal knowledge by making important judgments of the Supreme Court and High Court's legal journals, reference books and other legal literature in Hindi available online. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that by exercising their right to vote, people reaffirm their faith in democracy. He called upon elected representatives to uphold this trust by serving with honesty, integrity and dedication. Addressing the conference of present and former members of the Rajasthan Legislative Assembly in Jaipur, organized to mark the 75th anniversary of the Rajasthan Legislative Assembly, Mr. Radhakrishnan said that state legislatures are the heartbeat of Indian democracy. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav launched the Intermediate Field Epidemiology Training Program in New Delhi yesterday. The initiative through the National Centre for Disease Control aims to build a highly skilled field epidemiology workforce by training 250 state and district surveillance officers through 14 premier medical and public health institutions. In FIFA World Cup football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in USA to set up a title clash against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalized in the 85th minute and Lautaro Martinez struck in the 90th plus second minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. The final will be played on Sunday. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। श्रोताओं, रात्रि के 3:10 हो चुके हैं और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का। तो आइए सुनते हैं गजलों के जादूगर जगजीत सिंह की आवाज में ये मधुर सी गजल।

वाकई में श्रोताओं, जगजीत सिंह की आवाज में जो जादू था, जो कशिश थी, जो अपनापन था, वो किसी और के अंदर शायद मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। शायद यही वजह है कि उन्हें गजलों का बादशाह आज भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं उनकी मधुर आवाज में ये अगली गजल।

वाकई में श्रोताओं, जगजीत सिंह की आवाज का तो कोई जवाब ही नहीं है और उनका अंदाज आज भी सबसे अलग ही निराला माना जाता है। लेकिन ये बात कम लोगों को मालूम है कि उनकी पत्नी चित्रा सिंह भी गजल गायकी में किसी से कम नहीं थी। वो भी जगजीत सिंह की तरह ही एक मशहूर गजल गायिका रह चुकी हैं। आइए सुनते हैं उनकी प्यारी सी आवाज में ये मधुर सी गजल।

वाकई श्रोताओं, चित्रा सिंह की आवाज़ भी बेमिसाल थी, उनका भी अंदाज एकदम निराला था। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की ही आवाज़ में ये अगली गज़ल।

श्रोताओं, गजल गायकी में वैसे अगर देखा जाए तो पंकज उधास साहब का भी एक अलग ही मुकाम है। उन्होंने भी गजल गायकी में अपना एक अलग ही वजूद बनाया और यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हालांकि अब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपनी गजलों के जरिए वो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। सुनते हैं उनकी आवाज में ये मधुर गजलें।

0: इसी के साथ श्रोताओं, चलते चलते गजलों और गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: मैंने भूपेंद्र के गीतों का अच्छा अनुवाद नहीं किया, मैं जानता हूं, या वो जानते होंगे जिन्होंने ओरिजिनल असमिया सुना है। मैंने कोशिश की थी, इसलिए कि अनुवाद मुमकिन नहीं है। किसी भी इलाके की शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना किया है कि सुनने वालों को उकसाऊं कि वो इस शायर को, इस गायक को, इस संगीतकार को ढूंढें, तलाश करें और सुनें।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर M. बाला मुरली कृष्णा की रचना बृहदेश्वरा महादेव।

कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 का समय होगा अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 5:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग बद्ध पद्मासन। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। और 5:30 का समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। पर आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन सकते हैं। 6:40 पर आप कार्यक्रम चिंतन सुनेंगे। 6:45 पर आज आप सुनेंगे रामचरितमानस बालकांड का भाग 118। 6:55 पर संस्कृत समाचारों का समय होगा और 7 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी और 8 बजे आप हिंदी समाचार प्रभात सुनेंगे। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार मॉर्निंग न्यूज सुन सकते हैं और 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का। 8:45 पर समय होगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। नमस्कार 15 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका और 9:30 पर आप सुन सकते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। सुबह 10 बजे का समय होगा हिंदी समाचारों का और 10:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: सतगुरु संतो का धर्म अगे रथवा हो, त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवा हो, द्वापर रथ पे का सतग रथवा हो, कलयुग रथ गण का उड़गे रथवा हो।
1: मल्ला पहला साम कहे सितंबर स्वामी सच में आचे साथ रहे सबको सच समावे। ऋग कहे रहे प्रभुर राम नाम देवा मैं सूर नाय ले प्रचित जाए नानक तो मुखंतर पाए। जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया। काल में वेद अथर्वण हुआ ना कुदाई अलहो भया, नील बस्त्र ले कपड़े पैरे तुर्क पटानी अमलकिया। चारे वेद होए सचियार पढ़े गुणे तिन चार विचार, पाओ भगत करनी सदाए तो नान

तोड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम दे राह पीड़े अगे जावना नंगा तो जग चालिया तां दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना।

संतोख सूत जप कंडी सतवट एहो जनम जी का है तपाने कात ना हो टूटे ना मन लगे ना हो जले ना जाए तान सो मानस नाड़का जोगल चले पाए चौपड़ मुलन आया बह चुके पाया सिखा कंठ।

नानक रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती ककाई हथ श्री जगत कसाई नील बस्त्र पहर हो वह परवार मलेस धान लै पूज है प्राण भाकिया का कुठा।

पौड़ी चिते अंदर सब को वेक नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईयां आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नगर उपठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दरमंगन पिखना पाएंदा दरमंगन पिखना।